आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से हम बोल रहे हैं 102.6 पर। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 सितंबर 2026। सुबह के 5:53 और 26 सेकंड हुए हैं। अब इन मीटर्स पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इसके साथ साथ आप हमारे साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी जुड़े हैं। सुबह के 5:56 हो चुके हैं और ये समय है आपको अवगत कराने का उन कार्यक्रमों से जो अब से दिन भर आप तक पहुंचेंगे एफएम रेनबो 102.6 के माध्यम से।

रविंद्र सिंह होंगे स्टूडियो में कार्यक्रम सुप्रभात के साथ। पूजा शुक्ला के साथ जानेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली में आसपास की गतिविधियां, कुछ ऐसी बातें जो सूचनाप्रद हैं और हम सबके लिए लाभकारी हैं। ठीक 7 बजे से इसमें आप सुनिएगा खाद्य स्वच्छता और सही कुकिंग, पकाते समय पोषक तत्वों को सुरक्षित रखना और हाइजीन, इस विषय पर जानकारी। इसके बाद रविंद्र सिंह एक बार फिर से जुड़ेंगे हमसे आपसे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के अगले अंक में 8:02 से। दिल के तराने, गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम होगा पूजा शुक्ला के साथ 9:02 से। 10 बजे एक बार फिर से हम आपको लिए चलेंगे समाचारों में, अंग्रेजी में समाचार सुनेगा। इसके बाद लिपिका दास लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारी दैनिक प्रस्तुति मैचलेस आवर। आकृति खंडूरी होंगी इस दौरान हमारे साथ ठीक 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक बॉलीवुड ट्रेल्स कार्यक्रम के साथ। फिर से लिपिका दास लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारा अगला चरण प्ले इट कूल। इसके बाद एक बार फिर से आकृति खंडूरी के साथ सुनिएगा कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन। और इस हेल्पलाइन फोन इन प्रोग्राम में आज का विषय रहेगा करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। विशेषज्ञ होंगे नवीन चौधरी, और जो कि लेखक हैं और साथ ही साथ मार्केटिंग प्रोफेशनल भी हैं। इसके बाद जुड़िएगा हमसे दोपहर 2 बजे, शालिनी खंडेलवाल होंगी आपके साथ प्रोग्राम आशियाना लेकर। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और उनके निदान पर आधारित हमारा नियमित कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर होगा अपने नियमित समय पर दोपहर 3 बजे से। सीमा चौधरी इसे एंकर करेंगी, आप तक पहुंचाएंगी, और आज इस कार्यक्रम का विषय होगा बोन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जुड़िएगा जरूर और सुनिएगा जरूर ये सूचना प्रद और बहुत ही जानकारी से भरपूर कार्यक्रम। ये थी जानकारी अब से लेकर दिन भर आप तक पहुंचने वाले FM रेनबो के कार्यक्रमों की। सुबह के 6 बजने को हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।

और अब आप सुनेंगे मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत गिरने से 3 की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 मंजिल से अधिक वाले सभी अवैध निर्माण तत्काल प्रभाव से सील किए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज में भी आज शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। सत्य निकेतन क्षेत्र में कई पेइंग गेस्ट आवास बंद होने और प्रभावित छात्रों में असुरक्षा की भावना को देखते हुए इन दोनों कॉलेजों में अस्थायी व्यवस्था के तहत छात्रों को ठहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह मंदिर मेड इन इंडिया और बिल्ट इन फ्रांस की भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की रणनीति पर भी चर्चा की गई और यह रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उन खबरों और अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया जिनमें इसके निजीकरण या भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही थी।

0: इसरो ने स्पष्ट किया कि ना तो उसका निजीकरण किया जाएगा और ना ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंची। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जकार्ता के सोकार्णो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ज्वालामुखी की राख के कई हिस्सों में फैलने से अन्य घरेलू हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीत लिया है। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपका साथ, आपके साथ भैया। लड़खड़ा रही है जुबान क्योंकि हम आए हैं भागते हुए भाईजान, है ना। सबसे पहले सुप्रभात करते हैं आपको क्योंकि कार्यक्रम है सुप्रभात। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र सिंह। और सुबह सुबह हम क्या लेकर आए हैं, बहुत सारी बातें ऐसी जो आपको मोटिवेशन देंगी, हमको मोटिवेशन देंगी। आपके जब हम गुड मॉर्निंग के मैसेज पढ़ेंगे तो हमको इतनी एनर्जी दे देते हैं वो कि पूरे घंटे का प्रोग्राम कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन आज हम बात करेंगे कमजोरी पर और ताकत। तो कौन सी चीज हमारी कमजोरी है और कौन सी चीज हमारी ताकत, इस पर पूरे घंटे बाद होगी। वैसे आज कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो चलते हैं सुबह सुबह प्यारी प्यारी बातें और प्यारे प्यारे गीत।
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

और वैसे भी जब आप हमें मिलते हैं तो हमें कुछ और कहा सूझता है, बस हमें इतना ही लगता है कि हम आपसे ढेर सारी बातें कर रहे हों और बातें करते करते करते करते अपनी उन यादों में चले जाएं जो हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें हैं। और यही तो श्रोताओं और एक आरजे के बीच का रिश्ता होता है, यही तो सतरंगी रेनबो के रंग होते हैं जो हमें एक दूसरे के रंग में रंग देते हैं, है ना। आज विषय यही रखा है कि भाई क्या चीज़ है जो हमारी कमजोरी है और क्या चीज़ है, यानी कि वो कौन सी चीज़ है जो हमारी ताकत है। इसको हमें समझने में एक अरसा, सदियां, दशक लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी जिंदगी कम पड़ जाती है इसे समझने में। हकीकत में क्या है, कभी सोचा है आपने कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है। आज हम इन सब बातों पर बातें करेंगे, यानी इस विषय पर बात करेंगे, कमजोरी क्या आपकी वाकई कमजोरी है और ताकत क्या वाकई आपकी ताकत है। बड़ा मुश्किल सवाल है और बड़ा मुश्किल जवाब है क्या? नहीं, जवाब बहुत आसान है, बस करना क्या है, रूबरू होना है, यानी अपने आप को जानना है, शीशे के सामने खड़ा होना है, प्यारी सी मुस्कुराहट और फिर उसके बाद खुद से कहना All is cool। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस देखने का नजरिया खूबसूरत होना चाहिए। और जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे हमारे विचार आते हैं, वैसे विचार आते हैं तो वैसे ढल जाते हैं और हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि जिंदगी असल में है क्या। तो पहले रूबरू हूं, खुद से।

तो बात सिर्फ रूबरू होने की है, और वो भी खुद से रूबरू होने की, लोगों से नहीं। लोगों से तब मिलिए जब आप खुद को जान लें, ताकि अगर कुछ आपसे कोई कहे कि भाई साहब आप में टैलेंट नहीं है, या कोई ये कहे कि भाई साहब आपके बस की तो नहीं है, रहने दो, या फिर कोई ये कहे अरे इतना पीछे कैसे रह गए हैं, तो भाई साहब याद रखना है, दुनिया आपको सिर्फ उतना देखती है जितना आप उसे दिखाते हो, है ना। दुनिया वो नहीं देखती जो आपके अंदर छुपा हुआ है, तो इसलिए छुपाए रखो भाई साहब, समय आने पर सबको दिखाना। लेकिन सफलता के पीछे सबसे खास बात यह कि कभी कभी हमारी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, और यदि ये गति धीमी होती है, थोड़ा सा हम स्लो हो जाते हैं, तो लोग अलग ही नजरिए से हमें देखना शुरू कर देते हैं। आपकी रात की मेहनत नहीं देखते, आपके पीछे छिपे हुए इंसान को नहीं देखते, आपके आंख से गिरे आंसू को नहीं देखते, आपके संघर्ष को नहीं देखते, आपकी वो कोशिशें नहीं देखते जो बार बार असफल हुई है। इसलिए दुनिया के फैसले को कभी भी सच्चाई मत मानना। दुनिया की नजर में अगर कोई ये उनको लगता है कि आप कमजोर हैं, तो भैया कमजोर होना और वास्तव में कमजोर होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप बस चुपचाप से अपने पंख खोलना और जितना आसमान है दूर तक उसमें उड़ जाना। क्या फर्क पड़ता है कि वो हमें माने या हमें ना माने, हमें चाहे या ना चाहे, हमारा आसमान हमारे अपने हमारे साथ हैं।

याद रखिए, ये खामोशी जब होती है तो इसी खामोशी को हमें तोड़ना होता है अपने जज्बातों से, अपने संघर्ष के प्रयासों से। कौन है जो आपको रोकता है आगे बढ़ने से? सोचा है कभी? उठे सुबह सुबह और फिर कोई विचार आया और आपने सोचा कल उसने क्या कहा था और बस रुक गए, सोचने लगे, ठहरने लगे और उन्हीं बातों को बार बार अपने मन में लाने लगे। जानते हैं, आपकी जिंदगी में है एक ऐसा इंसान जो आपको रोज रोक देता है, और सबसे डरावनी बात यह है कि वो इंसान कोई और है ही नहीं, आप खुद हैं। जब आप खुद से कहते हैं कि भाई मुझसे नहीं होगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं असफल हो जाऊंगा, तो दुनिया आपको हराने की कोशिश करे, इसकी क्या जरूरत है? आप तो खुद ही आ रहे बैठे हैं। इसलिए यह सोचिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया क्या सोचती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात ध्यान रखिए, आप महिला हैं या पुरुष, संघर्ष उसको पता नहीं होता कि आप कौन हैं, वो तो सिर्फ आपके प्रयास देखता है। मंजिल कभी ये नहीं सोचती कि जो मुझ तक पहुंचेगा वो महिला हो गया पुरुष। इसलिए संघर्ष के लिए किए गए प्रयास ज्यादा मायने रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप महिला हैं या पुरुष, क्योंकि ताकत

तो जीवन में किस बात के लिए कितना सोचना, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। और बाकी दुनिया क्या कहती है, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब सुबह होती है तो उगता सूरज हमसे यही कहता है कि भाई एक नया मौका हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप अभी अपनी कमजोरी पर टिके हैं, अपनी ताकत को पहचान पाए। और इसी कमजोरी और ताकत में उलझ कर रह जाते हैं और हम हर दिन की हर सुबह को ऐसे ही खराब कर देते हैं। तो भाई साहब आज नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं होना। आज अपना पहला कदम सिर्फ इस बात के लिए निकालना है कि हमारे चेहरे की मुस्कुराहट के लिए कोई जिम्मेदार और नहीं है, हमें मुस्कुराना है अपने लिए, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हर चीज अच्छी लगती है, तो फिर दोनों हाथ ऊपर उठाइए, अंगड़ाई लीजिए, गहरी सांस लीजिए और कहते हैं मैं आ रहा हूं। किससे? इस सुबह से। और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है भाई साहब ऐसे ऐसे

गीत बजाएं जो आपको और ज्यादा एनर्जेटिक करते हैं, ऊर्जा से भर जाए हम। चलिए घूम कर आते हैं, बाहर निकलिए। तो एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

0: 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

तो भाई साहब जज्बा ही तो जगाना है, और जिस दिन ये चिंगारी जाग गई उस दिन हम कोई भी मंजिल, कितनी भी कठिन क्यों ना हो रास्ते, वहां तक पहुंच ही जाते हैं। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जिंदगी बदलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप ये कहेंगे कि भाई हमारी ये कमजोरी इसे दूर करना है, अपनी आदतें सुधारनी है। तो भाई साहब जानते हैं सबसे बड़ी बड़ी चीजें क्या होती, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। एक होता है डर, एक होता है आलस, एक होता है लापरवाही, एक होता है गुस्सा, एक होता है कम आत्मविश्वास, और एक होता है लोगों की राय, और एक असफलता का डर कि कहीं फेल ना हो जाए। इतनी चीजें, डर, आलस, गुस्सा, लापरवाही, कम आत्मविश्वास, लोगों की राय, असफलता का डर। अब एक एक स्टेप में ये सारी चीजें अगर आप दूर करते जाएं तो फिर क्या होगा भाई साहब, मंजिल ऐसे हाथ खोलकर बुलाएगी आपको। एक बात याद रखिए, जिंदगी का हर मोड़ जो है ना अनजाना होता है, पता नहीं होता किस तरफ रास्ता मुड़ेगा। गीत भी कुछ ऐसे कहता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें दूर करिए। अरे क्या रखा है लोगों की बातों में, हम क्या सोचते हैं इसमें बहुत कुछ रखा है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और बता जाते हैं कि भाई साहब जो आप सोच रहे हैं वही सही नहीं है। सुनिए जरा।

तो जिंदगी में इत्तेफाक तो बहुत होते हैं भाई साहब, और किस मोड़ पर किस तरफ मुड़े ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर आप किसी मोड़ पर आकर कोई फैसला लेते हैं तो या तो सही होगा या गलत। अगर गलत हुआ तो एक्सपीरियंस, अनुभव, सीना ठोक के करिए भाई। देखिए, एक एक्सपीरियंस हो गया, और अगर सफल हो गए, सक्सेस मिली, तो कहना देखा मैंने फैसला लिया। तो हर बात पे आपको सिर्फ एक ही नजरिया रखना है, और वो है पॉजिटिवनेस। सोचिए सकारात्मक। हाँ, गलत वो होता है जब हम अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं। हम सिर्फ अपना फायदा देखें, बढ़ते चलें अपनी मंजिल की ओर, नीयत साफ हो, और बाकी तो नहीं पता, लेकिन हाँ, हम क्या हैं इस बात में अपनी कमियों को दूर करते हुए बढ़े। बड़ा आदमी या मजबूत इंसान भाई साहब वो नहीं होता जो कहता कि अरे मुझ में तो कोई कमी नहीं है। मजबूत इंसान तो वो है भाई जो कहता है मुझ में कमी है और मैं उसे सुधारूंगा। ये लाइन जो है ना, इसको ध्यान रखनी है। जब तक समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक समाधान कैसे मिलेगा। और जैसे ही समस्या को स्वीकार करते हैं ना, हमें समस्या में समाधान नजर आने लगता है, जानते हैं। और हर बच्चे में एक एनर्जी होती है, अगर उसे एक बार ये समझ में आ जाए कि मेरे अंदर क्या है, तो फिर आप समझ जाइए हर बच्चा क्या कहलाएगा। नहीं पता, सुनिए। ये गीत बताएगा आपको कि हर बच्चा क्या है।

ऐसे ही होता है, अगर हमें ये पता लग जाए कि हम क्या चीज हैं तो भाई साहब बस फिर तो कुछ भी कर सकते हैं हम। और यही जिंदगी का फलसफा होता है, हमें बस ये पता लगना चाहिए कि हम हैं क्या। कभी कभी जिंदगी में एक घटना होती है और हम इतने निराश हो जाते हैं कि हम एफर्ट्स करना ही छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है क्योंकि लोगों की बातें, लोगों के ताने और बस उफ क्या क्या अपने भी खिलाफ हो जाते हैं। तो जब सब खिलाफ हो तो क्या करना है, एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है। एक चीज हमेशा याद रखिए भाई साहब कि एक घटना आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। गिरना तो हर किसी की कहानी का हिस्सा होता है, हो सकता है भाई साहब, लेकिन उठना तो आपका फैसला है ना। लड़खड़ाकर गिर गए तो क्या हुआ, अरे झाड़िए कपड़ों को और बढ़ चलिए आगे। ऐसे काम करिए कि लोग क्या भाई अजीब सिरफरा आदमी है, कोई असर ही नहीं पड़ता बातों का, पता नहीं कौन सी धुन में जा रहा है। और जब ये धुन सवार होती है ना अपनी मंजिल पाने की, तो फिर आदमी कहलाता है सरफिरा।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हाँ जी, तो कार्यक्रम है सुप्रभात और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र सिंह। इस कार्यक्रम लेकर आया और हमने यही कहा था कि भाई कमजोरी या ताकत कैसे पहचानेंगे, और इन्हीं सब चीजों पर हम बढ़ रहे हैं आगे। कुछ पल बचे हैं।

0: आपके साथ और बिताने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर 1 घंटे बाद हाजिर होंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। लेकिन हमारे ठीक बाद आएंगी पूजा शुक्ला आपके लिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर, और ढेर सारी जानकारियां भी इनके पास होंगी। तो चलिए हम अपने इस इन बातों को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं जरा कि जब हम कमज़ोरी और ताकत की बात करते हैं तो फिर हमारी कमज़ोरी क्या, हमारी ताकत क्या, इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब, चलिए बढ़ते हैं कदम और आगे। कहते हैं कि भाई अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हो गया, अगर आपका अतीत आपके भविष्य का फैसला करता है तो फिर भैया इंसान को बदलने का मौका क्यों दिया गया। गलतियां हुई ठीक है, असफल हुए ठीक है, आपने गलत फैसले लिए अरे भाई ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या यह है कि जिंदगी हमेशा वैसी ही रहेगी? नहीं साहब, आपका अतीत एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। हर सुबह आपको एक नया चैप्टर लिखने की उम्मीद के साथ जगाती है। कल की गलती को अपनी आज की पहचान मत बनाइए। यह जिंदगी खुला रण है, यहां पर हर दिन हर पल लड़ना है, आगे बढ़ना है।
1: सवात सौ दो मुठियर मोजो, सवात सौ दो।

तो ये जिंदगी एक रण है और इसमें आपको अपना युद्ध के लिए तैयार रहना है। खैर, गीत के साथ आपको छोड़कर जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी कमजोरी और ताकत को समझ लें। एक इंसान की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है वही सबसे बड़ी ताकत भी होती है, इसलिए अपनी कमजोरी को पहचानिए, वो आपकी ताकत बन जाएगी। ओके, एक प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़कर जाते हैं क्योंकि ये भी जिंदगी से जुड़ी कोई बात कह रहा है, कोई राज कह रहा है।

लीजिए पेश है अब तक के मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत गिरने से 6 की मौत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 मंजिल से अधिक वाले सभी अवैध निर्माण तत्काल प्रभाव से सील किए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज में भी आज शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। सत्यनिकेतन क्षेत्र में कई पेइंग गेस्ट आवास बंद होने और प्रभावित छात्रों में असुरक्षा की भावना को देखते हुए इन दोनों कॉलेजेस में अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों को ठहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि मंदिर मेड इन इंडिया और बिल्ट इन फ्रांस की भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की यह रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उन खबरों और अटकलों का खंडन किया जिनमें इनके निजीकरण या भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही थी। इसरो ने स्पष्ट किया कि न तो उनका निजीकरण किया जाएगा और न ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंची। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जकार्ता के सुकार्ना हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द। ज्वालामुखी की राख के कई हिस्सों में फैलने से अन्य घरेलू हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

देश दुनिया में चार मौसम होते हैं, पर एफएम रेनबो पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मौसम हमेशा हमेशा छाया रहता है, वो है दोस्ती का मौसम। जी हाँ, मानो तो एक रूह का रिश्ता है हम सभी का, ना मानो तो कौन किसी का क्या ही लगता है, लेकिन ये दिल से दिल का कनेक्शन है जो है सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो आपके अपने स्टेशन ऑफ द नेशन पर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

जो भाई वो बातें जाती हैं जो निजी हो, लेकिन वो बातें जाननी बेहद जरूरी हैं जो इतिहास की बातें हैं। जानकारियां तो बहुत है, लेकिन कुछ खास जो हम आप तक पहुंचाते हैं। जैसे आज के दिन यानी 7 सितंबर 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। तो गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था। अध्यक्षता की थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने, और इसका उद्देश्य भारत के लिए संवैधानिक सुधारों और भावी शासन पर चर्चा करना था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आज ही के दिन 7 सितंबर 1906 को बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी मुंबई, जो कि तत्कालीन बॉम्बे था। और मुंबई के प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, उन्होंने मिलकर 50 लाख रुपए की चुकता पूंजी और 50 कर्मचारियों के साथ इसकी शुरुआत की। और 19 जुलाई 1959 को इसे 13 अन्य प्रमुख बैंकों के साथ राष्ट्रीयकृत किया गया, जिसके बाद ये सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण बैंक बन गया। तो ये इतिहास में आज का दिन। बहुत सी खास बातें लगातार आप तक पहुंचेंगी, क्योंकि ये है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मेरा नाम पूजा शुक्ला। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आप सुन रहे हैं FM रेनबो, जो है स्टेशन ऑफ द नेशन। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

सोचने की समझने की जरूरत ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि हम सब प्यार करते हैं अपने पर्यावरण से, अपनी प्रकृति से। तभी तो हम बहुत से प्रयत्न करते हैं, जतन करते हैं और बहुत से दिवस का आयोजन भी करते हैं। तो आज भी एक खास दिवस है, स्वच्छ वायु और नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जी हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, जो हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है वायु प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा देना, हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। तो UNGA ने, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव के जरिए इस दिन की स्थापना की थी। और UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

इसके आयोजन और कोऑर्डिनेशन में मुख्य भूमिका निभाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वायु प्रदूषण इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़े पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिमों में से एक है, जिससे जलवायु परिवर्तन भी बढ़ता है। यह हम सब भली भांति जानते हैं। यही वजह है कि इन प्रयत्नों, इन जत्नों में हम सभी शामिल हैं और आप शामिल हैं हमारे दिल में। जी हाँ, दिल से दिल का कनेक्शन है। आपके ढेर सारे मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही प्यार बरसाते रहिए और यूं ही जानकारियां, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, बेहतरीन गीत आप तक हम लेकर आते रहेंगे। आप सुन रहे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

0: आमंत्रण जरूर जरूर जरूर दीजिए। यही तो वजह है कि पूरा सप्ताह जो 1 सितंबर से 7 सितंबर का रहता है वो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। भारत में हर साल मनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को संतुलित आहार और सही पोषण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। चूंकि देश से कुपोषण को दूर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्व कितने जरूरी हैं ये जानकारी सब तक पहुंचाना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स हमें लेना है, प्रोटीन लेना है, वसा लेना है, हमें विटामिन्स लेने हैं, खनिज लेने हैं, आहार, फाइबर, पानी, सब कुछ लेना है। आप ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर जो नहीं जानता है उस तक ये जानकारी पहुंचाइए। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए एफएम रेनबो जो है स्टेशन ऑफ द नेशन। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
7: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
6: अल्फा जेन,
7: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

हर वो बात जो आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है, आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, वो हम हमेशा आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसे भोजन के माध्यम से पोषण तत्व आपके शरीर तक कैसे पहुंचे ये भी आपको बता दें जी हाँ। खाद्य स्वच्छता और खाना पकाने का सही तरीका अगर आप जानते हैं ना, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं और भोजन के पोषक तत्वों को बनाए रखने में भी ये दो बातें बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या मुख्य समय, देखिए सफाई, खाना बनाने और खाने से पहले हाथों को साबुन से 20 सेकंड कम से कम आप धोएं। बर्तन या चॉपिंग बोर्ड है, रसोई के काउंटर्स को हमेशा साफ रखें। कच्चे मांस, पोल्ट्री और सी फूड को पके हुए खाने और सब्जियों से हमेशा अलग रखें ताकि बैक्टीरियाज ना फैलें। भोजन को हमेशा पूरी तरह और सही तापमान पर पकाएं ताकि हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं, और बचे हुए या खराब खाने होने वाले भोजन को पकाने के 2 घंटे के भीतर फ्रिज में रख दें। अपने खाने को बहुत तेज आंच पर पकाने से उसके जरूरी विटामिन और मिनरल्स नष्ट होते हैं, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें। और सब्जियों को उबालते समय कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, या हो सके तो उन्हें भाप में पकाएं। उबले हुए पानी को फेंकने के बजाय तरी में इस्तेमाल कर लें। और भाई भोजन को बार बार डीप फ्राई तो हरगिज ना करें, क्योंकि उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है और हानिकारक फैट बढ़ जाता है। बस इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें FM रेनबो जो है स्टेशन ऑफ द नेशन।

जाती हूँ मैं, पर आने के लिए जी हाँ 9 से 10 जोड़ूंगी आपके साथ दिल के तराने, गाने नए पुराने, और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के सफर को मेरे बाद आगे बढ़ाएंगी रविंद्र सिंह। 10 से 11 सुनिए लिपिका दास के साथ मैचलेस म्यूजिक कार। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार खबरों के शौकीन है, खेल के शौकीन है, तो आपके लिए है स्पोर्ट्स पल्स। आपके साथ रहेंगे शिवेंद्र चतुर्वेदी। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूजा शुक्ला का नमस्कार।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
5: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
6: हिस्ट्री मेड इन टैम्परे, हिमा दास हैज डन इट।
7: इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
8: स्पोर्ट्स पल्स
9: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों, शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्ते स्वीकार करें। स्पोर्ट्स पल्स का एक और संस्करण लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ, खेल दुनिया की हर धड़कन को करीब से शिद्दत से महसूस करने की, मोहब्बत से फील करने की हमारी कोशिश का नाम है स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया हमेशा की तरह जीवंत बनी हुई है साथियों, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अच्छी खबरें खेल के मैदान से लगातार आ रही हैं। कुछ इवेंट जैसा हम लगातार आपसे स्पोर्ट्स पल्स में जिक्र करते हैं कि समाप्त हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं और कुछ आगमन होने वाला है उनका। और अगर आगमन होने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी वो खेल स्पर्धाएं जो कि आगे आने वाले दिनों में शुरू होने वाली हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है एशियाई खेल। एशियाई खेलों का मेला इस बार जापान में सजने वाला है। आईची और नगोया दो शहर हैं जहां पर इन खेलों का आयोजन होना है। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ये खेल मेले चलेंगे। दुनिया के एशियाई देशों के जो नामचीन एथलीट हैं वो वहां पर अपनी चुनौती पेश करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ टिपिकल परिस्थितियां हैं, कुछ खेलों में बदलाव हुआ है, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स में बढ़ावा हुआ है, नंबर ऑफ मेडल्स में थोड़ी सी कमी हुई है, तो ये सब बातें आगे आने वाले समय में आप तक पहुंचती रहेंगी हमारे स्पोर्ट्स के जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स पल्स उसके माध्यम से जब हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय जो गतिविधियां चल रही हैं वहां पर से भी भारत के परिप्रेक्ष्य में बढ़िया खबरें आ रही हैं। और सबसे सुनहरी, कानों को बड़ी मीठी सुरीली लगने वाली खबर आई बैडमिंटन कोर्ट से। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। और 2026, जब हम 2025 और 26 को कंपेयर करते हैं साथियों, तो ऐसा लगता है कि हमारा जो बिल्डअप है एशियाई खेलों के लिए वो बहुत ही अच्छा जा रहा है, क्योंकि 2026 में छठा खिताब है जो कि भारतीय खिलाड़ियों ने जीता है। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का ये साल का दूसरा खिताब है। सिंगापुर ओपन उन्होंने कुछ दिन पहले जीता था और चाइना मास्टर्स 750 कैटेगरी का सुपर 750 टूर्नामेंट है। अगर हम कैटेगराइजेशन बताएं, थोड़ा ग्रेडेशन बताएं आपको, जो BWF का सर्किट है विश्व बैडमिंटन परिसंघ का, तो उसमें सुपर 100, सुपर 300, सुपर 500, सुपर 750, सुपर 1000 मास्टर्स, इस तरीके से टूर्नामेंट होते हैं। जैसे लॉन टेनिस में भी कुछ कुछ यही स्थिति है। तो सुपर 750 कैटेगरी के जो टूर्नामेंट है उनको सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाता है, और उस लिहाज से एक बहुत ही हार्टनिंग ये विक्ट्री है भारतीय जोड़ी की। रविवार को यानी कल फाइनल मुकाबला खेला गया, पल्सेटिंग फाइनल था। चीन के हेजी टिंग और रेनशियांग यू को 1 घंटे 10 मिनट तक चले मैच में चिराग और सात्विक ने 21-11, 21-21, 13-21, 17 से हराया। इनफैक्ट पहला गेम हार गए थे, दूसरे गेम में बेहतरीन खेल खेला। खासतौर पर चिराग ने नेट पर बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया और तीसरे गेम में अच्छा कंबाइन किया दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने, सात्विक और चिराग ने। विश्व रिथक्रम में पांचवें

0: मैदान पर मौजूद हैं सात्विक और चिराग, और 19 सितंबर से जापान में होने वाले एशियाई खेलों में वो अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने के लिए उतरेंगे साथियों। यानी पिछले एशियाई खेलों में सात्विक और चिराग ने भारत को बैडमिंटन डबल्स में गोल्ड मेडल दिलाया था पुरुष वर्ग में, और ये बहुत ही बढ़िया सफलता है। पहली बार सात्विक और चिराग की जोड़ी इनफैक्ट चैंपियन बनी है चाइना मास्टर्स में। तीसरी बार वो फाइनल खेल रहे थे 2023 में और 2025 में, यानी पिछले साल उप विजेता रहे थे चाइना मास्टर्स में। सिंगापुर ओपन जो जीता था, जिसका हमने जिक्र किया, सुपर 750, वो भी एक बहुत ही अमेजिंग टूर्नामेंट था। थाईलैंड ओपन सुपर 500 था, उसके फाइनल में हार गए थे सात्विक और चिराग। और पूर्व नंबर चार जोड़ी जो कि चीन की जोड़ी थी, उसको तीसरी बार हराया है सात्विक और चिराग ने, और दोनों जोड़ियों के बीच ये तीसरा ही मुकाबला था। यानी हर बार भारतीय जोड़ी ने बाजी मारी है। फाइनल के सफर में अपने तीनों मुकाबले तीनों गेम में जीते। इन सभी मैचों में ये भी एक संयोग है कि पहला गेम जीतने के बाद दूसरा गेम गंवाया था, लेकिन यहां पर फाइनल में पहला गेम गंवाया और उसके बाद के दोनों गेम जीते और सुपर 750 टूर्नामेंट अपने नाम किया। भारत की ओर से देविका सिहाग ने इस साल 2026 में टूर्नामेंट जीतने की शुरुआत की थी। तन्वी शर्मा ने टूर्नामेंट जीता, देविका सिहाग ने जीता, पीवी सिंधु ने बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट जीता, अश्मिता चालिहा एक और भारतीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने BWF सर्किट में इस बार टूर्नामेंट जीता। तो संयोग की बात यह है कि जो सिंगल्स टाइटल आए हैं वो चारों टाइटल भारतीय महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। देविका सिहाग का हमने नाम लिया, अश्मिता चालिहा, तन्वी शर्मा और पीवी सिंधु। और उसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले भारत की ओर से वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन टाइटल ऑफकोर्स चार आए महिला वर्ग में, और दो टाइटल जैसा हमने कहा सात्विक और चिराग ने जीते, जापान सिंगापुर ओपन और उसके बाद चाइना मास्टर्स, और दोनों सुपर 750 टूर्नामेंट हैं। सात्विक इस टूर्नामेंट को जीतकर यकीनन बेहद खुश थे, उनकी खुशी शब्दों में वो कैसे व्यक्त कर रहे थे आइए सुनते हैं।
1: Playing here is always good. We have played always coming back from injury. I think in 2024 after Olympics we played here, we played semis. Then last year we played, we weren't in a good shape, played finals. I think this has been a tournament where gave us a lot of confidence. I think this week has been same story except the first round. I think second game, all the games we have played three games. We didn't do mistakes in the last, easy mistakes. So that was a positive from the today's match. If we made a game plan before coming, we wanted to do that. If we work, then it's good. If not, we'll go back and work again. That has worked today and really happy we can. Kind of broke jinx and I think second title in 2026 really happy.
0: जी हाँ, बहुत प्रसन्न थे चिराग के साथ ही सात्विक साईराज अंकित रेड्डी, जो कि उम्र में चिराग से थोड़े छोटे हैं, लेकिन खेल के मामले में दोनों एक दूसरे से बहुत ही बढ़िया कम्पीट करते हुए, बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन करते हुए नजर आते हैं। और चिराग शेट्टी क्या कह रहे थे इस टूर्नामेंट को जीतकर?
2: Yeah, it feels really special. Obviously, going into the Asian Games, winning a title definitely gives a huge boost that yes, what we are working for is in the right direction. But I think we'll go back home, push ourselves to the limit, train for the next 10 days and go all guns blazing at the Asian Games. We want to go out there and have some fun. First game, I think we were not playing the right strokes. We were playing a style which favored them. When we play a style which favors them, they come all guns blazing. You don't really find any space to play against them because they are extremely fast and furious. Second game, when we started, we wanted to be aggressive but mindfully aggressive.
3: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
0: एक बार फिर से आपका स्वागत स्पोर्ट्स पल्स में। बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस समय एशिया कप में खेल रही है। एशिया कप दुबई में खेला जा रहा है, T20 फॉर्मेट में हो रहा है। पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया है। भारत ने तीसरा मैच जीता है। 56 रन का लक्ष्य था, भारत ने 8.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छक्का लगा करके टीम को जीत दिलाई। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शनिवार को यह मुकाबला हुआ था। पाकिस्तान की टीम 55 रन पर ऑल आउट हो गई थी। T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान का यह सबसे कम स्कोर था। और भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र में इस मुकाबले में 3000 T20 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई। वहीं हरमनप्रीत कौर 150 T20 मैचेस में टीम का नेतृत्व करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में कंबाइन होकर के उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने पहले मैच में जो कि महिला एशिया कप खेला जा रहा है T20 फॉर्मेट में दुबई में, वहां थाईलैंड को 94 रन से हराया था, हांगकांग को 137 रन से हराया था और स्मृति मंधाना ने उस मुकाबले में शानदार शतक जमाया था।

0: उनकी 18 सेंचुरीज हो गई हैं। T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में दुनिया में सबसे ज़्यादा शतक उन्होंने जमाए हैं, सबसे ज़्यादा रन इंटरनेशनल क्रिकेट में स्मृति मंधाना के नाम पर हो गए हैं। तो भारतीय टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है इस एशिया कप में। तीनों मैचेस जीते हैं, सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। श्रीलंका ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। 10 तारीख को सेमीफाइनल खेला जाएगा और भारतीय टीम सेमीफाइनल में किस टीम से खेलेगी इसका फैसला होना अभी बाकी है। इन सभी मुकाबलों का यानी एशिया कप के भारतीय एडिशंस के भारतीय प्रतिभागी के प्रतिभागिता के मुकाबलों का आप विवरण सुन रहे हैं आकाशवाणी पर कमेंट्री के लाइव कमेंट्री के माध्यम से, और सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस का भी विवरण आप तक पहुंचेगा आकाशवाणी पर। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ और आनंद लीजिए स्पोर्ट्स के मुकाबलों का। भारत की एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, जैसा हमने नाम लिया स्मृति मंधाना का, जैसा हरमनप्रीत कौर का नाम लिया, शेफाली वर्मा भी एक्सपीरियंस कैंपेनर में शामिल होती हैं, लेकिन दीप्ति शर्मा एक और वाइटल कॉग हैं भारतीय टीम की, जिन्होंने पिछले दिनों एक नया रिकॉर्ड बनाया था। दीप्ति शर्मा टीम में जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरीके से एशिया कप में भारतीय टीम खेलती हुई नजर आ रही है, उसके बारे में क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं।
1: पूरी टीम ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर आप बॉलिंग यूनिट देखो या बैटिंग यूनिट, आई थिंक दोनों चीज़ें बैलेंस्ड हैं। और बस यही बोलेंगे कि जिस टाइम जिसका अच्छा दिन चलता है उस टाइम वो कोशिश करता है कि और अच्छा करे और लंबा गेम को लेके जाए, और जो बाकी के उसके अराउंड होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि कैसे उनको पॉजिटिव चीज़ें बता सकते हैं जिससे कि वो और भी स्टेप इन करें अपने गेम में। हमारे हाथ में क्या है कि अच्छा क्रिकेट खेलना एज अ बॉलिंग यूनिट या एज अ बैटिंग यूनिट। काफ़ी अच्छा टैलेंट है, चन्नी रैंकिंग में नंबर वन चल रही है, और अभी ये पिछले एक साल में काफी अच्छा परफॉर्म किया है उसने। मतलब जो टर्न होता है उसके हाथ से, जो निकलता है बॉल, अनबिलीवेबल। कोई भी इतना आसान नहीं है किसी भी बैटर के लिए खेलना। सेम विद प्रेमा, अभी आई थिंक हार्डली उसने इतने मैचेस खेले हैं, बट आई थिंक जब भी उसको मौका मिलता है, जब भी बॉल डालने को आती है, तो वो हमेशा ऐसे रहती है स्टेप अप के, नहीं अभी मुझे ब्रेक थ्रूज निकाल के देना है टीम के लिए। तो आई थिंक जितना मेरे से होता है ग्राउंड में और इवन दो इन द नेट्स, तो मैं हेल्प करती हूँ उनको कि जितना ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर कर सकूँ बीइंग अ सीनियर प्लेयर, तो उतना हेल्प करती हूँ मैं उनको।
0: तो दीप्ति शर्मा अपने अनुभव के बारे में बता रही थी और साथ ही उन्होंने कुछ खिलाड़ियों का भी नाम लिया जो बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं, और उनमें श्री चरणी का भी नाम लिया जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लगातार बढ़िया प्रदर्शन करती आ रही हैं श्री चरणी। प्रेमा रावत, इनका भी नाम लिया था, प्रेमा रावत का भी दीप्ति शर्मा ने। श्री चरणी अपने प्रदर्शन के बारे में क्या कह रही हैं, एक बहुत ही छोटी सी भाई टून से।
2: I just try to bowl on the stems, like by seeing the pitch, we know that it may turn, so I just focused on that. One game at a time, like it's not about anything like.
0: तो जैसे कई बार होता है कि कोई खिलाड़ी, जो खिलाड़ी तो बहुत अच्छा है लेकिन शब्द तलाशना कई बार उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और श्री चरणी के साथ कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो उनकी ड्यूटी है यानी जो उनको ड्यूटी सौंपी गई है उसको वो अच्छी तरीके से निभा रही हैं। क्रिकेट की बात जारी रखते हैं, दिलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है चेन्नई में, 5 दिवसीय मुकाबला है जहाँ पर ईस्ट जोन और साउथ जोन खेल रहे हैं। ईस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी की है और पहले दिन का जब खेल समाप्त हुआ था 385 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जिसमें बेहतरीन अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 रन बनाए, शिखर मोहन ने 85 रन का योगदान दिया, कप्तान ईशान किशन 111 रन बना करके नाबाद हैं, और तिलक वर्मा साउथ जोन के कैप्टन हैं, भारतीय टीम में भी खेल चुके हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट की खेलने की क्या अहमियत है, तिलक वर्मा थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हुए क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
3: Domestic circuit is a big change. Just before the World Cup, you have seen how Ishan Kishan has done in domestic cricket, and that's why he has been back into the World Cup. The same thing goes to every player. Whoever has performed well in domestic, they'll be coming to the national side. So domestic is a quite important part for every player. If you grind here and if you score here, you'll be pretty confident to play well in international, because the kind of talent we have got in domestic, it is a challenging, of course, playing in domestic, because we have got very good talent in domestic. If you perform well here, obviously everyone considers and it will be good for the player and for the country as well.
0: जी हाँ, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं तो न केवल उनके लिए बेहतर है बल्कि भविष्य के लिए, भारत के लिए भी अगर टैलेंट की बात की जाए तो वो भी उभर करके सामने आता है और इसे स्पॉट करने में मदद मिलती है, ये फरमा रहे थे तिलक वर्मा। हॉकी की बात कर लेते हैं, जूनियर एशिया कप चीन में खेला जा रहा है पुरुष और महिला वर्ग में। ये भी एक संयोग है कि पुरुष और महिला वर्ग में विश्व कप कुछ दिन पहले नीदरलैंड और बेल्जियम में खेला गया था और अब चीन में जूनियर एशिया कप की बारी है, जहां पर भारत ने महिला वर्ग में मलेशिया को 11-1 से हराया है, को 4-1 से हराया है, और कल यानी 8 सितंबर को भारत जापान से खेलेगा अपने तीसरे मैच में। पुरुष वर्ग में भारत और जापान का मुकाबला 3-3 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ था।

0: यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है न्यूयॉर्क में फ्लैशिंग मीडोज पर, और वहां पर भी भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं। हालांकि यूकी भांबरी माइकल वीनस के साथ जोड़ी बनाकर खेल रहे थे, डबल्स के पहले दौर में बाहर हो गए। श्रीराम बालाजी लेकिन डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं, और दुनिया के जो चुनिंदा खिलाड़ी हैं वो अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच चुके हैं। अमेरिकन ओपन में पुरुष वर्ग में कुछ खास परिणाम आए हैं, इनफैक्ट अपसेट हुए हैं। बैन शेल्टन जो कि 8वीं वरीयता प्राप्त है, उन्होंने स्टेफानोस सिटसिपास को हरा करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, और डैनियल मेडवेडेव हार गए हैं, उनको फ्रांसिस टियाफो ने जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं उन्होंने 3 सेट तक चले मुकाबले में पराजित कर दिया है। चलते चलते बर्थडेज की बात कर लेते हैं। ईपीएल की बात करें, ईपीएल में लिवरपूल ने पहली जीत दर्ज की, इप्सविच को घरेलू मैदान पर पराजित किया। बर्थडेज में आज ज्वाला गट्टा अपना बर्थडे मना रही है। टेनिस खिलाड़ी वेरा जेनरेवा का बर्थडे है 8 सितंबर को। ब्रूनो फर्नांडिस का बर्थडे होता है, फुटबॉलर शुभमन गिल भारत के कप्तान, उनका बर्थडे है कल। और जोस बटलर और पारुपल्ली कश्यप भी कल अपना बर्थडे मनाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल स्पोर्ट्स पल्स में शिवेंद्र को अनुमति, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखें, नमस्कार।
1: Tampa Bay, Hima Das has done it. India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series.
2: Sports Pulse.
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम Sports Pulse.
4: और अब आप सुनेंगे मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्य निकेतन में बहुमंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 मंजिल से अधिक वाले सभी अवैध निर्माण तत्काल प्रभाव से सील किए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज में भी आज शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। सत्य निकेतन क्षेत्र में कई पीजी बंद होने और प्रभावित छात्रों में असुरक्षा की भावना को देखते हुए इन दोनों कॉलेजों में अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों को ठहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि यह मंदिर मेड इन इंडिया और बिल्ट इन फ्रांस की भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गोवा दौरे के अंतिम दिन राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्ष की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उन खबरों और अटकलों का खंडन किया है जिनमें इसके निजीकरण या भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही थी। इसरो ने स्पष्ट किया कि ना तो उनका निजीकरण किया जाएगा और ना ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में हिस्सा लेने के लिए मिस्र पहुंची। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कल कीव में अमरीका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनगर से मुलाकात कर रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने पर चर्चा की। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ज्वालामुखी की राख के कई हिस्सों में फैलने से अन्य घरेलू हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। और अंत में खबर खेल जगत से। भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीत लिया है। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, आपकी वाणी आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र सिंह। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और कार्यक्रम को लुत्फ उठा रहे होंगे। खेल से जुड़ी आपने खबरें सुन ली हैं और इसके साथ साथ संक्षेप में समाचार भी आपने समझ ली है। तो चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और बढ़िया से गाने से शुरुआत करते हैं। आप कहीं भी हों, बेहतर तरीके से हो, दिन की शुरुआत अपने करिए तो शानदार तरीके से करिए, क्योंकि वीकेंड के बाद वीक स्टार्ट हो चुका है और आज पहला दिन है, तो इसको मस्त बना लेते हैं जहां से भी जा रहे हो। अगर थोड़ा सा समय लग रहा हो तो कोई बात नहीं, हम हैं ना आपके साथ, आपका दोस्त रविंद्र।

बताते हैं मौसम क्या कह रहा है दिल्ली एनसीआर का। तो भैया दिल्ली एनसीआर में आज आसमान में बादल छाए रहने और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसलिए अपना छाता वाता अगर पैदल इधर जा रहे हैं तो भाई ध्यान रखिए, अपने पास रखिए, बरसाती पास में रखिए ताकि आप भीगे ना, सेहत पर असर ना पड़े। और दिल्ली में जहाँ तक मौसम विभाग ने अब तक जो कहा है, विशेष चेतावनी तो नहीं थी लेकिन पिछले दिनों की बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या बनी रही जिससे लोगों को जूझना पड़ा। गुरुग्राम और नोएडा में भी बारिश का असर यातायात पर देखने को मिला है और बारिश से तापमान में राहत जरूर मिली है, गर्मी का असर कम हुआ है। 8 सितंबर से कहा जा रहा है कि भैया मौसम कुछ साफ रहेगा, यानी आपको थोड़ा राहत मिलेगी और आसपास जो है सड़कें सूखी मिलेंगी आपको, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दिन की और बात है। तो तापमान भी बता देते हैं फटाफट, बारिश के साथ तापमान जो रहने वाला है आज की बात करें तो 24 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है ना। अब अगर बात मौसम की है, बारिश की है, प्रेम की है, तो फिर गाना भी तो बढ़िया होना चाहिए ना। तो चलिए बिंदास, बढ़िया, जबरदस्त, धमाकेदार, धुआंधार है ना, ये है।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
9: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
10: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
11: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

अरे भाई साहब, कभी भी लीजिए, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है कि हम तर जाते हैं भवसागर से। इसलिए 24/7 अगर नाम लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि पुराने समय में तो नाम भी इसलिए रखे जाते थे ताकि हम ईश्वर का नाम हमेशा लेते रहे, हमारी जुबान पर बना रहे। और कहते हैं बच्चों में भगवान देखे जाते हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। और चूंकि बात भगवान की चली है तो फिर हम बताते हैं कि जब हम सफर पर निकलते हैं तब भी हम भगवान को याद करते हैं। क्यों? ताकि हमारा सफर आनंदमय रहे, किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो और समय से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। तो भाई साहब, अगर आपको समय से अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो आपको थोड़ा सा पहले निकलना होगा, क्योंकि आज यानी 7 सितंबर की तारीख बहुत कुछ कह रही है। एक तो बारिश ने कई जगह पर ट्रैफिक धीमा किया, दूसरी तरफ NH-48 के कई रास्ते ऐसे हैं जैसे महिपालपुर एयरपोर्ट रोड, द्वारका, शकरपुर, लक्ष्मी नगर और मेहरौली बदरपुर रोड, यहाँ पर भी थोड़ा सा स्थिति ट्रैफिक स्लो होगा। और गुरुग्राम में भी चूंकि बारिश के चलते कई सड़कों पर जाम की स्थिति बनी है। और ब्रिक्स समिट की तैयारियां भी चल रही हैं जिसकी वजह से मोटरकेड रिहर्सल चल रहा है, जिसके कारण दिल्ली के कई रास्ते ऐसे हैं जहां पर डायवर्जन और ट्रैफिक प्रतिबंध लागू है। इन रास्तों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ITO और आसपास के जो इलाके हैं वहां का भी ध्यान रखिए, क्योंकि व्यावसायिक वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जा रहा है। और दिल्ली पुलिस ने यात्रियों से घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलने की बात कही है, और संभव अगर हो तो आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को भी ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए पहले से निकलना होगा, क्योंकि फ्लाइट स्टेटस आपका क्या कह रहा है अगर ये आपको नहीं पता और आप समय समय पर इसकी जांच नहीं करते तो फिर मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए समय पर निकले और जो एडवाइजरी है उसका ध्यान रखिए, क्योंकि ब्रिक्स समिट होने वाली है इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर परेशानी हो सकती है आपको। तो हमने आपको रास्तों के बारे में बता दिया, पहले से अलर्ट कर दिया और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी आपको अपडेट कर रही है। आपको खुद भी तो थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो बेमौसम बरसात होती है, किसकी परेशानी होगी। फिलहाल मुझे नहीं लगता आप परेशान होंगे, क्योंकि दिल्ली वाले दिल वाले हैं और जागरूक रहते हैं। चलिए एक और गीत, जो आपको अगर आप वाकई कहीं स्लो ट्रैफिक में हैं तो ये आपको झूमने पर मजबूर करेगा। और कहते हैं डांस वाले जब गीत बजते हैं ना तो बस वैसे ही चलने चाहिए, रिदम नहीं टूटनी चाहिए भाई साहब, रिदम नहीं टूटनी चाहिए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है।

0: सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

भाई साहब गीतों का क्या है, कुछ अच्छे लगते हैं और कुछ बहुत अच्छे लगते हैं, और ऐसे ही सफर है। कुछ अच्छा लगता है, कुछ बहुत अच्छा लगता है, और कुछ कुछ अपनों के साथ बिताएगा तो और सफर अच्छा लगता है भाई साहब। लेकिन ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको जाते हुए, है ना? काम होगा, लेकिन कहते हैं कि काम को लेकर जो हमेशा जुनूनी रहते हैं उनको लगता है कि भाई काम ऐसा देना है कि मेरे सिग्नेचर हो जाए वहां पे। अगर मैं वहां से हटूं कुछ देर के लिए तो लोगों को लगे कि भाई हम वहां बैठे हुए हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें देख देखते मन बड़ा चिंतित हो जाता है कि भाई साहब चल क्या रहा है, ये कौन से काम हो रहे हैं। और वो होते हैं मेट्रो के अंदर, है ना? और मेट्रो ने ऐसे लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस भी बना दिए हैं कि भैया अगली बार जब करेंगे तो आप समझ लीजिएगा क्या होगा। दरअसल होता क्या है कि रील बनाने के चक्कर में जो इंसान मेट्रो के अंदर बैठकर अपना सफर तय कर रहा होता है, अपने गंतव्य तक जा रहा होता है, कुछ विद्यार्थी बैठे होते हैं, कुछ शिक्षक बैठे होते हैं, कुछ अपने ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं, वो उनके चक्कर में घन चक्कर हो जाते हैं। क्योंकि रील बनाने का शौक इस कदर चल रहा है कि आप कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मोबाइल फोन को चिपका देते हैं, स्टिक कर देते हैं शीशे में और उसके बाद रील बनाते हैं। तो भाई साहब चलती मेट्रो की खिड़की पर मोबाइल चिपका कर रील बनाने का जो ट्रेंड है आजकल जबरदस्त तौर पर वायरल है। लेकिन अब DMRC ने सख्त चेतावनी जारी कर दी है कि भैया सावधान रहें, किसी को असुविधा हो सकती है, चोट लग सकती है और आपका मोबाइल भी टूट सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए जो भी ऐसे क्रिएटर्स हैं सावधान रहें, क्योंकि इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जो भी जरूरी कार्रवाई होगी। इसलिए क्रिएटर्स को दिल्ली मेट्रो परिसर में इस तरह की रील शूट नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। तो प्रभु जी आप संभल जाइए, नहीं तो फिर होगा क्या, आप आगे पीछे डोलते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सारे सबूत वहां पर होंगे। इसलिए ऐसा काम मत करिए जिससे आपको लगे कि ये तो हमारे लिए सुविधाजनक है।

0: गया।
1: हम भी तो यही कहते हैं भाई साहब, हमें अपने श्रोताओं से बहुत प्यार है, बेइंतहा प्यार है, और हमारा मन करता है कि अपने श्रोताओं से इतनी देर तक बातें करें, इतनी देर तक बातें करें, इतनी देर तक बातें करें कि एक घंटा पूरा कहाँ गया भाई साहब, पता ना लगे, है ना। खैर कोई बात नहीं, जानकारी देनी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप कहीं भी कोने में हमें सुन रहे हैं तो कम से कम वो जानकारी आपके काम की हो, या आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनके काम की हो, और बस इसीलिए ये सफ़र हमारा और खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि बातें भी होती हैं और प्यारे प्यारे गीत भी बजते जाते हैं जो हमें हमारे दिन को बना देते हैं। फिलहाल 11 सितंबर की बात कर लेते हैं, आने वाला जो 11 सितंबर है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है आपके पास, आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, उसको आप समझ लीजिए कि जो भी राजधानी में आगामी चूंकि ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है, और इसको देखते हुए शुक्रवार को स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया, और इसमें निर्देश है कि सरकार और निजी स्कूल बंद रहेंगे। निर्देश में यह भी कहा गया कि प्रमुख जो स्कूल के प्रमुख छात्र हैं, अभिभावक हैं, इसको लेकर सभी को सूचित कर दिया जाए। इसलिए 11 सितंबर की तारीख याद रखिए, दिन है शुक्रवार, उस दिन स्कूल बंद रहेंगे, ब्रिक्स समिट होने जा रही है इस वजह से, तो आप तैयार रहें। और चूंकि अब तो एग्ज़ाम का भी दौर है हाफिर ले, तो थोड़ा सा अपनी

0: तैयारी कर लेंगे इस बहाने। फिलहाल हम क्या है, हमारी तैयारी रहती कि हम कैसे आपको प्यार भरे नगमे सुनाते रहें। और ऐसे नगमे कि अगर आप अपने सफ़र पर कहीं जा रहे हों, दूर काम पर या किसी के साथ जा रहे हों, तो फिर वो आपका पूरा दिन बना दें। वैसे कुछ गीत ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं, कुछ गीत गाए ऐसे गाए होते हैं जिसमें बोली जो होती है ना उस क्षेत्र की, वो असर डालती है। तो हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है, ऐसे ही इस गीत का भी महत्व है जो कि आनंद राज आनंद की आवाज़ में और ऋचा शर्मा की आवाज़ में है। बेहतरीन गीत सुपर डुपर हिट।
1: जगाती है कयामत कोई

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
9: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
10: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

अरे भाई साहब, गानों में ही खोए रहेंगे या कुछ सुनेंगे भी, क्योंकि अब जाने का वक्त हो गया। और हम जाने से पहले कुछ और बता देते हैं, जो लोग ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पर बता दें आपको कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी जीओजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों से जनवरी फरवरी 2027 से शुरू होने वाले जो शैक्षणिक सत्र है उसके बाद के सत्रों के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कोर्स की मान्यता के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। और इसके साथ ही एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी नई तकनीकों से जुड़े पाठ्यक्रमों पर भी जोर दिया जा रहा है। और स्वयं प्लेटफॉर्म जो है उस पर 140 से अधिक एआई से जुड़े कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें 5,00,000 से अधिक नामांकन हो चुके हैं। वहीं स्वयं प्लस पर 500 से अधिक कौशल आधारित कोर्स भी हैं, तो फायदा उठाइए भाई साहब इसका। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, पूजा शुक्ला आ चुकी हैं और अब आप सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने ठीक मेरे बाद। बाय बाय, टेक केयर। प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़ कर जाते हैं।

0: लीजिए पेश अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह मंदिर मेड इन इंडिया और बिल्ट इन फ्रांस की भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री शाह आज राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्ष की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित है। दिल्ली के सत्य निकेतन में बहुमंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। उन्होंने भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के भी निर्देश दिए। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 मंजिल से अधिक वाले सभी अवैध निर्माण तत्काल प्रभाव से सील किए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज और आर्यभट्ट कॉलेज में आज शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। सत्य निकेतन क्षेत्र में कई पीजी बंद होने और प्रभावित छात्रों में असुरक्षा की भावना को देखते हुए इन दोनों कॉलेजों में अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों को ठहराया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उन खबरों और अटकलों का खंडन किया जिनमें इसके निजीकरण या भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही थी। इसरो ने स्पष्ट किया कि न तो उसका निजीकरण किया जाएगा और न ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की शाही सवारी का आज आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंची। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटिल आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री बेटिल आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कल कीव में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात कर रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

लत लगा लीजिए एफएम रेनबो की, जो है स्टेशन ऑफ द नेशन, जहां एक से बढ़कर एक प्रोग्राम्स और बेहतरीन गीत आप तक पहुंचते हैं। आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, और अब बारी पुराने गीत की।

0: हमें और जीने की चाहत ना होती। फिल्म थी अगर तुम ना होते और आवाज लता मंगेशकर जी की, कालजयी संगीत आर डी बर्मन साहब का और लिरिसिस्ट थे गुलशन बाबरा। ऐसे ही बेहतरीन दो ट्रैक्स अभी आपको और सुनवाऊंगी कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने में, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Taazi-taazi, mehki-mehki, josh hai zabardast, ye chai badi hai mast.
6: Pata ka chai, gazab ka swaad.
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

दिल्ली भी ठुमक रही है, दिल्ली वाले भी ठुमक रहे हैं। इसकी वजह यह है कि 10,000 स्टार्टअप की कैपिटल्स बनेगी दिल्ली। जी हाँ, रोड मैप हो रहा है तैयार, सरकार कर रही है मंथन, और सरकार का लक्ष्य यह है कि नीति के जरिए 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाए और 4,00,000 से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। तो है ना शानदार जानदार खबर। और उसके बाद ये गीत आपके लिए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने, में पूजा शुक्ला आपके साथ।

0: आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, रखेंगे पूरा पूरा ख्याल, क्योंकि हम आपके हैं, आप हमारे, दिल से दिल का कनेक्शन है एफएम रेनबो पर। और दिल्ली सरकार भी यही बात कह रही है कि आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा सर्दियों में प्रदूषण आने से पहले। जी हाँ, तैयारी शुरू हो गई है दिल्ली में धूल पर लगाम कसने की। तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने, DPCC ने 3000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले कमर्शियल्स और हाईराज इमारतों के अलावा 1000 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन और मिस्ट सिस्टम लगाना अब अनिवार्य कर दिया है। इन सिस्टम में सिर्फ ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल करना होगा और ऐसा ना करने वाले अब नियमों के उल्लंघन के दायरे में आएंगे और उन पर होगा एक्शन। फिलहाल हमारा एक्शन रिएक्शन लगातार जारी है, हमारे एक्शन पर आपका रिएक्शन, आपके मैसेजेस लगातार जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, इतना सारा प्यार हम तक पहुंचाने के लिए। राजकुमार जी महाराष्ट्र अकोला से, प्रदीप सलूजा जनकपुरी दिल्ली से हमारे रेगुलर लिसनर हैं, दिल्ली से कृष्ण कुमार मिश्र, रोहिणी से स्वाति मेहता और यूपी बिजनौर से सोनू निगम। सुनते रहिए आपका अपना चैनल एफएम रेनबो, स्टेशन ऑफ द नेशन। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

ये जमी गा रही है, आसमां गा रहा है, ब्यूटीफुल ट्रैक गाया अमित कुमार ने, और ये सुंदर संगीत था आर डी बर्मन साहब का, फिल्म थी तेरी कसम। एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल की तराने, गाने नए पुराने, एक पुराना ट्रैक अभी और बाकी है, सुनते रहिए।

0: सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
7: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
6: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
7: हैं? इतनी जल्दी?
6: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
8: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

चैन आपसे, करार आपसे, प्यार आपसे, और वो भी बे इंतहा। यही तो वजह है कि राउंड द क्लॉक रहते हैं हम आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर है दिल से दिल का कनेक्शन। जी हाँ, ये है FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज, जो कि है स्टेशन ऑफ द नेशन। और ये जुड़ाव यूं ही बनाए रखें, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक प्रोग्राम्स आपके लिए मेरे बाद यानी 10 से 11 आपके साथ रहेंगे। लिपिका दास कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर में वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम, 11 से 12 का समय रहेगा बॉलीवुड ट्रेल्स का, आकृति खंडूरी आपके साथ रहेंगे 12 से 1 वेस्टर्न म्यूजिक प्ले इट कूल लिपिका दास के साथ। तो जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM रेनबो, जो है स्टेशन ऑफ द नेशन। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूजा शुक्ला का नमस्कार।

0: Beautiful and a very sweet love song by Cliff Richard there, Fall in Love with You. Taking a tiny break now, and then we have Herman's Hermits and the song Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: Welcome back to the Matchless Music Hour. Before I bring you Herman's Hermits, let's listen to the next and the last Hindi track of this morning session of the Matchless Music Hour. This is from a 1964 movie called Kashmir Ki Kali. Singer is Mohammad Rafi. Music direction O.P. Nair and lyricist S.H. Bihari.

जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। नई दिल्ली के सत्य निकेतन में बहुमंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। उन्होंने भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली यातायात पुलिस ने सत्य निकेतन के आसपास से गुजरने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा है कि 4 मंजिल से अधिक वाले सभी अवैध

निर्माण तत्काल प्रभाव से सील किए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज में भी आज शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। सत्य निकेतन क्षेत्र में कई पीजी बंद होने और प्रभावित छात्रों में असुरक्षा की भावना को देखते हुए इन दोनों कॉलेजों में अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों को ठहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले कई वर्ष में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह मंदिर मेड इन इंडिया और बिल्ट इन फ्रांस की भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री शाह अपने गोवा दौरे के अंतिम दिन राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्ष की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उन खबरों और अटकलों का खंडन किया है जिनमें इसके निजीकरण या भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही थी। इसरो ने स्पष्ट किया है कि ना तो उसका निजीकरण किया जा रहा है और ना ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की शाही सवारी का आज आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंची है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कल कीव में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात कर रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता है। ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे बॉलीवुड के अपडेट्स के साथ बॉलीवुड ट्रील्स में आपके साथ हूं मैं आकृति खंडूरी।

जी हाँ, बॉलीवुड की चटपटी अटपटी मजेदार जायकेदार और थोड़ी सी मिर्चीदार खबरों को लेकर आते हैं हम बॉलीवुड ट्रेल्स में। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आपसे सुनते हैं, या फिर देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों, आप जुड़े रह सकते हैं आकाशवाणी रेनबो से न्यूज ऑन एयर ऐप पर या फिर वेव्स OTT ऐप पर भी। फिलहाल इस घंटे बॉलीवुड के अपडेट्स तो आपके लिए लेकर आई ही हूँ मैं, साथ ही साथ पेश किया जाएगा बॉलीवुड सरताज सवाल, जिसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर सही सवाल के साथ सबसे पहले सही जवाब के साथ पहुंचाकर बन सकते हैं आज के बॉलीवुड सरताज भी।

जी हाँ, बॉलीवुड रील्स में आज की पहली अपडेट पेश है आपके लिए, और ये अपडेट है नई फिल्म हैवान के बारे में जो रिलीज होने वाली है 11 सितंबर के दिन। और बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर प्रियदर्शन एक बार फिर से अक्षय कुमार के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ सैफ अली खान को भी कास्ट किया है। वैसे अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी ने गरम मसाला, हेरा फेरी, भूल भुलैया जैसी सुपरहिट फिल्म्स दी हैं, लेकिन अब प्रियदर्शन की आने वाली फिल्म हैवान में अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान भी लीड रोल में नजर आएंगे। 11 सितंबर को रिलीज होने वाली है ये फिल्म। और जहाँ तक बात की जाए अक्षय कुमार को कास्ट के साथ प्रियदर्शन का एक बहुत लंबा कनेक्शन है। आई थिंक दोनों साथ साथ हैवान, मतलब ये इनकी नवी फिल्म है जिसमें वो साथ साथ काम कर रहे हैं, और एक बड़ी अच्छी सी इन लोगों के आपस में रिलेशंस हैं। और प्रियदर्शन हमेशा कहते हैं कि अक्षय के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है, जो मैं चाहता हूँ वो एग्जैक्टली वही पर्दे पर लाकर देते हैं। फिलहाल प्रियदर्शन कह रहे हैं कि अक्षय, गोविंदा, अजय देवगन, अक्षय खन्ना के साथ उन्होंने काम किया है और बहुत मज़ा उनको आता है। इस बार सैफ अली खान को भी उन्होंने लीड रोल में लिया है अपनी फिल्म में। वैसे प्रियदर्शन की अगर हम बात करें तो अपने करियर की शुरुआत उन्होंने विरासत जैसी बड़ी सीरियस फिल्म से की थी, और फिर 2000 में आई थी उनकी हेरा फेरी, और उसके बाद तो ऐसा लगता है जैसे कॉमेडी डायरेक्टर की इमेज उनके सिर पर ही चढ़ गई। हालांकि साउथ में उन्होंने बहुत सारी एक बड़े ही डिफरेंट जॉनर की फिल्म्स की हैं, लेकिन इस बार लौटा कर ला रहे हैं वो बॉलीवुड में हैवान के साथ, वो वापस आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि फिल्म को देखकर लगता है अक्षय का बड़ा डिफरेंट सा, उन्होंने एक हिंट दिया है कि रोल है थोड़ा साइको टाइप का उनका कैरेक्टर है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि डार्क फिल्म नहीं है, इसमें इमोशंस भी हैं और बीच बीच में हंसने के भी काफ़ी मौके मिलेंगे। फिलहाल देखते हैं 11 सितंबर को क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है, दर्शकों को कितनी पसंद आती है। जैसे जैसे ये अपडेट्स हम तक मिलती रहेंगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे हम आकाशवाणी रेनबो बॉलीवुड रील्स में।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट AIDS कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जन

106 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं आप बॉलीवुड ट्रेल्स। और बॉलीवुड की अगली अपडेट है, कई सारी फिल्म्स के सीक्वल्स चल रहे हैं ना, उन्हीं में से एक है अजय देवगन की गोलमाल 5। रोहित शेट्टी की इस फिल्म का ऑफिशियली ऐलान हो चुका है और अब एक नया अपडेट सामने आया है। वैसे बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की अगर हम बात करें तो इस साल एक पिक्चर उनकी रिलीज हो चुकी है और साथ ही 2 अक्टूबर को दृश्यम 3 भी रिलीज हो जाएगी। और फिलहाल प्रमोशंस पे जोर शोर से काम चल रहा है और साथ ही अजय देवगन की इस साल के एंड में एक और फिल्म आने वाली है, रेंजर उसका नाम है। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके खाते में है जिन पर लगातार काम हो रहा है और गोलमाल 5 भी उन्हीं में से एक है जिसमें अजय के साथ अक्षय कुमार, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, शर्मन जोशी भी हैं। और सुनने में अपडेट हम तक यही पहुंची है कि गोलमाल 5 की शूटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन में ये फिल्म जो है चली गई है। साथ ही साथ इसकी पूरी प्रिंसिपल जो फोटोग्राफी है वो भी पूरी कर ली गई है। सुनने में ये आ रहा है कि ये जो फिल्म जिसकी शूटिंग इसी साल मार्च के महीने में शुरू हुई थी उस वक्त था और शर्मन जोशी जो हैं उन्होंने हाल ही में अपने ये सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि ये फिल्म में ज़बरदस्त कॉमेडी का तड़का है, बहुत पसंद लोगों को आने वाली है। इनफैक्ट पिछले कुछ समय शर्मन जोशी और रोहित शेट्टी के बीच में थोड़े बहुत गिले शिकवे हो गए थे, लेकिन गोलमाल 5 के साथ वो भी वापस आ रहे हैं। ज़बरदस्त पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चल रहा है और जल्द ही हम आपको बताएंगे इस फिल्म की रिलीज डेट क्या होने वाली है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, रामचरण और जूनियर एनटीआर की आरआरआर की कामयाबी का डंका दुनिया भर में बजा है और सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा चल रही है कि आरआरआर 2 जो है उसका सीक्वल, यानी कि आरआरआर का सीक्वल आने वाला है। लेकिन फिलहाल बॉलीवुड ट्रेल्स में आपको हम अपडेट दे देते हैं कि आरआरआर का पार्ट 2 नहीं बनने वाला है। जी हाँ, एस राजामौली के डायरेक्शन में ये बनी फिल्म काफ़ी हिट हुई और चर्चा चली कि इसका सीक्वल आने वाला है, लेकिन इस बात की पूरी खबर आ चुकी है कि इसका पार्ट 2 जो है अभी कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, नहीं आने वाला है। राजामौली वाराणसी अपनी फिल्म पर पूरा तरह से ध्यान दे रहे हैं, लगभग पूरी हो चुकी है। 7 अप्रैल 2027 को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, जिसमें महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा भी हैं और रामचरण जो है इस वक्त अपनी अगली फिल्म में काम कर रहे हैं, जिसे सुकुमार बना रहे हैं। और जूनियर एनटीआर की फिल्म ड्रैगन भी अगले साल रिलीज़ होगी, इसकी पहली झलक भी आ चुकी है, जिसमें प्रशांत नील के प्रोजेक्ट में उनका लुक काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये अपडेट कन्फर्म रूप में हम तक पहुँची है कि आरआरआर का सीक्वल अभी हाल में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई काम नहीं है, ये अभी फ़िलहाल तो नहीं आने वाला है।

0: में गाओ है रेला ऊं चपाओ यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो
1: अरे धूम धूम थिरके जा पाओ में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो

0: कोई।
1: शान की आवाज़ में ये ट्रैक लेकर आएंगे हम आपके लिए, लेकिन फिलहाल आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ आज का बॉलीवुड सरताज सवाल, जिसे सवाल का जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर सबसे पहले पहुँचा कर आप बन सकते हैं हमारे आज के बॉलीवुड सरताज। तो हमारा सवाल है, अक्षय कुमार और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म का आपको हमें नाम बताना है। हिंट आपको ये दे देती हूँ कि इस फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन हैं और ये फिल्म इसी फ्राइडे यानी कि 11 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है। 11 सितंबर को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, फ्राइडे को इसी हफ्ते। और अक्षय कुमार और सैफ अली खान की आने वाली फिल्म का नाम 9868107070 पर पहुँचा कर सबसे पहले बन सकते हैं आप आज हमारे बॉलीवुड सरताज।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और फिलहाल हमें मिल गया है आज का बॉलीवुड सरताज। जी हाँ, हमने आपसे सवाल पूछा था कि अक्षय कुमार और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म का नाम बताइए जो 11 सितंबर को रिलीज होने वाली है। आपके बहुत से सही जवाब हम तक आए हैं, लेकिन सबसे पहले आज के प्रोग्राम में सही जवाब जो है कि हैवान बताकर आज के बॉलीवुड सरताज बन रहे हैं कान्हा मेरठ से। बहुत बहुत बधाई हो कान्हा आपको आज का बॉलीवुड सरताज बनने की। लेकिन इनके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सवाल का सही जवाब हम तक पहुंचाया है, सबका नाम जरूर लेना चाहूंगी। तरुण कोहली साहब मेरठ से, सलीम मलिक साहब मेरठ से, कंचन कसोनिया बिहार से, मोहित श्रीवास्तव दिल्ली से, पूजा और कोमल हरिनगर दिल्ली से, जयनंद त्यागी साहब मोदी नगर से। इसके अलावा सही जवाब के साथ अनिशा साहब हैं उत्तम नगर से, नीतीश कुमार रेशम नगर झारखंड से हमसे जुड़े हैं, ये हैं फहीम जिन्होंने सवाल का सही जवाब हम तक पहुँचाया है। और इसके अलावा सही जवाब यानी कि हैवान देने वाले हैं शरजीत ग्रेटर नोएडा से। एक और सही जवाब हम तक आया है ज्ञान प्रकाश साहब का, राजकुमार के संतानी, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, कमलेश यादव, जगजीर सिंह ढिल्लों साहब का भी सही जवाब है। और ऋषु कटारिया, पवन कटारिया सही जवाब के साथ हमसे जुड़े हैं। इस फिल्म का नाम है हैवान और लेकिन आज के प्रोग्राम में बॉलीवुड सरताज बन रहे हैं कान्हा मेरठ से, जिन्होंने सबसे पहले हमें सही जवाब हैवान के साथ मैसेज पहुंचाया था। बहुत बहुत बधाई हो आपको आज का बॉलीवुड सरताज बनने का।

इसी के साथ मैं आकृति भी इस घंटे से विदा लेती हूँ, लेकिन रेनबो पर हर घंटे एक अलग रंग के साथ हम आपके साथ हाजिर रहते हैं। कुछ ही मिनटों में 12:02 पर लिपिका दास आपके साथ रहेंगी प्लेट कूल लेकर। 1 बजे रेनबो हेल्पलाइन में आज का प्रोग्राम होगा करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे नवीन चौधरी साहब, जो कि ऑथर हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, हमारे साथ रहेंगे। और जी हाँ, एक ऐसे प्रोफेशन की बात होगी जहाँ पर क्रिएटिविटी भी है, टेक्नोलॉजी भी है और अपॉर्चुनिटीज़ की भी कोई कमी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग, इसमें कैसे करियर बनाया जा सकता है, या मैं यूं कहूं कि सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बन सकती है आपके करियर की शुरुआत, यही जानेंगे। जुड़े रहिएगा ज़रूर हमारे साथ आशियाना प्रोग्राम में। 2 बजे शालिनी खंडेलवाल हमारे साथ रहेंगे और 3 बजे आज स्पेशल प्रोग्राम होगा बोन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, जिसके बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर राहुल खरे, जो कि प्रोफेसर इन

हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, और आपको इस विषय में अगर कुछ सवाल हमसे पूछने हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर मैसेज करके अपने सवालों को पहुँचा सकते हैं।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: I'm trying to see if you can handle that.
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: It's 11 hours on the beat.

नमस्कार, पेश है इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। श्री शाह आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मलबे से 12 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई और 6 की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन घटना के जिम्मेदार सभी अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा आसपास के क्षेत्रों में भी जोखिम वाले अन्य भवनों की पहचान करके उन्हें गिरा दिया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने सत्य निकेतन इलाके में बचाव और राहत कार्य के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार ए मशरीक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची की 7 इमारतों में छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत सीआरपीएफ की 199वीं वाहिनी ने नक्सलियों द्वारा जंगल में छिपाकर रखे गए 14 नक्सली डंप बरामद किए हैं। इसरो ने उन खबरों और अटकलों का खंडन किया है जिसमें इसके निजीकरण या भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही थी। इसरो ने स्पष्ट किया कि न तो उसका निजीकरण किया जाएगा और न ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFJK आज से शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय महोत्सव में 40 देशों की 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। दिग्गज सिनेमेटोग्राफर TN कृष्णनकुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय, अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। उधर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की शाही सवारी का आज आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। और

भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूं कि आज की दुनिया डिजिटल है तो कल की दुनिया मुझे तो ऐसा लगता है कि उससे भी ज़्यादा डिजिटल होने वाली है, जहां ब्रांड्स अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर करियर के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग की और जानेंगे कि इस फील्ड में यूथ के लिए कौन कौन सी एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री नवीन चौधरी, जो कि ऑथर हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल है और पब्लिक स्पीकर भी हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका।
2: धन्यवाद आकृति जी।
1: जी, और आपसे आज बहुत कुछ जानने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग आज के समय की यूँ कहूँ आइडेंटिटी है, और इस फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, कौन सी स्किल्स चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या खास कौन से लोग हैं जो इसमें बहुत सफल होते हैं, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में तो हैं, लेकिन हमारे सुनने वाले श्रोता जो हैं वो भी आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे। 2 बजे तक नवीन जी हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे, और वालों अगर आप या आपके परिवार में किसी को डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बारे में और उसमें करियर बनाने के बारे में कुछ जानना है तो आपके सवाल हम तक पहुंच सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन भी कर सकते हैं जो है 1800111026, या फिर स्टूडियो का लैंडलाइन नंबर है दिल्ली का एसटीडी कोड लगाइए 011 और फिर डायल कीजिए 2342108 एंड 2342108 2। और डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग होता क्या है, पहला सवाल तो मेरा नवीन जी आपसे यही है।
2: थोड़ी देर के लिए डिजिटल को हम लोग आकृति हटा देते हैं इसमें।
1: अच्छा,
2: मार्केटिंग और ब्रांडिंग बेसिकली जो ये टर्म है ये एक मार्केटिंग अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कि हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है। अब ब्रांड का रोल कहाँ पर आता है? ब्रांड वो चीज़ है जो कि आपकी एक आइडेंटिटी है। टीवी सब बनाते हैं, लेकिन कौन सा टीवी आपके दिमाग में आता है, कौन सा ब्रांड आपको याद आता है, वो ब्रांड एक आइडेंटिटी की वजह से होता है। आप कोई कार चलाते हैं, इतनी कार हैं, कौन सी कार सबसे पहले आपके दिमाग में आती है
1: जी?
2: इसलिए कि वो माइलेज बहुत अच्छा देती है, या इसलिए कि वो मजबूत बहुत ज़्यादा है। किसी न किसी एक खासियत से आप हर ब्रांड को पहचानते हैं, ये ब्रांडिंग है। जब यही सारी चीज़ें हम डिजिटल फॉर्मेट में करते हैं, अब से पहले जब तक डिजिटल नहीं था हम इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते थे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे टूल थे टीवी में ऐड देना, अखबार में ऐड देना, रेडियो पर आपके ऐड चलते हैं, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, ग्राउंड एक्टिविटी हो रही है। इन सब चीज़ों को हम डिजिटली अब लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारा जो एज अ मार्केटर जो उद्देश्य है वो है कि हमारे कंज्यूमर तक हमें पहुंचना है। पहुंचने का मीडियम क्या होगा? ये मीडियम डिजिटल आज की तारीख में हो गया है, क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास डेटा है, तो उसके पास एक्सेस करना किसी भी मार्केटर के लिए आसान है। उस एक्सेस को करने के लिए जिस मीडियम को हम यूज कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग।
1: ओके, अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में आपको कितने साल हो गए हैं नवीन?
2: मुझे अब तो मेरे बाल सफेद हुए हैं लेकिन जो प्रॉपर मैंने यूज करना शुरू किया था, मेरा करियर मैंने 2004 में स्टार्ट किया, लेकिन डिजिटल जिसको मैंने ढंग से यूज करना शुरू किया था आई थिंक 2012-13 से मैंने स्टार्ट किया था।
1: अच्छा,
2: और उस समय से अब तक मैं बहुत चेंज देख रहा हूँ। जब ये शुरू हुआ था तो इनिशियली गूगल एडवर्टाइजिंग डिजिटल एड्स थे प्राइमरली, फिर सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई, फिर SEO समझ रहे हैं, अचानक ऐप्स आ गए तो ऐप मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग की तरफ चीजें शिफ्ट होनी शुरू हो गई, फिर ग्रोथ मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर फोकस होना शुरू हो गया, तो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। अब देखिए AI आ चुका है, तो अब जो है मुझे अपने बाल और सफेद होने से पहले वो भी सीखना पड़ेगा।
1: एब्सोल्युटली। अच्छा, सवाल तो हम तक बहुत से पहुंचने शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन पहले ये सवाल पूछ लूं जो कि बहुत से लोगों ने पूछा है कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में करियर बनाने के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए, फिर हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह की। जी,
2: ये एक ऐसी स्किल है जो कि आपको अपने आप आ सकती है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊँ, जब मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग में शिफ्ट किया था, मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग देखता था और बहुत सी चीज़ें मैंने इंटरनेट से ही सीखी। गूगल कई सारे कोर्सेज करवाता है एडवर्टाइजिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने वहाँ से सीखा। काफ़ी कुछ कोर्सेज आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन फ्री मिल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी, और कुछ चीज़ों के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया वहां से मुझे कुछ एक अपने सवाल के जवाब मिले। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की जो एक खास बात है, जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, ये किताबों से आप नहीं सीख पाएंगे जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। अब समस्या एक फ्रेशर के सामने ये आती है कि मैंने सीख तो लिया है, मुझे प्रैक्टिकल करने के लिए जॉब नहीं मिल रही है। पर कितना इजी काम है, आपको एक इंस्टाग्राम पेज बनाना है, एक फेसबुक पेज बनाना है, वर्डप्रेस पे एक साइट बनानी है जो बहुत सस्ते में बन जाती है।
1: जी जी,
2: आप बनाइए, वो जितनी चीज़ें आपने सीखी उनका प्रैक्टिस उसके ऊपर करना शुरू कीजिए। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद जब शुरू किया था सीखने के बाद, मैंने एक डोमेन खरीदा, डोमेन खरीद के वर्डप्रेस पे एक साइट बनाई, फ्री ऑफ कॉस्ट वो साइट बन गई मेरी, डोमेन का पैसा लगा बस जो लगा
1: जी।
2: उसके बाद मैंने उस साइट के ऊपर कैसे एसईओ हो सकता है, ऑन पेज एसईओ कैसे होगा, ऑफ पेज कैसे होगा, इनको प्रैक्टिस किया। उसी के मैंने फेसबुक पेज बना के उसके ऊपर ऐड चला के देखा, गूगल ऐड चला के देखा, और वहाँ से जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आता गया। और ये ऐसी चीज़ है जिसको कि एक बार आपने किया आपको रिजल्ट आने लगेगा। आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मुझे मैनेजर बनने के लिए 8 साल लगे
1: जी,
2: लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप ये काम 2 साल में कर सकते हैं, ये इतना फास्ट मीडियम है।
1: एब्सोल्युटली,
2: तो सीखना चाहिए ये।
1: जी जी, सवाल हमारे श्रोताओं के हम तक पहुंचने शुरू हो गए हैं। अनन्या दिल्ली से जानना चाहती हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए MBA या फिर कोई स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत होती है?
2: नहीं, यहाँ पर एक्सपीरियंस और आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। जब भी आप डिग्री लेके जाएंगे उस डिग्री का बस इतना सही होता है कि एक एम्प्लॉयर एक बार देखेगा कि आपने कोर्स किया है। लेकिन अगर आपके पास पोर्टफोलियो है दिखाने के लिए तो वो हमेशा ज़्यादा काम करेगा बजाय कि एक प्रॉपर डिग्री के। डिग्री का अपना यूज़ है, मैं डिग्री की वैल्यू को बिल्कुल कम नहीं कर रहा
1: जी,
2: लेकिन जॉब पाने के लिए आपका एक्सपीरियंस ये बहुत काम आएगा। तो अनन्या, अगर आप अपना एक पेज बना रहे हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप किसी क्लाइंट का पेज बनाएं, आपका किसी फ्रेंड का अगर कोई छोटा बिजनेस हो, आप उसके ऊपर कैंपेन बना के रन करिए और उसको अपने पोर्टफोलियो में दिखाइए। अगर आप ये दिखाते हैं, आपको गारंटेड किसी MBA से पहले जॉब मिल सकता है। मैंने खुद अपनी टीम में ऐसे लोगों को हायर किया था जिनकी की MBA की कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन एक जिसको कंटेंट की बहुत अच्छी समझ थी, एक जिसको की कोडिंग बहुत अच्छी आती थी डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो मैंने इस तरह के लोग रखे और उनके पास MBA नहीं था, स्किल सेट था। सो गो फॉर द स्किल्स।
1: जी, एक और सवाल वो मेरा है कि इस फील्ड में करियर बनाने के लिए नवीन बताएं कि क्रिएटिविटी हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए या फिर डेटा और एनालिटिक्स की समझ ज़्यादा होनी चाहिए, क्या प्रेफरेंस है?
2: ये मिक्स है दोनों का, किसी एक चीज़ से काम इसमें नहीं हो पाएगा पूरी तरह से
1: जी।
2: क्रिएटिविटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना क्रिएटिविटी के आप लोगों तक नहीं पहुंच सकते, उनको क्या पसंद है और उस चीज़ को कैसे बताना है। क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वहां पर जो है हर किसी को एक ही वेबसाइट पर 10 बैनर दिख रहे हैं, आपके बैनर पर कौन ऐड करेगा? इतनी रील बन रही हैं कंपनीज की, आपकी रील पे वो कैसे रुकेगा? तो क्रिएटिविटी आपको यहाँ चाहिए कंटेंट के लिए
1: जी।
2: एनालिटिक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगा हमने बहुत अच्छा काम किया था मगर रिजल्ट नहीं आया। अब वो रिजल्ट नहीं आया, वो डेटा आपको सच बताता है कि कहाँ कमी रह गई। हो सकता है आपको लगा था आपने अच्छा बनाया, आपका कंटेंट खराब था, टच नहीं किया। हो सकता है कंटेंट बहुत अच्छा था लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं थी। हो सकता है कि उसकी बिगनिंग अच्छी नहीं थी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं
1: जी।
2: आप वो डेटा देखना शुरू करेंगे, उस डेटा से आपको रियलाइज होता है कि कहाँ पर आप ठीक जा रहे हैं और उस डेटा के बेस पे आप नेक्स्ट अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं
1: जी। आदित्य का सवाल है देहरादून से कि डिजिटल मार्केटिंग में सर कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये बताएं।
2: देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रॉडर एक ये अम्ब्रेला है, इसमें आप स्पेशलाइजेशन किसी एक चीज़ में कर सकते हैं अगर करना चाहें शुरू में। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक हिस्सा है जिसमें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर एडवर्टीजमेंट कंटेंट बनाना, एनालिटिक्स समझना, ये एक पार्ट है। दूसरा है जो कि गूगल एडवर्टाइजिंग, अब तो चूंकि मेटा एड भी होने लगे अब तो बहुत सारे हैं। इसमें वेबसाइट्स के लिए प्रॉपर जो बैनर एड्स आप देखते हैं, सर्च एड्स देखते हैं, आपको ध्यान होगा कि आपने गूगल पे कहीं सर्च किया कि जूते खरीदने हैं या मोबाइल फोन अंडर 10,000 और 15,000
1: जी,
2: आप नोटिस कीजिए बहुत सारे स्पॉन्सर्ड एड आते हैं और अलग अलग वेबसाइट्स के आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं शॉपिंग एड्स। तो सर्च एड, शॉपिंग एड, डिस्प्ले एड्स, ऐसे तमाम तरीके के गूगल के अपने एक एड के फॉर्मेट्स हैं जो कि वेबसाइट पर होते हैं। तो आप पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं

0: जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन शुरू हो गया है, क्योंकि अब जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है डिजिटल मार्केटिंग में, आप कैसे सर्च करते हैं? आपने कोई टॉपिक ढूंढा कि सपोज दिल्ली में वेदर कैसा होता है इन 3 महीने में, आपको 3 वेबसाइट आती हैं, आप उसको खोल के आर्टिकल पढ़ते हैं, अब आपको ऊपर ही लिखा हुआ आ जाता है, ओवरव्यू आता है कि इतने से इतने दिन बारिश होती है, इतनी एमएम बारिश होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन वहीं खत्म हो गई। अब कौन सी वेबसाइट पर जाएगा, आपका पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया।
1: बिल्कुल।
0: तो यहाँ पर अब आपको जो है जनरेटिव एआई सीखना पड़ेगा। तो एसईओ भी है, एसएमएम भी है और डिजिटल एडवर्टाइजिंग भी है, तो आप इन सभी चीज़ों के अंदर कर सकते हैं, सीखेंगे आप सब कुछ। शुरुआत में हो सकता है किसी बड़ी ब्रांड में अगर आप काम करते हैं तो आपको एक ही एरिया काम करने को मिले, लेकिन उस एरिया पे मेरे सलाह ये रहेगी मत टिकिएगा, बढ़ते जाइएगा, वरना आप वहीं फंसे रहेंगे, आगे करियर ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए सभी चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए,
1: यानी कॉन्स्टेंटली अपडेट करना होगा अपने आप को, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और आपने जैसा कहा नवीन कि अपने बालों को थोड़ा सा और सफ़ेद करता रहना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग में करियर कैसे बनाएं, यही आज का विषय है। हमारे साथ हैं रेनबो हेल्पलाइन में हमारे एक्सपर्ट श्री नवीन चौधरी, जो कि ऑथर हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल और पब्लिक स्पीकर भी हैं, और आपके सवाल हम तक इस विषय पर पहुंच रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
5: पता का चाय गजब का स्वाद।
6: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
7: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
6: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
8: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
9: इग्नोर नहीं, याद करो।
10: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं, मैं आकृति खंडूरी, और कहना आपसे यही चाहती हूं कि बदलते बिजनेस लैंडस्केप में डिजिटल प्रेजेंस किसी भी ब्रांड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुकी है, और ऐसे में स्किल्ड प्रोफेशंस की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। रेनबो हेल्पलाइन में आज हम यही जान रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में इम्पॉर्टेंट करियर रोल्स, स्पेशल स्किल्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, यही हमारा आज का विषय है, और इस विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं नवीन चौधरी, जो कि ऑथर हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं और पब्लिक स्पीकर हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जिसके माध्यम से आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं वो है 9868107070। और नवीन, आदित्य ने इस ब्रेक पर जाने से पहले आपका सवाल पूछा था कि डिजिटल मार्केटिंग के जो प्रमुख करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, तो इसमें मार्केट में और क्या चेंज आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
6: आदित्य को जो आपने आंसर दिया, पहले अम्ब्रेला टर्म था जिसमें हमने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की बात की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात की। अब इसी में देखिए जो फास्ट जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको मिक्स करते हुए एक नई टर्म चल रही है, ग्रोथ मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग।
5: अच्छा,
6: अब तक क्या था कि ब्रांडिंग के लिए हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे थे, ऑनलाइन एड्स को यूज़ कर रहे थे, लेकिन एंड ऑफ द डे रेवेन्यू चाहिए। कंपनीज के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके पास कैसे टिका रहे। आप देखिए कई बार वेबसाइट चेंज होता है, आपने कोई चीज़ खरीदी या खरीदते खरीदते रुक गए, आपके पास तुरंत एक मैसेज आता है कि आपको अगर खरीदना है तो ये कूपन कोड लगाइए, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें ग्रोथ और परफॉर्मेंस मार्केटिंग का पार्ट है। ग्रोथ मार्केटिंग का एक बड़ा जो फोकस है वो है कि रिटेन करना अपने कस्टमर को, और कंपनीज इसके ऊपर, सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स कंपनीज स्पेशली, बहुत फोकस करती हैं कि ग्रोथ मार्केटिंग के जरिए आप बारंबार उसी कस्टमर को अपनी तरफ लेके आएं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, रिजल्ट ड्रिवन, हर क्लिक, हर पैनी जो आपने स्पेंड की है उसके बदले में रेवेन्यू कितना आया। तो अगर किसी को इसमें बहुत पैसा कमाना है, बहुत आगे बढ़ना है, ये दो एरिया ऐसे हैं जिसके ऊपर की फोकस उनको करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा, अगर आप खुद अपना करियर साथ में शुरू करना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ों पे तो कर ही सकते हैं, कुछ एक चीज़ें और होने लगी हैं कि अब देखिए छोटे छोटे शहरों में भी ना दुकानदार जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास बहुत बड़े बजट नहीं होते, लेकिन अब व्हाट्सएप मार्केटिंग कितनी बड़ी चीज़ हो गई है। आपको हमेशा जो है वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टा पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज बैंक से लेके और छोटे छोटे शॉपकीपर्स व्हाट्सएप पे आपको कनेक्ट करते हैं। तो एक व्हाट्सएप बिजनेस है, एक API होता है। API में आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, बहुत सारा बड़ी कंपनीज अक्सर यूज़ करती हैं, बैंक्स वगैरह जैसे भी, जिसमें आपने एक ऑप्शन डाला। इसको आप सीखें, पूरा का पूरा कैटलॉग आप जो है व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, जितने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को दे सकते हैं, और वहाँ से उनको जो है जो चाहिए वो आपको ऑर्डर करते हैं। व्हाट्सएप पे इस वक्त बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं छोटे छोटे, जहाँ लोग अपना प्रोडक्ट ग्रुप्स बना के भेजते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, उनको बेचते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा हैं, और आज मैं कह रहा हूँ, अभी हो सकता है आप और मैं बात करें, इस बीच में कुछ और नया आ गया तो आपको ट्रेंड्स के ऊपर भी पूरी नजर रखनी है और लगातार देखते जाइए क्या नया होता चला जा रहा है।
5: तो हर वक्त कुछ नया सीखने की चाहत और साथ ही साथ बहुत ही विजिलेंट और अलर्ट रहे आप अपने आसपास के माहौल और बढ़ती टेक्नोलॉजी के बारे में। निखिल का एक सवाल हम तक पहुंचा है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये इनमें क्या डिफरेंस है?
6: सब कुछ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का एक पार्ट है, आपके मीडियम चेंज हो जाते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में प्राइमरली आप ब्राउजर बेस्ड एडवर्टाइजिंग करते हैं, जैसे गूगल पे हमने किया, आपने सर्च किया
5: जी।
6: या किसी वेबसाइट पे गए, आप किसी न्यूज वेबसाइट पे जाते हैं, वहां भी आपको ऐड दिखते हैं, तो उसमें बैनर ऐड हो गया, वो डिस्प्ले ऐड हो गया, शॉपिंग एड्स हो गए, ये सारी चीजें हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में लेके चलते हैं।
5: अच्छा,
6: अब इन्हीं चीज़ों को जब आप सोशल मीडिया पे लेके जाते हैं, क्योंकि अब जो है फेसबुक इंस्टाग्राम ने भी मेटा एड्स के नाम से शुरू कर दिया, पहले सिर्फ गूगल किया करता था, तो वहाँ पर जो है एडवर्टाइजिंग उनके थ्रू हो रही है, वो भी अपने अपने फॉर्मेट उनके हैं, उन फॉर्मेट्स के ऊपर ऐड दिए जाते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग जो है ये एक इंटरेस्टिंग टर्म है, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो लोग करते हैं अपनी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए, लेकिन वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप कॉन्टेंट लिखते हैं, आप टेक्निकली अपनी वेबसाइट को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते हैं, जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट लोड होने में टाइम लेती है, उसका डिजाइन ऐसा नहीं है कि लोग इजीली कुछ ढूंढ सकें, तो गूगल का एल्गोरिदम आपकी साइट को नीचे करता चला जाएगा।
5: अच्छा।
6: तो ये टेक्निकल साइड है जिसको कि टेक्निकल आदमी ठीक करता है। दूसरा है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपको सर्च करना है कि बेस्ट शूज या बेस्ट डिजिटल कोर्स, तो बेस्ट डिजिटल कोर्स वाला कौन है जो उस कीवर्ड को यूज करता है और उसकी वेबसाइट ऊपर आ जाए, तो ये तो मोटी मोटी हो गई ऑन पेज आपने एसईओ किया, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फास्ट करना है तो फिर आप ऐड चलाते हैं, उसको कहते हैं हम सर्च इंजन मार्केटिंग। आपको ध्यान होगा, आप जब भी ऐड चला कुछ सर्च करते हैं, आपको नीचे

0: नीचे तो आंसर्स आते हैं, वेबसाइट्स दिखती हैं, लेकिन ऊपर स्पॉन्सर्ड करके आपको नजर आता है कुछ वेबसाइट्स, ये कहलाती है सर्च इंजन मार्केटिंग। तो कंपनीज जो है इन सारे मीडियम्स को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती है, डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरीके से है। इसमें कई बार धोखा भी होता है, आपने सर्च किया जूते और आपको जो किसी और कंपनी ने जूते के नाम से कीवर्ड डाल के रखा हुआ है, आप उसकी साइट पर चले गए। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो आप कंपनी का पैसा उसमें खराब करेंगे, साइट तो आपको विजिट तो दिख जाएगा लेकिन गूगल बाद में आपको धीरे धीरे डाउनग्रेड करेगा। तो एक चीज़ जो है मार्केटिंग के बारे में, ये चाहे डिजिटल हो ट्रेडिशनल हो, ये मैं सबको कहना चाहूँगा, ये कहा जाता है कि मार्केटिंग के लोग जो है चीज़ों को घुमा देते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन कोई भी मार्केटिंग तभी सक्सेसफुल हुई है जहाँ पर कि कस्टमर के साथ ईमानदारी है। जितनी ज़्यादा ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ आप कस्टमर से बात करेंगे, आपके साथ कस्टमर उतने लंबे टाइम तक टिका रहेगा। आप किसी भी ब्रांड को इंडिया के देख लीजिए, दुनिया के देख लीजिए, जो बहुत सालों से टिका हुआ है, उन सब की मार्केटिंग के अंदर ट्रस्ट ऑनेस्टी टिकी हुई है।
1: ये अल्टीमेट क्वालिटीज हैं। अगर आपका बेसिक कैरेक्टर ही नहीं है तो आप कितना भी स्मार्ट फेस मोमेंटरीली या टेम्परेरीली सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं आप गिरेंगे जरूर, भटकेंगे जरूर। खैर, इस फलसफे के अलावा बहुत से सवाल और भी हैं। ये हम तक मेघा का जयपुर से आया है और ये कहती हैं कि सोशल मीडिया पे डिफरेंट जो ये अकाउंट्स होते हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, इनकी अच्छी नॉलेज होना क्या डिजिटल मार्केटिंग करियर के लिए सफिशिएंट है? मतलब अलग अलग जो हैं।
0: मेघा, सबसे पहले तो स्वागत है क्योंकि आप मेरे होम टाउन से हैं। और दूसरी चीज, सफिशिएंट नहीं है, ये एक और रिक्वायरमेंट है। ये जैसे ABCD 26 अल्फाबेट है, तो उसमें से एक अल्फाबेट ये है
1: जी।
0: सोशल मीडिया मार्केटिंग एक एरिया है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें कि आप उन प्लेटफॉर्म्स को समझते हैं, उनके एल्गोरिदम को समझते हैं, उस पर कैसे कंटेंट क्रिएट किया जाए उस पर। सो दो पार्ट आप उसको ले लीजिए, वन इज क्रिएटिंग द कंटेंट सोशल मीडिया पे
1: जी,
0: ये आपका एक पोर्शन है। दूसरा पोर्शन है उसकी एडवर्टाइजिंग।
1: हाँ।
0: इन दो चीज़ों को आप सीखेंगे, आप उस एरिया में काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप करियर में एक सर्टन टाइम लिमिट से ऊपर बढ़ना चाहेंगे तो सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग से काम नहीं होगा। वहाँ पर आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी आनी चाहिए, वहाँ पर जो है आपको AI भी अब तो ज़रूरत है उसकी। इन चीज़ों को आप जितना जानते जाएंगे आपका ग्रोथ होता जाएगा। यू कैन स्टार्ट विद दिस, अगर आपकी ये शुरुआत है प्लीज स्टार्ट विद दिस, ताकि आपको एक समझ में आने लगे कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। और जैसे ही आप ये समझें, नेक्स्ट सीखना शुरू कर दीजिए
1: जी। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दीजिए, बहुत लोगों के सवाल हैं, रेगुलर स्टडीज़ के साथ कुछ कोर्स करें या 12वीं के बाद कुछ खास कोर्स करना है, क्या होता है
0: इसके लिए? अब कई इंस्टीट्यूट्स हालांकि कराने लगे हैं BBA वगैरह डिजिटल मार्केटिंग में, वो तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो भी इसके लिए कोई बहुत स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है। आप 12वीं के बाद, आपने देखिए अब तक हमने जितनी बात की, यहाँ स्किल सेट की बात हो रही है। आप अगर ऑनलाइन भी सीख लेते हैं चीज़ों को, आप किसी छोटे इंस्टीट्यूट से भी कोई सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, काम चल जाएगा। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए चाहिए। एंड ऑफ द डे जॉब आपको आपकी क्वालिफिकेशन के उसके बेस पे मिलेगी, स्किल के बेस पे, कि आप कितना बढ़िया उसको करके दिखा सकते हैं। तो उसको सीखने पे फोकस किया जाए बजाय कि डिग्री के। डिग्री सेकेंडरी है, डिग्री आप लीजिए, मैं डिग्री के लिए तो कभी मना नहीं करता
1: जी।
0: लेकिन ये उन लोगों के लिए भी है कि कई लोग ऐसे हैं, मैं बहुत से असिस्टेंट से मिलता हूँ, जिनके लिए आसान नहीं है BBA जैसे कोर्सेज करना। मैं उनको यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन गूगल के फ्री कोर्सेज चलते हैं,
1: अच्छा,
0: HubSpot के फ्री कोर्सेज चलते हैं, कई सारे, अभी मुझे सबके नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आप जस्ट सर्च करें डिजिटल एडवर्टाइजिंग फ्री कोर्सेज, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो कि एडवर्टाइजिंग करते हैं गूगल या सोशल मीडिया पे, फेसबुक इंस्टाग्राम, ये लोग फ्री में ट्रेनिंग दिलवाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ये सीखें और उनके यहाँ उसको इस्तेमाल करें। तो आप अपने कोर्सेज फ्री में कर सकते हैं। कुछ कंपनीज हैं जो कोर्स फ्री करवाएंगी, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए फीस रहती है। तो फीस देना ना देना आपकी मर्जी है
1: जी।
0: मतलब मेरे जैसा एम्प्लॉयर आपको मिलेगा तो वो आपकी डिग्री नहीं ढूंढेगा, वो आपके स्किल को देखेगा,
1: आपकी स्किल को देखेगा। नेहा नोएडा से कहती है, सर डिजिटल मार्केटिंग सीखने में कितना समय लगेगा?
0: मैक्सिमम 6 महीने
1: बस।
0: मैक्सिमम 6 महीने थ्योरी को सीखने में इन सारी चीजों के। लेकिन जो है प्रैक्टिकल आप जितना करते जाएंगे आप उतनी नई चीजें सीखेंगे। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ प्रैक्टिकल जो मैंने किया
1: जी।
0: जब मैंने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग शुरू की थी सोशल मीडिया पे, तो मैं एक मार्वल और DC के कुछ बुक्स हमारे यहाँ थी
1: जी।
0: और कॉमिकॉन हो रहा था, तो उसके लिए मुझे एड चलाना था। अब एड चलाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, एक मार्केटर की थॉट प्रोसेस कि मैं सारे बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन सबके ही एड एक साथ चला दूं। मैंने चलाए भी, रिस्पांस भी आया, लेकिन मेरे को जो रिस्पांस चाहिए वो उतना अच्छा नहीं है। यहां पर देखिए क्या इनसाइट काम करती है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन चलता है, ठीक है, इस यूनिवर्स में ये है। स्पाइडरमैन वाले बच्चे हम माने जाते हैं जो स्पाइडरमैन पसंद करते हैं। अगर आप इस कस्टमर के थॉट प्रोसेस को समझते हैं तो एक जैसे एड में तीनों दिखाने पर चांसेस हैं कि क्लिक ना हो, और इन लोगों के बीच में वैसे ही युद्ध होता है जैसे दो देशों के बीच में युद्ध होता है। ये जो मार्केटिंग इनसाइट लोगों का था, उसके बाद मैंने एड्स को बांटना शुरू किया कम पैसे में। एक सिर्फ बैटमैन का चलाया, एक सिर्फ सुपरमैन का चलाया, और मेरी जो पर क्लिक रेट थी जो 2 रुपये 2.5 रुपये आ रही थी वो 25 से 40 पैसे के बीच में आ गई। तो ये जो है आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी विद द एक्सपीरियंस कि क्या होता है, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन आकृति आपने पूछा था कि एनालिटिक्स का काम, यहाँ पर एनालिटिक्स आपको बहुत सारा इनसाइट देता है कि क्यों ये काम नहीं कर रहा, क्या मैं इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर दो ही चीजें, एक कंज्यूमर इनसाइट कि लोग बैटमैन वर्सेस सुपरमैन भिड़े हुए हैं
1: जी,
0: वो इनसाइट काम आती है, और दूसरा मुझे डेटा बता रहा है कि मेरी कॉस्ट ऊपर जा रही है, तो एक बार अलग करके देखता हूँ कितना आसान है। तो हमने किया, हो गया।
1: वंडरफुल। AI का क्या रोल है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ऐसे सवाल मेरे जहन में भी बहुत हैं। तो जुड़े रहिए रेनबो हेल्पलाइन से, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। नवीन चौधरी जो कि ऑथर, मार्केटिंग प्रोफेशनल और पब्लिक स्पीकर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे पूरे 2 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। One more time.

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और आपसे यही कह रही हूं कि अगर आपको लगता है कि मार्केटिंग का मतलब एडवर्टीजमेंट्स बनाना ही है तो आज का रेनबो हेल्पलाइन आपकी सोच ज़रूर बदल रहा होगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जहाँ पर क्रिएटिविटी मीट्स टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, और इस क्षेत्र में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो कौन सी स्किल चाहिए, कौन से करियर ऑप्शंस हैं, कहाँ से शुरुआत करें, क्या होती है मार्केट, इन सबको समझ रहे हैं हम। हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट नवीन चौधरी, ऑथर, मार्केटिंग प्रोफेशनल और पब्लिक स्पीकर हैं। आपके सवाल हम तक पहुँच रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और फिलहाल पैंथर तोमर साहब का दिल्ली से सवाल आया है कि सर, पारंपरिक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है?
2: मार्केटिंग हमने जब शो शुरू किया था तब ये कहा था कि लोगों तक पहुंचने की चीज़ है और इसके मीडियम अलग हैं। आज से पहले, बहुत पहले जो है, लोग पैम्फलेट के जरिए अपनी बात पहुंचाया करते थे, पोस्टर लगा दिया करते थे, फिर अखबार आए, रेडियो आया तो हमने रेडियो के जरिए, फिर टीवी आया तो टीवी के जरिए। पारंपरिक एडवर्टाइजिंग में हमने रेडियो, टीवी, इवेंट्स, होर्डिंग, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया, ये पारंपरिक एडवर्टाइजिंग होती है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग में सब कुछ ऑनलाइन है, आपका होर्डिंग भी किसी वेबसाइट पर लगता है, आपका एडवर्टीजमेंट किसी सोशल मीडिया साइट पर चलता है, ये डिजिटल है। लेकिन सवाल है कि क्यों डिजिटल, क्यों और पारंपरिक क्यों, कब, यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। देखिए, पारंपरिक मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आप अपने ब्रांड को बहुत लोगों तक पहुँचाते हैं, लेकिन उसमें टू वे कम्युनिकेशन कभी नहीं होता। अगर एक न्यूज़पेपर में आपने ऐड देखा तो ऐड देखने के बाद आप रिएक्ट नहीं कर सकते इमीडिएट, अनलेस किस पर लिखा है कि आप इस नंबर पे फ़ोन करें और उसका भी 10 से 5 का समय होगा, आप इमीडिएट रिप्लाई उस पर नहीं कर सकते। एक एडवर्टाइज़र के तौर पे मैं नहीं जानता कि उस अखबार में मेरे ऐड को कितने लोगों ने देखा, क्योंकि हम मानते हैं कि इतना बिका है अखबार तो इतना शायद लोगों ने देखा होगा, उसका इम्पैक्ट मैं नहीं जानता। जब यही बैनर किसी वेबसाइट पे आता है तो उस पर इम्प्रेशन आता है। इम्प्रेशन मतलब जैसे ही आपने वेबसाइट देखी, आपको बैनर दिखा, वो एक इम्प्रेशन हो गया, तो जितने लोगों ने इम्प्रेशन देखा वो मुझे दिख गया। नंबर टू जो मेरा क्राइटेरिया है, क्लिक, क्या आपने उस बैनर एड पे क्लिक किया था? अगर आपने क्लिक किया तो वो मेरे को दिखेगा। क्लिक करने के बाद आप मेरी वेबसाइट पे आए, वेबसाइट पे मैंने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए, आपने फॉर्म भरा, अपना फ़ोन नंबर डाला और फिर आपको लगा कि नहीं यार, फ़ोन नंबर नहीं डालूंगा मैं, आप वहां से पीछे चले गए।
1: जी,
2: एज अ डिजिटल मार्केटर मुझे ये पूरा प्रोसेस दिख गया कि 150 लोगों ने मेरा बैनर देखा
1: जी,
2: 10 लोगों ने बैनर पे क्लिक किया,
1: हाँ।
2: और उसमें जो है सिर्फ 2 ही आदमी पूरा फॉर्म भरते हैं। अब जो है मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे मुझे हर पैसे की वैल्यू मिल गई है कि एड पे कितना पैसा लगा, कितना रिस्पॉन्स है। अब जहां यहां पर काम आता है कि एनालिटिक्स का, इस एनालिटिक्स के बाद आप ये तय करिए कि वो आदमी क्यों रुका, क्या मेरा फॉर्म ठीक नहीं बना हुआ था, या अगर फ़ोन नंबर पे लोग रुक रहे हैं तो हो सकता है लोग फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते, अगर बहुत सारे लोग वहाँ रुकते हैं तो क्या अब मैं एक नई तरकीब सोच सकता हूँ कि बिना फ़ोन नंबर दिए मैं उनसे कनेक्ट कर सकूँ, ईमेल का ऑप्शन दूँ, ये आपको सोचना पड़ेगा। या फिर जो है लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं और इमीडिएट हट जाते हैं, ये सारी चीज़ें एनालिटिक्स से समझ में आनी शुरू होती हैं, और ये आपको किसी न्यूज़पेपर और टीवी ऐड से समझ में नहीं आएगा
1: जी।
2: सोशल मीडिया पर अगर आपने ऐड चलाया, आपका एक पोस्ट के, और ये सारे ऐड पोस्ट के तौर पे आते हैं, आपको पसंद आया, आप उसी टाइम कमेंट करते हैं, कुछ भी, जो भी।

0: आपको प्राइस जाननी है, प्राइस पूछते हैं, या आपको लगता है कि ऐड अच्छा है तो आप उसकी बात करते हैं, कहाँ पे मिलेगा ये आप पूछ सकते हैं, और वहाँ पर एक मार्केटिंग प्रोफेशनल आपको उसी कमेंट में रिप्लाई कर सकता है, जो कि किसी अखबार में दिए हुए या टीवी में दिए हुए ऐड में कस्टमर से हम बात नहीं कर सकते। तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन है, इसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग अब बड़ा बनता जा रहा है। 2010-11 में 5 से 8% डिजिटल मार्केटिंग था, अगले साल वो 25% हुआ, और अब ये जो है बहुत सी कंपनीज में 50 से 60% तक जो है ये डिजिटल मार्केटिंग जा रहा है, और कई टेक्निकल कंपनीज में तो पारंपरिक मार्केटिंग हो ही नहीं रही है, वो पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके पास एक मीडियम है जिससे कि आप हर पैसे का हिसाब रख सकते हैं।
1: जी, AI के बारे में अब मैं जानना चाहूँगी कि इतनी तेज़ी से AI और
0: जी
1: ऑटोमेशन जो है वो बढ़ रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग जॉब्स के फ्यूचर पे इसका क्या असर पड़ेगा?
0: एक शिव जी ने भस्मासुर बनाया था। AI को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं सब कुछ इस पे
1: वही
0: डिपेंड करेगा।
1: जी
0: ये भस्मासुर भी है और
1: जी
0: ये आपके इशारे पे सब कुछ कर सकता है। इसको ऐसा मान लीजिए कि एक चाकू है, आप उससे उंगली काट रहे हैं या सब्जी काट रहे हैं, आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। AI ने बहुत चीज़ें आसान की हैं। एक तो कंटेंट लिखना बहुत आसान हो गया है, कंटेंट को चेक करवाना आसान हो गया है, आपको अब कई बार वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं चाहिए, अब AI ही आवाज़ दे रहा है, वीडियो एडिट्स हो जा रहे हैं, तो तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से पैसा कम लग रहा है, काम फास्ट हो रहा है।
1: जी
0: अब नुकसान इसका यह है कि इसकी वजह से बहुत सी जॉब्स जा रही हैं, तो AI यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज
1: चैलेंज
0: क्रिएट कर रहा है।
1: जी
0: लेकिन AI जो है आपको सोचने के नए तरीके दे रहा है। हमने थोड़ी देर पहले SEO की बात की थी,
1: हाँ
0: पहले आप ऑन पेज SEO करते थे, अब चूंकि जनरेटिव रिस्पॉन्स आने लगे हैं, तो किस तरह से आपकी वेबसाइट उस तरह का रिस्पॉन्स देगी। एक मार्केटर के लिए, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए जो अब चैलेंज है वो ये नहीं है कि कंटेंट लिखना है, वो तो AI लिख देगा। अब डीप कितना है, पहले आप कीवर्ड पे खेल के कोई बुरा आर्टिकल भी किसी तरीके से SEO से ऊपर ला सकते थे,
1: जी
0: लेकिन अब AI पे हम लोग क्या करते हैं, AI से हम डिटेल में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दोस्त से बात करते हैं, गूगल पे ऐसा सर्च नहीं होता था
1: बिल्कुल
0: पहले।
1: बिल्कुल
0: AI अब क्या करता है, आपके सवाल के आधार पे डीप एनालिसिस करता है, डीप एनालिसिस करके वो वेबसाइट्स को पूरा पढ़ के देखता है कि किस आर्टिकल में आपके सवाल का सही जवाब है, और फिर वो जवाब आपके सामने निकाल के देता है।
1: जी
0: तो जवाब मोटा मोटा आ गया, अब वहां पर अगर आपको और डिटेल चाहिए, आप पूछते हैं कि मुझे बताओ कहाँ से इंफॉर्मेशन आई, वो आपके वेबसाइट तब वो देता है जिसपे इंफॉर्मेशन है। तो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, एक डिजिटल एडवर्टाइजर के लिए अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि मेरा जो कंटेंट है वो कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है, कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग का है, ये एक चैलेंज के साथ एक प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ जो है, हर फैसला अब लोग AI के थ्रू कर रहे हैं, मैं श्रीलंका घूमने जाऊं कि मैं नेपाल घूमने जाऊं, अब वो मुझे बता रहा है AI।
1: जी
0: पहले जो है हम किसी ब्लॉगर का आर्टिकल देख के करते थे,
1: जी
0: तो आपको अगर एक ट्रैवल का कंपनी आप चला रहे हैं तो आपको इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप क्या बेचना चाहते हैं, आप कितनी डीपली उस कस्टमर को समझ कर एनालिटिक्स के बेस पे कि लोग बेसिकली किस क्या घूमना चाहते हैं। अगर कोई मेरी एज ग्रुप में है, मेरी एज ग्रुप में जो है हम किसी शांत जगह पे जाना चाहेंगे, लेकिन जो यंगर ऑडियंस है जो हमारे शो सुन रही है, ये लोग किसी पार्टी वाली जगह पे जाना चाहेंगे, तो हो सकता है कि मैं शिमला जाना चाहूं और ये गोवा जाना चाहें।
1: जी
0: ये भी समझना डिजिटल मार्केटर का काम है। AI अब क्या कर रहा है, पहले हम पूरा ये डेटा खुद पढ़ते थे, अब AI आपको बहुत इजी करके देता है डेटा को एनालाइज करना कि कौन सा एज ग्रुप किस जगह से किस शहर से आपको ये सारी चीज़ें दे रहा है। तो यहाँ पर जो है सारा का सारा फोकस अब AI की वजह से हुआ है कि चीज़ें ऑटोमेटेड होने लगी हैं, लेकिन हमारा जो काम बढ़ा है वो ये बढ़ा है कि हम कितना डीप इसमें जाते हुए कस्टमर्स को अपने साथ जोड़े रख सकते हैं। एक जो मुझे लगता है कि चैलेंज और आएगा वो ये आएगा कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मशीन जो काम कर सकती है आपको मशीन से काम करवाने वाला बनना पड़ेगा। आपका करियर जो है अब उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना बढ़िया प्रॉम्प्ट देते हैं, किस तरीके से आप मिनिमम प्रॉम्प्ट्स में अपना काम AI से फास्ट करवा सकते हैं। और AI चूंकि वो मशीन है, वो एक सर्टेन चीजें ही कर सकता है, वो
1: जी
0: इमोशन नहीं कर सकता। एक मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने पूछा कि आप तो ऑथर हैं, अब तो AI किताबें लिखेगा, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि AI ने कभी EMI नहीं भरी, AI ने कभी प्यार नहीं किया, उसका कभी दिल नहीं टूटा, वो ह्यूमन इमोशन AI के पास नहीं है। तो ये बात जो है हमेशा हम लोगों के पक्ष में रहेगी कि AI आपकी चीजें आसान करेगा, लेकिन कस्टमर

0: कस्टमर को समझना, कस्टमर के बिहेवियर को समझना, ये हमारे हाथ में है। तो उस एआई को हमें अपने हिसाब से कैसे चलाना है ये हमें तय करना है।
1: तो एआई कैन बी अ वेरी पावरफुल टूल, लेकिन उसको इस्तेमाल करना हमें ही आना चाहिए। कुछ सवाल स्पेशली मान्या का गुड़गांव से हम तक ये सवाल आया है कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए सर क्या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ज़रूरी है?
0: देखिए, भाषा आनी अच्छी बात है, इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि बहुत सी वेबसाइट इंग्लिश में हैं।
1: जी,
0: लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश की वजह से ही आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं। आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ।
1: जी,
0: इंडिया में इस वक्त हिंदी बोलने और समझने वाले लोग 65% से ज़्यादा हैं। ये नंबर हर साल बढ़ रहा है, ये पिछले 5 सालों में नंबर बढ़ा है और अभी और बढ़ेगा।
1: जी,
0: तो हमारी भारतीय भाषाएं जो हैं उसको सुनने और समझने वाले लोग हैं। डिजिटल मीडियम पे अगर आप ध्यान दें, एडवर्टाइजिंग जो है इंग्लिश से शिफ्ट होते हुए पिछले 10 सालों में हिंदी की तरफ आ गई है। अब वो हिंदी देवनागरी में लिखा भी जाता है, देवनागरी हिंदी में बोला जाता है, एड्स उसके ऊपर बनने शुरू हो गए, अनलेस की प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक उस भाषा का ना हो। तो ये चिंता की बात नहीं है कि आप किस भाषा में दक्ष हैं, किसी एक भाषा में आपका दक्ष होना ज़रूरी है, वो चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, दोनों में है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप भाषा की चिंता मत कीजिए, आप स्किल के ऊपर फोकस कीजिए।
1: जी, तो रेनबो हेल्पलाइन में करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पे बात हो रही है। नवीन चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और अगर आपको सोशल मीडिया चलाना पसंद है तो और नए नए आइडियाज़ आपको आते रहते हैं आपके दिमाग में, तो हो सकता है कि आपकी यही क्रिएटिविटी आपको इसी करियर की तरफ ले जाए। यही कुछ समझ रही हूँ मैं नवीन जी आपसे बात करके।

0: रेनबो हेल्पलाइन में आखिर की ओर बढ़ते हुए, अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए, मैं आकृति एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगी कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग में। इनफैक्ट एक ऐसा फील्ड है जहाँ हर नए आइडिया को एक नई अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। आप बहुत ही बढ़िया इसमें करियर बना सकते हैं। नवीन चौधरी साहब हमें बता रहे हैं इस विषय में आपके सवाल बहुत से हैं। एक सवाल दो तीन लोगों ने मुझसे पूछा है कि बिगिनर्स जो हैं इस फील्ड में करियर बनाते समय कौन सी आम गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं।
1: सिर्फ इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में बिगनर्स एक गलती करते हैं कि वो चाहते हैं हर चीज आज ही हो जाए और एक शॉर्ट साइटेडनेस होती है, कई बार उसकी मजबूरी होती है कि इमीडिएट मुझे एक जॉब मिल जाए
0: जी।
1: इसलिए हम क्या करते हैं कि हम स्किल पे फोकस करने के बजाय शॉर्टकट ढूंढ के काम करना शुरू करते हैं। अगर मैं इसको, चूंकि हम लास्ट में है आकृति, मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें मैं इस सवाल का जवाब देते हुए बाकी जो हमने बात की थी जो बाद में जुड़ने के लिए
0: जी, जी जी।
1: आप डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं, तीन चीजों पे फोकस करें स्किल को लेके। पहला है अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट। आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए, अच्छा लिखना, अच्छा बोलना, ये आप सीखें। इसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर समझिए कि लोग कैसे चीजों को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। दूसरा है डेटा एनालिटिक्स, इसको आपको जरूर सीखना चाहिए ताकि आपने जो भी किया उसका इम्पैक्ट क्या है और क्या सुधार आपको करना है। और डिजिटल में ये खास बात है कि अगर आपका कैंपेन अभी अच्छा नहीं चला तो आप तुरंत उसको चेंज कर सकते हैं
0: जी।
1: तो ये डेटा एनालिसिस आपको वहां पर हेल्प करेगा। और तीसरा है टेक्निकल साइड, जहां पर कि हमने एसईओ की बात की, अब वो एएसओ भी हो रहा है, जनरेटिव हो रहा है, इनको सीखते जाएं। फिर कई लोगों ने ये पूछा था कि डिग्री कितनी ज़रूरी है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो बड़ा मैटर करता है। फर्स्ट टाइमर को अक्सर पोर्टफोलियो अगर बना हुआ है तो बहुत हेल्प करता है, आप उसको ज़रूर बनाएं। जब आप बनाते हैं और आपने कुछ भी जो किया, मेरे पास एक लड़की आई थी इंटर्नशिप के लिए और उस समय सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी वो, उसने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे फेसबुक का पोस्ट बनाना आता है। उसने मुझे मेरा पेज एनालाइज करके बताया कि सर आपके पेज में कुछ चीज़ें कमी हैं, अगर इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, डिज़ाइन में ये चेंज हो जाएंगे, कंटेंट में ये चेंज हो जाएगा, तो आपका पेज अच्छा ग्रो करेगा। मैंने उसको 2 महीने की इंटर्नशिप पर लिया पहले और फिर मैंने उसको 6 महीने एक्सटेंड करवाया कि आप पैसे लीजिए और प्लीज़ रुक जाइए मेरे साथ
0: जी, जी।
1: और उसके ग्रेजुएशन के बाद उसको जॉब ऑफर की, हालांकि उसको और कहीं अच्छी जॉब मिल गई। तो ये बड़ा मैटर करता है कि उसके पास उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। एक और चीज़ जो हमें हमेशा लगती है, चूंकि हम छोटे शहरों से आए लोग हैं, ये सब दिल्ली मुंबई में होता है, ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना काम घर बैठे कर सकते हैं, आप जयपुर बैठे हैं, देहरादून बैठे हैं, सीकर बैठे हैं, मधुबनी में बैठे हों, आप कहीं से भी बैठ के विदेशों तक से काम ला सकते हैं, बशर्ते कि आपका वो काम अच्छा है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम करियर में कहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में हैं तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वही यहाँ भी है कि आप बिगिनर से शुरू करेंगे और आप सीएमओ तक बन सकते हैं। तो कितनी चीज़ें, शुरुआत में क्या मुझे सब आना चाहिए, ये भी एक प्रश्न कई बार आता है। जैसे एक सवाल आया था, सिर्फ सोशल मीडिया सीख के हो सकता है क्या? यस, हो सकता है, लेकिन वो आपकी बिगनिंग है। आप सोशल मीडिया सीखिए शुरू में, या आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सीखिए, आप एक स्किल के मास्टर हो जाइए, काम शुरू करिए और नेक्स्ट स्किल को जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप अपने आप कॉर्पोरेट के पिरामिड में ऊपर होते चले जाएंगे। तो ये ब्रॉडर ये सारी चीज़ें हैं।
0: थैंक यू जी, थैंक यू नवीन वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपने बहुत बहुत हमें टिप्स भी दी और सही दिशा भी हमें दिखाई। इसी के साथ मैं आकृति भी आज के हेल्पलाइन से विदा लूंगी, लेकिन चलते चलते आपका पसंदीदा गाना, आपने कहा था किशोर कुमार का इम्तिहान मूवी से
1: जी,
0: रुक जाना नहीं
1: जी,
0: ये ज़रूर सुनाऊंगी। और साथ ही साथ ये भी कहूंगी कि आज हमने ये जाना कि आज के दौर में केवल आपका प्रोडक्ट या आपका इंटरेस्ट होना ही अच्छा नहीं है, बल्कि ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि आप सही लोगों तक सही तरीके से सही पहचान के साथ लोगों तक पहुंचे। और यहीं पर शुरुआत होती है डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग की। तो अगर आप में क्रिएटिविटी है और आपकी ताकत, आपकी टेक्नोलॉजी में आपका ज्ञान है, तो शायद अगला करियर डेस्टिनेशन आपका डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ही हो सकता है। इसी के साथ मुझे यानी आकृति को भी दीजिए विदा। नमस्कार।

नमस्कार, दो बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक पणजी में 11 बजे शुरू हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दोपहर नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों और व्यापार मंत्री जेवियर बेटेल से मुलाकात की। दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत के मामले में दिल्ली नगर निगम के कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मलबे से 12 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई और 6 की हालत स्थिर है। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार ए मशरीक और उसके निदेशक और तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची की 7 इमारतों में छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत सीआरपीएफ की 199वीं वाहिनी ने नक्सलियों द्वारा जंगल में छिपाकर रखे गए 14 नक्सली डंप बरामद किए गए। इसरो ने उन खबरों और अटकलों का खंडन किया है जिनमें इसके निजीकरण या भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही थी। इसरो ने स्पष्ट किया कि न तो उसका निजीकरण किया जाएगा और न ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय महोत्सव में 40 देशों की 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। दिग्गज सिनेमेटोग्राफर टी एन कृष्णन कुट्टी का 96वीं वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय, अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। उधर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की शाही सवारी का आज आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। ये थे अब तक के आकाशवाणी मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी, लेकर आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आशियाना। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हर आशियाने में आज थोड़ी सी हलचल है क्योंकि अब ये मौसम आ गया है एग्ज़ाम्स का। जी हाँ, एग्ज़ाम से पहले जो तैयारी शुरू होने लगती है, लोग मुस्तैद हो जाते हैं, बच्चे भी बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम जो सर पर हैं। लेकिन क्या हो अगर इस मौसम में आपके घर पर हो जाए किसी की दस्तक। मैं बात कर रही हूँ मेहमानों की, कि आप तो व्यस्त हैं, बच्चे भी टाइम टेबल बना रहे हैं और तभी घर में मेहमानों की दस्तक हो जाए तो क्या अब भी घर में वो उत्साह बरकरार रहेगा या मन में आ जाएगी थोड़ी सी चिंता, बच्चे भी सोचेंगे कि अब मेरी पढ़ाई का क्या होगा। तो ऐसे में कैसे बनाया जाए बैलेंस और कैसे किया जाए सिचुएशन को मैनेज, करेंगे इस पर बात आज के आशियाना में।

0: दोस्तों, मेहमान जब घर में आते हैं ना तो कई बार रात भर बातों का सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन वहीं जब बात होती है एग्ज़ाम्स की तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में किताबों का डर ऐसा रहता है कि बच्चे देर रात तक अपनी किताबों में घुसे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, जिससे कि परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएँ। तो यानी कि जो मेहमान है ना, वो हमारे घर की खुशियां तो हैं ही, क्योंकि मेहमानों में हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो रिश्ते होते हैं जो कभी समय की वजह से दूर हो जाते हैं, लेकिन हम उनको संजोने की कोशिश करते हैं। लेकिन परीक्षा जो है ना, वो भी बच्चों के भविष्य का एक बहुत ही ज़रूरी पड़ाव है। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे बनाया जाए संतुलन मेहमान और बच्चों की परीक्षाओं के बीच में। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है प्लानिंग, और कैसे करनी होगी ये प्लानिंग, करेंगे इस पर बात, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है, ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

कर रहे थे प्लानिंग की, यानी कि अगर घर में आने वाले हैं मेहमान और बच्चों के एग्जाम्स है सर पे, तो कैसे बनाएं बैलेंस। और इसके लिए आपको बनानी होगी प्लानिंग, यानी अगर आपको पता है पहले से ही घर में आने वाले हैं मेहमान, तो आप अपने बच्चों का कुछ सिलेबस पहले ही कवर करवा सकते हैं। और अगर पहले ही सिलेबस करवाने के बाद भी बहुत कुछ बाकी रह जाएगा, तो आप उसकी पढ़ाई का समय पहले से ही तय कर लें। मेहमानों को भी बता दें कि बच्चों की परीक्षा चल रही है, इसलिए उसके पढ़ने के समय घर के माहौल को थोड़ा सा शांत रखा जाए। पढ़ाई के लिए आप घर का कोई शांत कोना तय कर सकते हैं। और हाँ, अपने बच्चों को ये एहसास बिल्कुल ना होने दें कि उसकी वजह से मेहमानों को खुशी थोड़ी कम हो रही है। उसे बस अपनी प्रायोरिटीज समझनी होंगी। और हाँ, बच्चे का मन थोड़ा सा तड़पेगा, वो भी चाहेगा साथ में बैठे, बातें करे, साथ में खाना खाए, तो थोड़ा बहुत उसको ब्रेक भी दें, जिससे कि वो सबके साथ इन्वॉल्व भी हो। लेकिन हाँ, साथ ही साथ टाइम टेबल का, सिलेबस का, इन सब का ख्याल रखें। और ये बैलेंस आपको ही बनाना होगा, और पेरेंट्स में से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा, थोड़ा सा बैलेंस बनाना होगा और मैनेज करना होगा सिचुएशन को।

0: हम अपनी बच्ची से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इतनी परवाह करने लगते हैं कि बच्ची की परीक्षा का तनाव हमें कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और ऐसे में हम पूछते हैं बहुत से सवाल, जैसे कि कितना पढ़ लिया, कितने नंबर आएंगे, सिलेबस पूरा हुआ क्या। और ऐसे सवालों से हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का स्ट्रेस ही बढ़ाते हैं। इसीलिए आपको बस अपने इन सवालों पर लगाम लगानी होगी, बल्कि कहना होगा अपने बच्चे से कि तुम अपना बेस्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप चाहें तो बच्चे से उन समस्याओं के बारे में भी पूछ सकते हैं जो उसे अपनी पढ़ाई के दौरान फेस करनी पड़ रही है, कोई टॉपिक जो उसको समझ में नहीं आ रहा है, और आप उसको समझाने में उसकी मदद कर सकते हैं, उसको समझने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। और हाँ, अगर घर में आए हुए मेहमान भी उससे इस तरीके के सवाल कर रहे हैं, तो आपको सिचुएशन को थोड़ा सा संभालना होगा और अपने बच्चे की हौसले को अपने बच्चे के हौसले को बढ़ाना होगा। एक शांत, सहयोगी और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव घर बच्चे के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है और उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह कर सकता है, जो उसको एग्जाम्स की तैयारी के लिए और ज़्यादा मजबूत बना सकती है। जुड़े रहिए, हम बात कर रहे हैं परिवार में एग्जाम्स के दौरान अगर दे दिए आपके घर में मेहमान दस्तक, तो कैसे बनाएं बैलेंस। इस टॉपिक पर हो रही है बात आज के आशियाना में।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities

0: become progress.
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम आशियाना, और आज आशियाना में बात हो रही है कि अगर घर में आ जाए मेहमान तो कैसे करें सिचुएशन को बैलेंस, खासतौर से जब हो बच्चे की एग्जाम्स। तो दोस्तों अगर परीक्षा का शेड्यूल अनुमति देता है तो बच्चों को भी आप थोड़ा सा परमिशन दें कि वो मेहमानों के साथ मिल सके, बातचीत कर सके, जिससे कि परीक्षा का जो तनाव है वो थोड़ा सा कम हो। हालांकि इस बातचीत की और इस ब्रेक की समय सीमा तय होनी चाहिए। और हाँ, अगर मेहमान आए हैं और बच्चों के एग्जाम्स हैं तो कहीं मुंह मत बना लीजिएगा, उनका स्वागत पूरे मन से करिए, क्योंकि बच्चे की अगर परीक्षा है ना तो वो भी इस बात को समझेंगे और आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूँ एक गाने के साथ, उसके बाद आपके लिए लेकर आएंगे एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, आप इंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

0: शबदंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। सफलता की राह में मुश्किलें तो आएंगी, पर जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही एक दिन अपनी मेहनत से परिस्थितियां बदल देता है। श्रोताओ, इसे हमें भेजा था सुंदरनगर हिसार हरियाणा से मोनिका खरलवा, पंकज, शिवम, नैन्सी, सुरेश खरलवा जी ने। आप सभी को उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, देश हमारा, शान हमारी, तिरंगा है हमारी पहचान। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने। उन्होंने लिखा है, नमस्कार, जब भी अगस्त का महीना आता है हमारा मन आजाद हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अनायासी नतमस्तक हो जाने को लालायित हो जाता है। आपने 10 अगस्त से 14 अगस्त वाले सप्ताह में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्तांत उमंग कार्यक्रम में शामिल करके मन को उत्साहित और जोश से भर दिया। समयानुकूल कार्यक्रम पेश करना उमंग की पुरानी परंपरा है, हम इसके कायल हैं। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो आइए जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? इसका उत्तर है साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न था, शहीद बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। शहीद बालक बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है। इसका उत्तर आप सबने अलग अलग ढंग से दिया था, लेकिन मूल उत्तर है, जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपनी उपयोग की हुई पुरानी वस्तुओं के प्रति भी सम्मान और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न था, जापान के क्यू शिराता की रेलवे स्टेशन को कब बंद कर दिया, जहां से काना हराड़ा नाम की स्कूली बच्ची ट्रेन लेती थी? इसका उत्तर है साथियों, जापान की स्कूली छात्रा काना हराड़ा रोज क्यू शिराता के स्टेशन से स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी। ये स्टेशन मार्च सन 1918 को तब बंद कर दिया गया जब उस बालिका के स्कूल का अध्ययन पूरा हो गया। और हमारा अंतिम प्रश्न था, सेब की खेती करने

0: वाले श्री सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस राज्य के निवासी थे? सत्यानंद स्टोक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर के निवासी थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, और प्रस्तुत है उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
1: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के विशेष संस्करण श्रोता संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति माह हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रोता संवाद, जिसमें हम करते हैं चर्चा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एनसीईआरटी की संयुक्त पहलों के बारे में। हमें पता है कि आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो चलिए अब आपकी उत्सुकता शांत कर देते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा शिक्षा में जेंडर समावेशन। तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता तंवर। तो आपके बारे बता दूं कि आप एनसीईआरटी के जेंडर अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं चर्चा की शुरुआत इस प्रश्न के साथ कि जेंडर समावेशन से आपका क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में पूछूंगा, जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
2: जी, इससे पहले कि हम जेंडर का अर्थ समझें, हमें लिंग और जेंडर के बीच का मूलभूत अंतर को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जहां लिंग जैविक विभिन्नताओं से संबंधित है, वहीं जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर जैसे कि पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व से जुड़ी विशेषताएं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। जैसे किसी विशेष समाज में लड़कों लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण, भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा व्यवहार को आकार देता है। जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज में सभी जो लिंग हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष या फिर और भी जेंडर आइडेंटिटीज हैं,
1: बालक बालिका हो सकते हैं।
2: हाँ जी, बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करती है।
1: तो आज का जो हमारा विषय था वो था जेंडर समावेशन, वो भी शिक्षा में। इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगी?
2: जी, पहले तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
1: जी।
2: और उसके बाद फिर हम आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर समावेशन का अर्थ है, जितने भी हमारे समाज में स्त्री पुरुष या फिर अलग तरह की जेंडर आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर
1: जी,
2: उन सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए तथा सम्मान मिलना चाहिए
1: जी।
2: और उनको जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, उन सभी में उनका पार्टिसिपेशन हर तरह से बराबर हो,
1: यानी उनकी भागीदारी या उनकी प्रतिभागिता बनी रहे।
2: हाँ,
1: आप ये कहना चाहते
2: जी,
1: हैं
2: जरूर।
1: जी, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा बहुत संतुष्ट होंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी की क्या भूमिका है?
2: जी अजीत जी, ये प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है आज के स्थिति में। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि 6 साल पहले आई थी, आज अपना 6ठा वर्ष पूरा कर चुकी है
1: जी।
2: और इसी के चलते एनसीईआरटी भी इसके सालगिरह को मना रहा है
1: जी,
2: जैसा कि हम देख सकते हैं। और जेंडर इक्वालिटी और समावेशन के जो शिक्षा के मूल आधार हैं
1: जी,
2: उनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभों में रखा गया है
1: जी,
2: ताकि हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, वो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी हमारे जो बालिकाएं हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, उन सब में बिना भेदभाव के सुरक्षित तरीके से तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके।
1: तो डॉक्टर श्वेता, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, इसके विषय में कुछ और आप कहना चाहेंगी? यानी मेरा कहना है कि क्या इस पर कुछ और विस्तार आप देना चाहेंगी?
2: जी अजीत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, बट उससे पहले जरूरी ये है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी
1: जी।
2: तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो नीति है 2020 में आई, इन्होंने एक टर्म दिया सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जिसको भी हम ये भी कह सकते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो
1: या तो वंचित वर्ग

0: भी कह
1: वंचित
0: सकते हैं,
1: लोग जो हैं।
0: जी,
1: तो इसमें उन्होंने जेंडर आइडेंटिटीज को रखा, जैसे कि महिलाएं और ट्रांसजेंडर। दूसरा उन्होंने रखा सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी और हमारे माइनॉरिटीज भी आते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन भी हो सकते हैं। कुछ जो हमारे वर्ग ऐसे भी हैं जो भारत के दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो उन तक भी संसाधनों की हमेशा जो है पहुंच नहीं हो सकी है पूरी तरह से। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन सभी को इंक्लूड करती है अपने उसमें,
0: उन सबको शामिल करती,
1: है।
0: जी,
1: तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को इन वर्गों में देखा जा सकता है। हमारी जो लड़कियां हैं वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के सेक्शन से भी आती हैं, कहीं ना कहीं वो जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं उनमें भी दूर से आती हैं, या

0: और किस तरह से इन कंसर्न्स को, इन गैप्स को हम भर सके, इन पर काम कर सके, उसके बारे में कुछ प्रावधान और रणनीतियां दी गई हैं।
1: तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, अब हम ये जानना चाहेंगे विशेष करके श्रोताओं की ओर से मेरा प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान क्या क्या है।
0: जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रावधान जो है वो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, जिसे कि हम ये कह सकते हैं
1: सुरक्षित
0: बुनियादी जो ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबको मिले।
1: तो आपने बात की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी बुनियादी ढांचे की, तो बुनियादी ढांचे से क्या तात्पर्य है आपका?
0: जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्कूल परिसर या फिर कॉलेजों के परिसर में कई बार क्या होता है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया है,
1: महिलाओं का या बच्चियों का भी कह सकते हैं,
0: बच्चियों का, लड़कियों का।
1: हाँ।
0: और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षित छात्रावास, हॉस्टल फैसिलिटीज जिसको हम देखते हैं, कई बार ऐसी लड़कियां जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आती हैं,
1: जी,
0: उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने घर के आसपास इसको पढ़ें या फिर अपने घर में या स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जा सके।
1: आवास की सुविधाएं नहीं होती,
0: आवास की सुविधाएं जो है वो नहीं होती हैं। तो इसी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन्होंने छात्रावास की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है,
1: यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये बच्चे जब पढ़ने आए तो उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध
0: हों,
1: आप ये कहना चाहती हैं?
0: जी। तो छात्रावास के अलावा अगर हम देखें तो स्वच्छता की सुविधाएं, जैसे कि बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन की हम बात करते हैं, एक साफ सुथरा माहौल की हम बात करते हैं, तो उसका निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया जा रहा है कि जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम KGBVs भी कहते हैं, तो उसमें उन लड़कियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता दी जाती है जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं, ताकि वो 12वीं तक अपनी शिक्षा को पूरा कर सके और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सके। और नीति में ये भी कहा गया है कि जितने भी हमारे KGBVs हैं उनको पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा
1: जी।
0: और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी छात्रवृत्तियां भी हैं जिसे में स्कॉलरशिप हो गई, सो दैट हर लड़की को, हर ट्रांसजेंडर जो हमारा बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त साइकिल, स्कूटी या फिर वित्तीय प्रोत्साहन भी देने का प्रावधान है
1: जी।
0: और इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि भेदभाव रहित पाठ्यक्रम, ये एक ऐसी बातें जो है इसमें की गई है कि पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षा पद्धति उसमें सभी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायस को हटाना चाहिए। तो जो नीति है वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा पद्धतियों में भेदभाव रहित पाठ्यक्रम की बात करती है।
1: डॉक्टर श्वेता, हमने पाठ्यक्रम की बात तो सुनी, भेदभाव रहित पाठ्यक्रम ये क्या होता है, इसके बारे हम जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है, क्योंकि देखा जाए तो पाठ्यक्रम हम सभी ने सुना है
1: जी,
0: लेकिन आज के जो हमारी स्थिति है हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
1: जी।
0: और खाली जेंडर समानता ही नहीं, हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले सभी उन लोगों की, जैसे कि हमारे ट्राइबल, जैसे कि हमारे SC/ST,
1: आदिवासी लोग,
0: जनजातीय लोग, है ना, तो इन सभी का जो है समान रूप से रिप्रेजेंटेशन हो, हमारी टेक्स्ट बुक में इनके जीवन को शामिल किया जा सके, इनकी जो स्थिति है उसको दर्शाया जा सके।
1: तो जो मुझे समझ में आया वो कुछ ऐसा आया कि जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसका सिर्फ स्त्री और पुरुष या बच्चे और बच्चियां नहीं होता है
0: जी,
1: इसका शायद ये है।
0: नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जेंडर का असली मतलब क्या है, जो हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपने देखा होगा हम स्त्री की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, बट अभी ये एक पहला कदम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिया है वो ये है कि उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी के कैटेगरी में ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है
1: जी।
0: स्त्री और पुरुष ट्रांसजेंडर्स भी उनके साथ साथ समाज का हिस्सा बन सके
1: जी।
0: जिस तरह से पहले हमारे पाठ्यक्रम में या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में स्त्री का काम अलग होता था, पुरुषों का काम अलग होता था, और किताबों में या पाठ्यक्रम में उनको उसी तरह से दर्शाया जाता था, तो इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन स्टीरियोटाइप्स को, उन बायसेस को तोड़ने की कोशिश करती है।
1: हाँ, कुछ उदाहरण जैसे कि समाज में मिलते हैं कि जैसे अगर लड़का है तो क्योंकि वो

0: शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है,
1: जी
0: तो ये माना जाता था कि लड़की का काम है नहीं ज्यादा,
1: जी,
0: तो उसको आहार की जो सुविधा है ज्यादा मिले, इसको कम मिले, इस तरह की बातें होती थी पहले।
1: तो एक स्कूली जो उदाहरण है वो मैं आपको देना चाहूंगी। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनको रंगोली बनाने के लिए बहुत बार प्रोत्साहित किया जाता है, या फिर वो उसी में भागीदारी उनकी होती है।
0: जी।
1: लेकिन लड़कों की भागीदारी देखी जाए तो कोई भी भारी सामान या भारी वस्तु उठानी होती है,
0: हाँ।
1: तो ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो लड़कों को ही उस चीज में बुलाते हैं।
0: जी।
1: तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आपको लड़कों और लड़कियों में एक भेदभाव नजर आता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपने पाठ्यक्रम के द्वारा, अपनी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा इन स्टीरियोटाइप्स को हटाकर समानता की भावना को विकसित करने की दिशा देती है।
0: ये आपने बड़ी उपयोगी बात बताई और इसके द्वारा मुझे लगता है हमारे श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे।
1: जी।
0: तो अब आते हैं एनसीईआरटी पर। हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि एनसीईआरटी के जेंडर विभाग का, जिस विभाग से आप हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये विद्यालयी शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने में किस प्रकार से योगदान दे रहा है आपका विभाग?
1: जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर अध्ययन विभाग जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो नाम था वो था विमेन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन स्टडीज।
0: जी।
1: बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज रखा गया।
0: जी।
1: इसके पीछे ये कारण रहा कि विमेन स्टडीज जो है उनको हम खाली विमेन तक सीमित ना रखें।
0: जी।
1: जो जेंडर का अर्थ था
0: बिल्कुल,
1: वो सिर्फ विमेन तक सीमित रहता था, महिलाओं तक सीमित था, लेकिन उसके बाद इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना,
0: जबकि जेंडर से अर्थ आपका दोनों का होता
1: जेंडर
0: है।
1: जेंडर से अर्थ, बिल्कुल सही कहा आपने, जेंडर से अर्थ हमारा सभी, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे लड़के हैं और हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उन सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और सभी को समानता से आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग है वो स्कूली शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता और संवेदनशीलता लाने के लिए एक समर्पित विभाग है। और पहले इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक महिला अध्ययन विभाग कहा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके दायरे को और बढ़ाया गया है। इसमें बालिकाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों और जितने भी हमारे जो सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर समूह हैं, उनको भी शामिल किया गया है।
0: तो इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोगों की गतिविधियां क्या हैं?
1: जी, सबसे पहला हमारा है कि हम नीतिगत क्रियान्वयन की हम बात करते हैं, कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें की दो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, पहला है फाउंडेशनल स्टेज के लिए और दूसरा है स्कूल एजुकेशन के लिए। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें जेंडर समानता की जो लक्ष्य हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना,
0: जी,
1: ये सबसे पहला हमारा जो मुख्य भूमिका है वो ये है। दूसरा है जितनी भी रूढ़िवादिता है उनका हम जो है उन्मूलन कर सकें।
0: रूढ़िवादिता जैसे कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे?
1: जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी, हमारे समाज में बहुत सारे इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग तरह से देखते हैं, महिलाओं का रोल अलग दिखाते हैं और पुरुषों का रोल अलग दिखाते हैं।
0: जी।
1: तो उसी तरह की जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको स्कूली शिक्षा के माहौल में, पाठ्यक्रम में तथा जो शिक्षण पद्धति है उनमें इन तरह की जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त करना।
0: जी।
1: उसके अलावा जो हमारा हमारा जो विभाग है वो ये भी काम करता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े ग्रामीण इलाकों से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां या जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकारों की हम बात करते हैं।
0: तो ये जानकारी आपने बड़े विस्तार से हमें दी, अब हम ये जानना चाहते हैं ये कार्य आप किस प्रकार से करते हैं?
1: जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के काम करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। सबसे पहला जो है हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, उनका विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से जो है सभी नई या पुरानी किताबें, उनकी समीक्षा हम करते हैं ताकि उनमें से किसी भी प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर बायसेस को या फिर भेदभाव को हटाया जा सके और एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व को हम उसमें शामिल कर सकें, जैसे कि किताबों के चित्र हो या फिर कहानियां हो जिसमें महिलाएं व ट्रांसजेंडर जो है हमारे उनको वैज्ञानिकों के रूप में, नेताओं के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में और विभिन्न पेशेवर भूमिकाओं में दिखाना सुनिश्चित हो सके।
0: हाँ, पायलट्स के रूप में इत्यादि,
1: हाँ,
0: है ना?
1: जी, जी
0: जी।
1: तो आज हमारे श्रोता भी जान

0: जानते होंगे इस चीज को, जिस तरह से चंद्रयान में हमारी बहुत सारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज में लीड ली,
1: उनकी प्रतिभागिता बहुत बड़ी
0: उनकी
1: रही,
0: बहुत ज्यादा
1: सारे राष्ट्र
0: प्रतिभागिता
1: में इसकी
0: रही।
1: चर्चा है।
0: हाँ,
1: जी
0: तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और पूरे राष्ट्र में महिलाओं की एक अलग भूमिका को,
1: एक अलग छवि बनी,
0: अलग
1: बल्कि
0: छवि जो है
1: जी
0: उनकी
1: जी
0: बनी। तो इसी तरह से एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की भी हम बात करते हैं, जिसको कि भाषा के रूप में अगर हम शिक्षण सामग्री में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन एक ऐसा शब्द है जहां पर एक एक ऐसी इमेज बनती है कि एक चेयरमैन एक पुरुष है,
1: हाँ, ऐसा लगता है कि वो एक पुरुष है।
0: एक
1: जी हाँ।
0: पुरुष है, तो उसकी बजाय हम बात कर सकते हैं चेयरपर्सन,
1: चेयरपर्सन
0: विच
1: भी,
0: इज अ
1: जी हाँ।
0: न्यूट्रल वर्ड। तो उसके लिए हम इस तरह की और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम जेंडर न्यूट्रल उसमें देखते हैं।
1: ऐसे और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, हम जानना चाहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है।
0: जी,
1: जी
0: बहुत जरूरी है ये देखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पुलिसमैन या पोस्टमैन, ज्यादातर हमने अपनी डेली लाइफ में,
1: जी
0: अपने जो रोज की जिंदगी में इसी तरह के शब्द सुने हैं। तो पुलिसमैन की जगह पुलिस पर्सन हो सकता
1: जी
0: है, ऐसे ही पोस्टमैन की जगह पोस्ट पर्सन भी हो
1: हो
0: सकता
1: सकता है, बिल्कुल हो
0: है
1: सकता
0: ना।
1: है। जी
0: तो अब जैसे कि एक्टर है, एक्टर वर्ड अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है,
1: न्यूट्रल वर्ड
0: बट
1: है। जी
0: एक्ट्रेस जो है दैट शोज दैट इट्स अ फीमेल। तो इसी तरह से पुरुषों के लिए एक अलग शब्द भी होता है या फिर महिलाओं के लिए एक अलग शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ पुरुष को दिखाया जाता है इन शब्दों में।
1: तो अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर श्वेता, कि शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ऐसी कौन सी व्यवहारिक सलाह आप देना चाहते हैं, या प्रैक्टिकल एडवाइस आप कौन सी देना चाहते हैं, जिससे विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाया जा सके।
0: जी, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हम सारा जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक शिक्षक को ना देते हुए, इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे छात्र जो हैं खुद, वो तीनों ही चीजें मिलकर जो है प्रयास करने चाहिए, जिसमें कि हमारे शिक्षक, अभिभावक और छात्र, इसके लिए हमें पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसको छोड़कर आपसी सम्मान की संस्कृति को सबसे पहले अपनाना होगा। तो उनके लिए कुछ व्यवहारिक और सुझाव जो है वो मैं देना चाहूंगी
1: जी
0: इसके भीतर। सबसे पहले अगर हमने देखा होगा कि हमारी जो क्लासरूम की सेटिंग्स हैं, जो हमारा बैठने का जो व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है। आज भी जब हम कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, जबकि इस चीज को तोड़ते हुए हमें कक्षा में लड़कों और लड़कियों को एक साथ बिठाना चाहिए
1: जी
0: और एक मिश्रित रूप में, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सके और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एक साथ भाग ले
1: और
0: सके,
1: दोनों के बीच में एक समानता का भाव हो कि हम एक साथ
0: समानता।
1: बैठ सकते हैं।
0: जी,
1: जी
0: और इसी तरह जैसे हमने अभी बहुत सारे उदाहरण की बात की थी, तो जो हमारा कामों का बंटवारा है, जिस तरह के काम हम रूढ़िवादी तरीके से बंटवारा करते हैं, ऐसा ना करें कि भारी सामान उठाने के लिए या फिर खेल के लिए हम लड़कों को प्रोत्साहन करें
1: और खाना
0: और
1: बनाने के लिए
0: खाना
1: महिला।
0: बनाने के लिए लड़कियों को करें,
1: जी
0: या सजावट का काम करने के लिए हम लड़कियों को आगे बढ़ाएं। तो सभी जिम्मेदारियों को बारी बारी से बदला जाए।
1: जी
0: और इसके अलावा जो हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें
1: जी
0: और उन सभी को प्रोत्साहित करें कि लड़के या लड़कियों जो है उनको हम एक न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल भाषा।
1: जेंडर न्यूट्रल भाषा, यानी कि जो तटस्थ भाषा है।
0: जी हाँ,
1: जी हाँ।
0: तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कई बार हमने जो अपने कक्षा में देखा है, कुछ शिक्षक ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं बच्चों या बच्चे। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये प्रोजेक्ट होता है कि लड़कियों को उस चीज में शामिल नहीं किया गया है। तो इसके बजाय हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि विद्यार्थी या क्लास या फिर आप सभी लोग, इस तरह के सामूहिक शब्दों का प्रयोग करें, ना कि सिर्फ लड़के या लड़कियां।
1: हाँ, क्योंकि यदि बच्चों कहा जाए तो लगता है कि लड़कों को बोला जा रहा है।
0: जी हाँ, तो इसी तरह से हम विद्यार्थियों कह सकते
1: हाँ,
0: हैं जो
1: विद्यार्थियों
0: कि
1: कह
0: एक
1: सकते हैं,
0: न्यूट्रल शब्द भी है,
1: शिक्षार्थियों कह सकते हैं।
0: शिक्षार्थियों भी कह
1: जी
0: सकते
1: हाँ,
0: हैं।
1: जी हाँ।
0: जी, कई बार क्या होता है ऐसे अनकॉन्शियस बायस होते हैं जिसको भी अनजाने में हम अपने बिहेवियर में ले आते हैं,
1: जी
0: तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। जहां लड़कियों की तारीफ सिर्फ शांत और साफ सुथरी होने के लिए करी जाती है, वहीं पर लड़कों की तारीफ बहादुर और बुद्धिमान होने के लिए की जाती है,
1: जी
0: तो बुद्धिमत्ता और मेहनत की तारीफ बिना जेंडर देखे की की जानी चाहिए
1: जी।
0: और इसी के अलावा सकारात्मक जो भी रोल मॉडल्स हैं हमारे,

0: उनके उदाहरण हमें देने चाहिए, जैसे कि महिला वैज्ञानिक या फिर पुरुष नर्स। कई बार आपने देखा होगा कि नर्स का जो जैसे ही हम सुनते हैं इस प्रोफेशन के बारे में, हाँ, वो जो छवि है उसमें हमें, हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं, या एयर होस्टेस की जो छवि है उसमें भी हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को हम जो है चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: हाँ, एयर होस्ट शब्द बहुत कम सुनाई पड़ता है।
0: जी, एयर होस्ट आपको नहीं सुनाई देता। उसके अलावा एक दूसरा शब्द होता है स्टीवर्ड, शायद मुझे नहीं पता कि वो ठीक है,
1: दोनों यूज होते हैं।
0: हाँ, तो हम उसकी जगह एक ऐसे रोल मॉडल्स को, सकारात्मक जो उदाहरण दे सकें लड़कियों को, महिलाओं को, उस तरह के उदाहरण को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे सभी बच्चे हर क्षेत्र में अपने उस अस्तित्व को स्वीकार कर सके।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि यदि कोई शिक्षक या विद्यालय जेंडर संवेदनशील शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण या मार्गदर्शन आपके विभाग से प्राप्त करना चाहे, तो आप उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे?
0: जी, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स हैं, जिसमें कि प्रकाशन और समर्पित विभागों के माध्यम से भी इसे पूरी तरह से मुफ्त व ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि सबसे पहला, आपने अगर सुना होगा तो दीक्षा पोर्टल भी है और उसका एक मोबाइल ऐप भी है, वो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। दूसरा हमारा ई पाठशाला पोर्टल है, उस पर भी जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, सभी तरह की जो सामग्री है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग, उसकी वेबसाइट पर भी हर तरह की जो सामग्री है और हर तरह की जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी।
0: इसके अलावा जो है हमारा एनसीईआरटी का एक पब्लिकेशन डिवीजन, जहां पर किताबों की बिक्री भी होती है, तो यहां पर भी आप पोर्टल पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो सीधे आपके स्कूल या घर पर डिलीवर हो जाएगी।
1: जी।
0: मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी अजीत जी, एक बहुत जरूरी जो कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लिया वो ये कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, इसको प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है, जिसको हम जेंडर इंक्लूजन फंड भी बोलते हैं। इस नीति में विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को शामिल करने का प्रावधान है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता जी।
0: धन्यवाद अजीत जी।
1: हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोताओं को आज की बातचीत से, हमारी चर्चा से सच में बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो श्रोताओं, हमारी आशा है कि आज की बातचीत आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रही, और यदि आपको अच्छी लगी तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिए। एक बार फिर से आप सबको हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें आज के कार्यक्रमों के लिए आपसे प्रतिक्रिया की आशा रहेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है 8800-440-559, और साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जो आप सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से अपने फेवरेट चैनल FM रेनबो पर, जहां सेहत से जुड़ी हर उलझन का मिलता है सटीक समाधान। आज इस कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त काजल। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। और आज के हमारे इस खास फोन इन प्रोग्राम का विषय है बोन्स एंड न्यूट्रिशन, यानी हड्डियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है। आज के इस खास विषय पर हमारे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राहुल खरे, जो नई दिल्ली के RML अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स विभाग में प्रोफेसर, कंसल्टेंट और हेड हैं। डॉक्टर राहुल, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें आपसे आज जानेंगे हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अगर आपके मन में भी है इस विषय को लेकर कोई सवाल और आप चाहते हैं सही सलाह, तो बस फोन उठाइए और हमसे सीधे बात कीजिए। हमारा फोन नंबर है 011-234-2102, माफ कीजिएगा 011-234-2108। और हमारा दूसरा नंबर है 011-234-2102। और हाँ, आप व्हाट्सएप के जरिए भी रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं इस नंबर पर, जो है 9868107070। तो चलिए शुरू करते हैं सेहत का सफ़र कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के साथ, जिसमें आज का विषय है बोन्स एंड न्यूट्रिशन, यानी हड्डियों के बेहतर पोषण के लिए क्या करें। हड्डियां हमारे शरीर का ढांचा बनाती हैं, जिससे हम सीधे खड़े हो पाते हैं। तो जब हड्डी शरीर में इतनी महत्वपूर्ण है, तो इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। तो डॉक्टर, आपसे सबसे पहले ये जानेंगे कि हड्डियों की मजबूती के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन रूल्स क्या हैं।
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और ये बहुत ही ज़रूरी है हम सबको जानना, क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं हड्डियाँ हमारे शरीर के लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है उनका न्यूट्रिशन, अगर हड्डियों को न्यूट्रिशन ही नहीं पहुँचेगा, हड्डियों तक ताकत ही नहीं पहुँचेगी, तो हड्डियाँ मजबूत नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम आगे और ज़्यादा विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं, और अगर कोई भी अगर आपको तकलीफ होती है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है।
0: डॉक्टर साहब, अभी तुरंत एक मैसेज भी आ गया है, जिसमें एक श्रोता है हमारे जो पूछ रहे हैं कि हेलो डॉक्टर राहुल, आई वांट टू फाइंड आउट हाउ शुड आई टेक केयर ऑफ माय बोन्स सिंस आई एम मेनोपॉजल एंड आई एम ए थायराइड पेशेंट एज वेल।
1: जी हाँ, इन्होंने लिखा है इन महिला ने कि मेनोपॉजल हैं और थायराइड की भी बीमारी है।
0: जी।
1: तो जब हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होती हैं तो उसके 2 मुख्य कारण होते हैं। एक तो महिलाओं में मेनोपॉज के टाइम पे, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, और एक बुढ़ापे में जाके जब हड्डियाँ महिलाओं की और पुरुषों की दोनों की कमज़ोर हो जाती हैं। तो इनको, क्योंकि मेनोपॉज अगर हो गया है और थायराइड की भी प्रॉब्लम है, तो मेनोपॉज में, जब मेनोपॉज होता है महिलाओं में, तो जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी होने के कारण की वजह से हड्डियों में से कैल्शियम निकलने लग जाता है, और जब हड्डियों में से कैल्शियम निकलने लग जाता है तो धीरे धीरे करके हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, और इसी को पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। थायराइड की अगर पेशेंट हैं तो उसमें भी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, तो उससे भी हड्डियों पे और जोड़ों पे प्रभाव पड़ता है। अगर वज़न बढ़ जाएगा तो जोड़ों पे प्रभाव पड़ेगा, आगे जाके जोड़ जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बोन्स का ध्यान रखें, अगर मेनोपॉज हो गया है, थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलें और अपना चेकअप कराएं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी, अगर नहीं है तो भी एक बार ज़रूर जाके क्या खाना पीना है और क्या टेस्ट अभी वो करवा सकती हैं इस उम्र में, ताकि आगे जाके उनको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो।
0: डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, आप कौन हैं बताइए, अपना नाम बताएं।
2: जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अमित त्यागी, मैं ग्राम नांगोला से बात कर रहा हूं।
0: जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है?
2: जी जी जी सर, मेरा सवाल ये है कि हमें अपनी हड्डियों

0: मजबूत रखने के लिए अपने खान पान में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए?
1: अमित जी, आपकी उम्र कितनी है?
0: सर मेरी उम्र 36 साल है।
1: 36 साल की उम्र है, ठीक है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय आपके लिए है कि आप खान पान, आपने पूछा है हड्डियों के लिए, तो आपको कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे हड्डियों के लिए। और कैल्शियम, अगर आप, सभी को पता है कि मिल्क, अनमिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, केले, अंडे, इन सब चीज़ों से आपको कैल्शियम खूब अच्छी मात्रा में मिल जाता है। विटामिन डी आपको थोड़ा कम मिलता है, सी फूड वगैरह में मिलता है, अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन है तो मिल सकता है, नहीं तो प्राकृतिक रूप में सनलाइट एक्सपोजर से हमें विटामिन डी हमारा शरीर खुद ही बना लेता है, हमारी स्किन बना लेती है, तो वो वहाँ से मिल जाता है। और प्रोटीन्स के लिए आपको अपने खाने में, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आसान है, अगर वेजिटेरियन है तो भी आप खूब सारी दालें, सोयाबीन, इन सब चीज़ों की, मिलेट्स, इन सब चीज़ों की अगर खाने में प्रयोग करेंगे तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी।
2: सर एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है पारुल का, जो गुड़गांव से हैं और पूछ रही हैं कि आई वॉन्ट टू नो व्हाट डाइट एंड व्हाट प्रिकॉशंस शुड वुमेन इन देयर 50s शुड टेक।
1: ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि महिलाएं 50 साल की उम्र में होती हैं तो मेनोपॉज या तो शुरू हो गया होता है या चल रहा होता है, तो इस उम्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे पहले भी मैंने बताया, कि इनको अपना प्राइमरीली एक विटामिन डी का टेस्ट करा लेना चाहिए, एक बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन कराना चाहिए, और इनको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए खूब, अपार्ट फ्रॉम कैल्शियम रिच डाइट, विटामिन डी का एक्सपोजर अगर कम है तो सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, और प्रोटीन बढ़ाना चाहिए, और थोड़ा सा स्ट्रेनवस एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ी सी वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सिर्फ टहलना, वॉकिंग इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर आपको अपनी हड्डियाँ मजबूत करनी है तो आपको अपनी मसल्स भी मजबूत करनी पड़ेंगी, और उस वो सिर्फ आपको थोड़ा मसल्स को स्ट्रेस देकर ही हो पाता है। तो वेट बेरिंग, थोड़ा हल्के फुल्के वेट से शुरुआत कर सकते हैं, और वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करने से मसल स्ट्रांग हो जाएंगी, तो इन टर्न हड्डियाँ भी स्ट्रांग हो जाएंगी।
2: ओ डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बात बताई, और क्यों ना एक गाना सुन लें?
1: जी हाँ, बिल्कुल।

0: डॉक्टर साहब, गाना आपको कैसा लगा?
1: बहुत ही बढ़िया गाना था।
0: तो आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जिसमें आज का विषय है बोन्स एंड न्यूट्रिशन, और आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर राहुल खरे। डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया है, ये आयुष हैं अशोक नगर दिल्ली से पूछ रहे हैं कि विटामिन डी इंडिया के लोगों को की कितनी होनी चाहिए, और इसके वैल्यूज क्षेत्र पर डिपेंड करते हैं क्या, और बोन्स डेंसिटी का पता कैसे लगाया जाए?
1: विटामिन डी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी होती है तो वो हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है। हम चाहे जितना मर्जी कैल्शियम डेट्राइट्स रिच डाइट ले लें या हम कैल्शियम की टैबलेट्स खा लें, लेकिन अगर विटामिन डी की कमी होगी तो वो कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर नहीं घुस पाएगा। तो इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो अलग अलग लैब्स के अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। कुछ लैब्स में 30 से ज़्यादा हो तो नॉर्मल होता है, कुछ लैब्स में 75 से ज़्यादा हो तो नॉर्मल होता है। तो वो अलग अलग लैब्स पे अलग अलग तरीक़ों से जिससे वो टेस्ट करते हैं उस पे निर्भर करता है। और दूसरा प्रश्न क्या था इनका?
0: दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे थे सर कि बोन डेंसिटी का पता कैसे लगाया जाए।
1: हाँ जी हाँ, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट होता है, बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन। ये एक एक्सरे के प्रकार का टेस्ट होता है जिससे कि हड्डी कितनी मजबूत है उसका हमें अंदाज़ा हो जाता है।

0: मेरा पूछना ये है कि जैसे आपने विटामिन डी की अभी बात भी की है, तो सर्दी के मौसम में विटामिन डी कम हो जाता है, तो उसको लेने के लिए क्या करें, मेडिसिन लें या क्या करें?
1: जी आपने बिल्कुल सही बताया, बारिश के मौसम में और सर्दियों में जब धूप बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बादल रहते हैं या सर्दी रहती है, तो सनलाइट ही नहीं होगी तो हमारी स्किन कैसे बनाएगी विटामिन डी को? तो उसके लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विटामिन डी का टेस्ट करें। खून की जांच से पता चल जाता है कि विटामिन डी आपका कितना है, कम है या नॉर्मल है या ज़्यादा है। ज़्यादातर लोगों का अर्बन पॉपुलेशन में, शहरों में कम ही होता है, करीब 80-90% लोगों का कम पाया जाता है, क्योंकि हम लोग कभी धूप में जाते नहीं हैं, जाते भी हैं तो सिर्फ सर और चेहरा और गर्दन और हाथ एक्सपोज होते हैं, बाकी सब कपड़ों से ढके रहते हैं। रूरल पॉपुलेशन में लोग खेतों में काम करते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में धूप, तो वो आराम से अगर हम एक कैप्सूल भी विटामिन डी की 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की हफ्ते में एक बार लेंगे 2 महीने के लिए, तो बिल्कुल नॉर्मल लेवल्स पे विटामिन डी आ जाता है। और उसके बाद महीने में एक बार अगर हम लेते रहेंगे उसको, तो वो मेंटेन रहता है।
2: सर, एक श्रोता हमसे व्हाट्सएप से जुड़ रहे हैं जिनका नाम रविंदर पाठक और आशा पाठक है। ये नीदरलैंड से पूछ रहे हैं कि बोन में कट-कट की आवाज़ आती है, इसकी क्या वजह है? एज 65 है मेरे हस्बैंड की। ये अपने पति के लिए पूछ रही हैं क्योंकि उम्र 65
1: है। 65-65 साल की उम्र में अगर जोड़ों में से आवाज़ आ रही है, खासकर घुटनों में, तो वो आर्थराइटिस की तरफ ले जाता है हमें, कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही होगी, क्योंकि जब जोड़ का कार्टिलेज अंदर ख़राब हो जाता है, वो रफ़ हो जाता है, अनइवन सर्फेसेस हो जाते हैं, तो काफ़ी फ्रिक्शन होता है और अंदर जो स्मूथनेस होती है वो चली जाती है, तो जो मूवमेंट होते हैं उससे आवाज़ आती है, जो कि सुनाई चाहे ना दे, लेकिन अगर जोड़ के ऊपर हाथ रख के हम मूवमेंट करें तो फील ज़रूर होती है, जिसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म में क्रेपिटस बोलते हैं। तो इसका मतलब यही है कि उनको उम्र की वजह से जो आर्थराइटिस हो रही है वही हो रही है।
2: सर, एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो,
3: ओम शांति।
2: ओम शांति, अपना नाम बताएं।
3: बीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
2: जी जी, अपना सवाल पूछें।
3: हाँ, मेरा पूछना है कि ऑस्टियोमेलाइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कृपया विस्तार से बताएं। ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति। आपने पूछा ऑस्टियोमेलाइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में अंतर। दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। ऑस्टियोपोरोसिस पे तो हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे हैं, जो कि हड्डियों का कमज़ोर होना होता है, उसके कारण भी हम लोग ने उसका ट्रीटमेंट, उसका डायग्नोसिस भी अभी डिस्कस किया है। ऑस्टियोमेलाइटिस जो है, जो आपने पूछा है, वो बोन के इन्फेक्शन को बोलते हैं। अगर हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए किसी वजह से, तो उसको हम लोग ऑस्टियोमेलाइटिस बोलते हैं। और हड्डियों का जो कमज़ोर होना होता है, चाहे मेनोपॉज के बाद हो महिलाओं में या ओल्ड एज में, दोनों महिलाओं और पुरुषों में हो, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं।
2: सर, जैसे कि अभी हम धूप की बात कर रहे थे, तो हम अक्सर सुनते हैं कि बिना विटामिन डी के शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित नहीं कर पाता। कहा जाता है कि धूप से विटामिन डी लें, तो इसका सही समय और तरीका क्या होता है?
1: आजकल इंडिया में अगर धूप आ रही है, और तो सबसे जो सही समय है वो 11 बजे से 1 बजे या 11 बजे से 2 बजे का बीच का समय होता है, जिसमें कि अगर आधा घंटा भी इस ड्यूरेशन के बीच में, आधा घंटा भी कोई अगर बाहर धूप मिल जाती है स्किन को, तो वो उस दिन के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बना लेता है। ये रोज़ करना पड़ेगा, रोज़ पर डे के हिसाब से ही बनती है। शरीर हमारा ज़्यादा नहीं बना लेगा कि कल के लिए भी बना लें, परसों के लिए भी बना लें, ऐसा नहीं होता है। वो उस दिन के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी बना लेगा स्किन। तो ऐसा फिर रोज़ किसी को करना पड़ेगा कि रोज़ आधे घंटे स्किन धूप का एक्सपोजर हो, तो ही आपकी रोज़ के रोज़ विटामिन डी बनता रहेगा।
2: जी, एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
4: हेलो
2: जी, अपना नाम बताएं।
4: जी, मेरा नाम ओम कुमार है। मैम जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी कॉल स्वीकार करी है।
2: शुक्रिया आपका। अपना सवाल पूछें।
4: जी डॉक्टर साहब, नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी, मैं कहना चाह रहा था कि जब मैं सुबह को उठता हूँ तो मेरे जो हाथों पैरों की हड्डी है इनमें दर्द रहता है जी। तो जैसे कि मतलब घूमने जाता हूँ तो पहले जो घुटने हैं उनमें दर्द हो जाता है थोड़ी दूर चलने में, तो इसका कोई उपाय बताइए जी।
1: आपकी उम्र कितनी है
4: जी? 14 है।
1: 14?

0: जी
1: 14 साल के हैं आप।
0: जी जी
1: 14 साल में आपको अगर सुबह उठकर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। और आपके ये जोड़ का दर्द थोड़े समय के बाद ठीक हो जाता है क्या, कुछ घंटों के बाद?
0: मतलब वहाँ जैसे कुछ सिकाई विकाई करते हैं या वैसे तेल
1: जी
0: वैसे
1: हाँ,
0: खाते हैं जब
1: तो
0: मुझे तेल
1: आपके जो
0: वेल
1: लक्षण हैं
0: नहीं
1: ये
0: रहता है
1: हम
0: मुझे, मतलब
1: बिल्कुल
0: घर
1: टिप
0: घर में घूमता हूँ वैसे जब तो वो सही रहता है, लेकिन जब बाहर जैसे ज़्यादा दूर के लिए चलता हूँ तो जब होता है।
1: हाँ जी। तो देखिए ये जो लक्षण आपके हैं इतनी कम उम्र में ना, ये एक बीमारी होती है जिसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। आपको ये हो सकती है, आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और वो आपके कुछ टेस्ट होंगे, खून की जांचें होंगी, और उससे फिर वो कंफर्म होगा कि आपको वो बीमारी है कि नहीं है।
2: सर जैसे कि इनकी उम्र 14 साल बता रहे हैं और इन्हें दिक्कत है, तो हड्डियों के लिए बचपन से ही किस तरह के खान पान पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि ये हमेशा मजबूत रहें, इन्हें बेहतर पोषण मिले?
1: हम लोग के ह्यूमन बीइंग्स में जो हड्डियाँ होती हैं ये बचपन से लेकर करीब 22-25 साल तक की उम्र तक एक पीक बोन मास तक पहुँचती हैं।
2: जी जी
1: जो हड्डियाँ धीरे धीरे लंबे होते हैं, लड़के जो होते हैं 18 साल की उम्र तक ग्रोथ होती है, लड़कियों की 16 साल की उम्र तक होती है। तो हड्डियाँ लंबी भी होती हैं, मोटी भी होती हैं और मज़बूत भी होती हैं।
2: जी
1: तो सबसे ज़्यादा जो पीक बोन मास पहुँचता है किसी का, वो करीब करीब 22-25 साल की उम्र तक का पहुँचता है।
2: जी
1: तो ये शुरू का जो पीरियड है बचपन का और यंग एज का, 25 साल से पहले का, ये
2: जी
1: बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम अपनी बोन्स को मज़बूत कर रहे हैं।
2: जी
1: जितनी हम एक तरीके से हम अपनी तिजोरी में पैसा जमा कर रहे हैं, जो कि आगे की उम्र में वही खर्च होता रहेगा धीरे धीरे।
2: जी
1: तो इसलिए जितना ज़्यादा आप इकट्ठा करेंगे
2: जी
1: उतना ज़्यादा आपकी हड्डियाँ देर से जाके कमज़ोर होंगी,
2: जी
1: उतना ज़्यादा वो चलेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बचपन में, खासकर आजकल, क्योंकि बच्चे आजकल के सब फ़ोन पे खेलते रहते हैं या टीवी में गेम्स खेलते रहते हैं या
2: जी
1: कंप्यूटर पे लगे रहते हैं।
2: जी
1: जो हम लोग के बचपन में जैसे हम लोग बाहर जाके खेलते थे, धूप में खेलते थे, आउटडोर स्पोर्ट्स आजकल बहुत कम हो गए हैं, बच्चे खेलते नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनका खेलना, उनको पेरेंट्स को उनको घर में नहीं बिठाना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई बाहर जाके खेलो, धूप में खेलो, कोई बात
2: जी
1: नहीं, धूप में खेलेंगे, जितना दौड़ेंगे कूदेंगे उतनी उनकी मसल्स स्ट्रांग होंगी, बोन्स मसल स्टिमुलेट होंगी, बोन स्टिमुलेट होंगे ग्रोथ के लिए।
2: जी
1: इसके अलावा जितना ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन पहुँचेगा डाइट में,
2: जी
1: दूध दही पनीर, नॉन वेजिटेरियन फूड, अंडे, ये
2: जी
1: सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन्स देना, कैल्शियम देना, और ऑल्सो टू मॉनिटर कि उनका वाइटमिन डी तो नहीं कम है। अगर धूप में खेलेंगे तो वैसे ही कम नहीं होगा,
2: जी
1: धूप में बनता ही रहेगा उनका वाइटमिन डी।
2: जी
1: तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग खूब खेलें,
2: जी
1: खूब अच्छा खाए पिएं, कैल्शियम और प्रोटीन से रिच खाना पीना खाएं।
2: जी
1: इससे क्या होगा कि उनकी पीक बोन मास बहुत अच्छी रहेगी, और आगे की उम्र में जब उनका मिडिल एज होगा या ओल्ड एज होगा तो उनको ये हड्डियां कमज़ोर होने की समस्या नहीं होगी।
2: जी तो बचपन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने
1: बहुत
2: की
1: ही ज़्यादा
2: ज़रूरत है।
1: ज़रूरी है।
2: सर हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम कहते हैं सबसे ज़रूरी है, तो एक सामान्य वयस्क को, एडल्ट को, रोज़ाना कितने कैल्शियम की ज़रूरत होती है और इसके बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत क्या हैं?
1: प्राकृतिक स्रोत तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया कि मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। मिलेट्स जैसे रागी है, इसमें बहुत होता है, मखाने हैं इनमें बहुत होता है, फ्रूट्स में होता है जैसे केला है इसमें, और नॉन वेजिटेरियन फूड में भी होता है कैल्शियम। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। अब सब निर्भर करता है कि वो अगर ग्रोइंग एज है तो थोड़ा ज़्यादा बच्चों को दूध ज़्यादा देना चाहिए, 2-3 ग्लास तो कम से कम रोज के दिन पीना ही चाहिए। 500 मिलीग्राम ऑन एन एवरेज है जो कि रोज़ हम लोग को लेना ही चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हैं या डिलीवरी के बाद लैक्टेटिंग मदर हैं तो उनको 1000-1500 मिलीग्राम तक भी रोज़ हम कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं।
2: जी एक सवाल पूछ रहे, केडी त्रिपाठी हैं ये, इनकी उम्र 76 ईयर्स है, ये रांची से पूछ रहे हैं कि व्हाट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम इज़ बेटर फॉर मी, सम डॉक्टर से कैल्शियम कार्बोनेट, सम से कैल्शियम सल्फेट।
1: कैल्शियम एक्चुअली कई आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी आता है, कैल्शियम साइट्रेट भी आता है। कुछ लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट सूट करता है, कुछ लोगों को साइट्रेट सूट करता है।

0: बट कैल्शियम साइट्रेट जो है वो बेहतर माना जाता है क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन बेटर है।
1: जी। और ये एक और सवाल है, ये पूछ रही हैं 6 महीने, ये इन्होंने अभी लैक्टेटिंग मदर है, ये बच्चे को दूध पिला रही हैं, 6 महीने का इनका बच्चा है। तो ये इनका पूछना है कि मैं अपना दूध पिलाती हूँ तो क्या उन बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और नौकरी पेशा महिलाओं को डॉक्टर साहब क्या सलाह देंगे? ये नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार से पूछ रहे हैं कि अगर कोई प्रसूता अगर 6 महीने अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, और नौकरी पेशा महिलाओं को क्या सलाह आप देंगे?
0: तो अगर ये महिला अपना दूध पिला रही है, जो कि हर महिला पिलाती ही है,
1: जी
0: तो ये बहुत ज़रूरी है। आजकल एंटीनेटल क्लिनिक्स में भी जब महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको विटामिन डी तब से शुरू कर दिया जाता है,
1: जी
0: कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी शुरू कर दिए जाते हैं। और ये सिर्फ तभी के लिए नहीं है कि जब तक बच्चे की डिलीवरी ना हो जाए, डिलीवरी के बाद भी ये बहुत ज़रूरी है कि मदर को भी और चाइल्ड को भी
1: जी
0: दोनों को ही विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। छोटे बच्चे को पैदा होने के बाद भी विटामिन डी के ड्रॉप्स लेने चाहिए और महिला को भी अपना कैल्शियम का बढ़ाना पड़ेगा सप्लीमेंट, क्योंकि उनके शरीर को शुरू में तो बच्चे को बनाना था तो ज़्यादा चाहिए था, और अब क्योंकि वो लैक्टेशन है, वो दूध पिला रही हैं बच्चे को, तो उस वजह से भी उनको कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा है।
1: डॉक्टर साहब एक गाना सुन ले।
0: हाँ जी, हाँ बिल्कुल।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज का विषय है बोन्स एंड न्यूट्रिशंस, और इस विषय पर आज आप सबके सवालों का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर राहुल खरे। अगर आपके मन में भी इस विषय को लेकर कोई सवाल है और आप चाहते हैं सही सलाह, तो बस फ़ोन उठाइए और हमसे सीधे बात कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0112342108।

0: पोषण सप्ताह मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, संतुलित आहार और सही पोषण के प्रति जागरूक करना है। और आज हमारा खास विषय भी है हड्डियों के पोषण के बारे में। तो डॉक्टर राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि बढ़ती उम्र में घुटनों के दर्द या जोड़ों के दर्द की शिकायत आम है, तो आहार में ऐसा क्या शामिल करें जो जोड़ों के कार्टिलेज को बनाए रखने में हमारी मदद करे?
1: जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे ही हमारा जो हड्डियों के आखिर में जो एंड में जो चीज़ होती है वो कार्टिलेज होती है। तो दो हड्डियाँ कार्टिलेज के साथ ही एक जोड़ बनाती हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कार्टिलेज में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, हम ज़िंदगी भर उस पर चलते हैं घुटनों पे, तो कार्टिलेज धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है। अगर किसी को बचपन में कोई या यंग एज टाइम पे घुटने की कोई चोट लग गई हो या इन्फेक्शन हो गया हो तो जोड़ और जल्दी ख़राब हो जाता है उनका कार्टिलेज। तो अपार्ट फ्रॉम जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि खान पान कैसे रहना चाहिए और एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, इसके अलावा अगर खासकर कार्टिलेज की बात करें तो इसके लिए हम लोग को जो चाहिए होता है वो होता है कोलेजन। कोलेजन से ही कार्टिलेज बनता है। तो अगर कोलेजन का ही अगर आपको खान पान ज़्यादा चाहिए तो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड में, फिशेस में बहुत कोलेजन पाया जाता है, खासकर सी फूड में, सी फिशेस में, और सी के जो अंदर के प्लांट्स होते हैं उनमें भी बहुत कोलेजन होता है। वेजिटेरियंस के लिए कोलेजन, जो वेजिटेरियन टाइप का कोलेजन होता है वो उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, तो उसके लिए वो लोग आजकल कोलेजन सप्लीमेंट्स आ गए हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। इस सिर्फ कोलेजन ही लेने से कार्टिलेज आपका ठीक नहीं रहता। मैं तो अभी भी कहूँगा कि जो एक्सरसाइजेज हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो बहुत ज़्यादा कामयाब होती हैं। उससे काफ़ी हद तक आपके जो बदलाव आ रहे हैं घुटनों में, कार्टिलेज ख़राब हो रहा है, वो थोड़ा टल सकता है।
0: जी, एक सवाल व्हाट्सएप पर अनूप कुमार पूछ रहे हैं।

0: जारी है जोड़ों में और उनको दर्द भी रहता है, तो इसका मतलब कि इनको आर्थराइटिस जो है थोड़ी सी जल्दी आ रही है। इतनी कम उम्र में तो नहीं आनी चाहिए, बट अगर आ रही है तो वो आर्थराइटिस ज़रूर हो सकती है। ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलें, वो देखेंगे कि कहाँ पे दर्द है, कैसा दर्द है, किस वजह से दर्द है। कुछ एक्सरे उनके कराने पड़ सकते हैं जिससे कि पता चल जाएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस किस स्टेज की है। उसका इलाज शुरुआत में, ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज में एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो देते हैं जो कार्टिलेज को ख़राब होने से रोकती हैं, जैसे कि हमने भी बात करी कोलेजन वगैरह की। और कुछ कुछ चीज़ें उनको मॉडिफाई करनी पड़ेंगी कि सीढ़ियाँ अवॉइड करें, ज़मीन पे बैठना अवॉइड करें, इंडियन टाइप बाथरूम यूज़ करना बंद कर दें या कम कर दें। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, सिम्टम्स बढ़ते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कुछ घुटनों में, अंदर जोड़ों में इंजेक्शन्स भी लगा सकते हैं, चाहे स्टेरॉयड का हो चाहे विस्को सप्लीमेंट्स हो, उससे भी पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर थोड़ा सा पार्ट कोई घुटने का ख़राब है तो कुछ ऑस्टियोटमीज होती हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिससे कि घुटने का जो टेढ़ापन है उसको सीधा किया जा सकता है, अलाइनमेंट सही किया जा सकता है, तो घुटना और देर तक चल सकता है। और जब लास्ट में बहुत ही ज़्यादा घुटना ख़राब हो जाता है और किसी चीज़ से कोई आराम नहीं मिल रहा होता है, तो फिर जोड़ बदलने का ऑपरेशन, टोटल नी रिप्लेसमेंट करने से आराम मिल जाता है।
1: सर, जैसे हमने अभी बात की ऑस्टियो

0: मेनोपॉजल लेडीज़ में या ओल्ड एज में हो, वो यंग एज में भी, यंग लोगों में भी हो सकती है अगर उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हों तो। इसलिए और सबसे कॉमन लेकिन जो है वो यही है, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस और सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है वो, जैसे पहले भी बताया, बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन। इससे बिल्कुल श्योर शॉट पता चल जाता है कि हड्डियाँ कितनी नॉर्मल हैं या थोड़ी सी कमज़ोर हैं, जैसे कि ऑस्टियोपिनिया, या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस। जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं तो बहुत छोटी सी ही चोट से हड्डी टूट सकती है। तो इसलिए हमें वो चीज़ प्रिवेंट करनी है, और ये प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है, और ये बहुत ही साइलेंट डिज़ीज़ है, पता भी नहीं चलता है कि आपकी धीरे धीरे हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। तो शुरुआत होती है किसी को कमर का दर्द हो, किसी महिला, अगर वो 50+ लेडी हैं, उनको कमर का दर्द होना शुरू हो जाएगा। कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं, झुक कर काम नहीं किया, कोई वज़न नहीं उठाया, लेकिन धीरे धीरे दर्द आना शुरू हो गया है कमर में। ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ हमें हिंट देता है कि इस पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो रही होगी। और अगर वो नेगलेक्ट की जाए उस समय, उनका टेस्ट ना करें, उनका ट्रीटमेंट ना करें, प्रिवेंट ना करें ऑस्टियोपोरोसिस का होना, तो आगे जाके सारी ही हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आमतौर से सबसे कॉमन हड्डियाँ जिसका हम टेस्ट करते हैं वो है रीढ़ की हड्डी, हिप की बोन, कूल्हे की हड्डी और कलाई की हड्डी। यही यही तीन हड्डियां हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन भी हैं फ्रैक्चर्स के लिए। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स जो होते हैं, हड्डियां कमज़ोर होने के जो फ्रैक्चर होते हैं, वो यही तीन हड्डियों के होते हैं गिरने से। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें यंग पॉपुलेशन को भी उनका भी टेक केयर करना है कि उनको भी कहीं ये सारी बीमारियां ना हो जिनकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं।
1: जी। और सर कि ज़्यादा चाय पीना, कॉफ़ी पीना या कोल्ड ड्रिंक्स पीना, क्या हड्डियों की सेहत पर इसका भी प्रभाव पड़ता है? और ये सर कहते हैं कि शरीर से कैल्शियम को कम कर सकती हैं, क्या ऐसा होता है?
0: हाँ, अगर बहुत मात्रा में, देखिए, एनीथिंग इन एक्सेस इज़ बैड फॉर हेल्थ।
1: जी।
0: तो बहुत ज़्यादा कोई चाय पियेंगे, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पियेंगे, और बहुत ज़्यादा अगर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी डाइट कम हो जाएगी, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, डेफिनेटली बोन हेल्थ को भी फ़र्क पड़ेगा उसमें।
1: जी
0: लेकिन हाँ, कभी एक दो कप दिन में पीने से कोई नुकसान नहीं है।
1: जी सर ये भी है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर गए और कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं। ओवरडोज या गलत तरीके से सप्लीमेंट लेने की क्या नुकसान भी हो सकते हैं?
0: बिल्कुल होते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि विटामिन डी जो है, हमारे शरीर में ना दो प्रकार के विटामिन्स होते हैं, एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स और एक फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। तो जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है वो हमारे शरीर के अंदर जो फैट है उसमें जम जाता है जाके, उसमें जमा हो जाता है जाके। तो विटामिन ए, डी, ई और के जो होते हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो विटामिन डी भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, शरीर को ज़रूरत नहीं है उसकी, तो वो फैट में जमा हो जाएगा। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन बी और सी, अगर ये कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल हैं, वो यूरिन से निकल जाते हैं बाहर, हमारे शरीर से हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। लेकिन अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारा ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ सकता है, हमारे आई बॉल्स बाहर निकलने जैसी लग जानी शुरू हो जाती हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए कभी भी अपने आप ये सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए केमिस्ट के पास जाकर, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हो गए आपको तो उसको फिर शरीर से निकालना भी मुश्किल काम होता है। तो इसलिए अगर किसी को लेना भी है तो पहले टेस्ट ज़रूर करा लें कि उनका विटामिन डी कम है या नॉर्मल है, और उसके बाद ही डॉक्टर के सलाह से ही ये सप्लीमेंट्स भी लें।
1: जी। और एक गाना सुन ले क्या?
0: जी हाँ।

0: आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर राहुल खरे। डॉक्टर साहब, सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को जोड़ों और हड्डियों में ज़्यादा दर्द क्यों महसूस होता है, और इससे बचने के लिए डाइट में क्या बदलाव करने चाहिए?
1: ये तो बिल्कुल सही बात है कि जिन लोगों को जोड़ों की तकलीफ़ होती है उनके दर्द आमतौर से सर्दियों में बढ़ जाते हैं, और उसका मुख्य कारण ये है कि सर्दियों में क्या होता है, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो हमारी जो खून की नलियां हैं शरीर में, जो खून ले जाती हैं शरीर के वेरियस पार्ट्स में, तो वो सिकुड़ जाती हैं, उनका डायमीटर कम हो जाता है, तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। अब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो जितने भी हमारे केमिकल्स जो पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं जो जोड़ों पे दर्द का एहसास दिला रहे हैं, दर्द हो रहा है जिनकी वजह से, वो उतने धुल के निकल नहीं पाते हैं और दर्द ज़्यादा होता है। और भी इसमें और भी कारण हैं कि लोगों को सनलाइट नहीं मिलती है और विटामिन डी की कमी से भी दर्द होता है लोगों को मांसपेशियों में, जोड़ों में। तो इसका खान पान में तो ये है कि आप गर्म खाना खाएं, सेहतमंद खाना खाएं, बैलेंस्ड डाइट लें, कैल्शियम रिच डाइट लें, जितना हो सके उतना धूप में रहें, और विटामिन डी के नहीं तो सप्लीमेंट्स ले लें अगर कमी है, और सिकाई और एक्सरसाइज। सिकाई करना, जोड़ों पे सिकाई करेंगे, गर्माहट पहुँचेगी तो अपने आप खून का प्रवाह बढ़ेगा, ब्लड फ्लो वहाँ पर उस जगह बढ़ेगा। मालिश करें, उस

0: से मसल्स में भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा। और एक्सरसाइज एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बाहर ठंड में नहीं जाना है, पोल्यूशन भी हो जाता है शहरों में, तो घर के अंदर ही एक्सरसाइजेस करें, लेकिन करें ज़रूर। तो इन सब चीज़ों से उनको सर्दियों में जो दर्द बढ़ जाता है उसमें राहत मिलेगी।
1: सर, एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं।
2: एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को गुड आफ्टरनून।
0: गुड
1: गुड
0: आफ्टरनून।
1: आफ्टरनून
2: जी, राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही। 48 वर्ष मेरी उम्र है। मेरा पहला सवाल तो ये रहेगा कि किसी पेशेंट को हड्डियों की बीमारी है या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस है या फिर जो है ग्लूटियस एमिशिया है, कैसे पता चले। दूसरा सवाल मेरा कि जो आपने कहा कि विटामिन ये दूध से मिलता है और उसकी सप्लीमेंट टैबलेट या मेडिसिन भी आती है, तो अब मेरा मानना पूछता रह ये रहेगा कि वेदर विटामिन डी के लिए धूप में बैठे या इसकी सप्लीमेंट ले या दोनों ही आप एडवाइस करेंगे। और कैल्शियम के लिए जो आपने कहा कि केला दूध बेहतर रहेगा, तो केला और अंडे में से आप किसे तवज्जो देंगे अहमियत, ये बताएं, और बड़ी मेहरबानी होगी।
0: आपका जो पहला प्रश्न था वो क्लियर नहीं था, आप वो प्लीज़ रिपीट कर सकते हैं? शायद फ़ोन कट गया।
1: जी।
0: तो इन्होंने पहला तो मैं नहीं सुन पाया, इनका क्लियर नहीं था प्रश्न। दूसरा इन्होंने पूछा था कि वाइटामिन डी
1: जी
0: में धूप में बैठें या
1: हाँ
0: वाइटामिन डी
1: हाँ
0: के सप्लीमेंट्स लें।
1: जी
0: तो वाइटामिन डी सप्लीमेंट्स लें या धूप में बैठें, ये सब कुछ निर्भर करेगा उनके वाइटामिन डी टेस्ट के रिपोर्ट पर। अगर उनका वाइटामिन डी बहुत कम है तो हम उन्हें इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर कम है, बहुत कम नहीं लेकिन कम है, तो हम उनको ओरल सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। और अगर उनका नॉर्मल है वाइटामिन डी,
1: जी
0: तो फिर तो उनको कोई भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। धूप में जहाँ तक हो सके लोगों को बैठना चाहिए, खेलना चाहिए, धूप का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी भी होता है। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं पॉसिबल है, बारिश का मौसम है, सर्दियाँ हैं, धूप ही नहीं निकल रही, या आपका काम ऐसा है कि आपको घर के अंदर ऑफिस के अंदर ही बैठ के करना पड़ता है, तो अलग से समय निकाल के धूप में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अगर वाइटामिन डी की कमी हो।
1: सर, ये दूसरा सवाल पूछ रहे थे कि अंडा या केला दोनों में से क्या बेहतर है।
0: दोनों में ही अच्छा मात्रा है कैल्शियम का, और अंडा लेंगे तो आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा साथ
1: जी,
0: में, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर तो कोई
1: केला
0: चॉइस ही नहीं
1: खाइए।
0: है।
1: जी। सर, क्रैश डाइटिंग का आजकल तेजी से वजन घटाने की कोशिश का हड्डियों की मजबूती पर क्या विपरीत असर पड़ता है।
0: ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि बहुत ही एकदम खाना कम कर देते हैं वज़न घटाने के लिए।
1: जी।
0: तो इससे तो काफ़ी मुझे लगता है कि नुकसान ही होता है, क्योंकि आप एकदम से खाना पीना बंद कर देते हैं, फास्टिंग होती है, या बहुत ही सिलेक्टिव खाना खाते हैं, तो इसका मतलब कि प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट तो पहुँच नहीं रही। हर प्रकार का जो न्यूट्रिशन होना चाहिए शरीर को चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों, फैट्स हों, मिनरल्स हों, विटामिन्स हों, ये सब तो नहीं पहुँच रहे हैं। तो इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कोई एक प्रकार का ही खाना खा रहे हैं या आप बिल्कुल खाना कम कर दिया है, तो आपके अंदर सारी चीज़ें कम पहुंच रही हैं, इंक्लूडिंग कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी। ये कहीं ना कहीं ज़रूर ही हड्डियों पे और जोड़ों पे भी प्रभाव डालता है, और इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। खाना पीना कम करेंगे, वज़न कम हो जाएगा तो मसल मास भी कम हो जाएगा, और मसल मास कम होएगा तो मसल्स ही अगर स्ट्रांग होती हैं तो स्टिमुलेट करती हैं हड्डियों को मजबूत करने के लिए। तो अगर मसल मास भी कम होगा तो भी वो इनडायरेक्टली हड्डियों को कमज़ोर करेगा।
1: जी सर, एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं।
2: जी, मेरा नाम कुशागर कंठ है जी।
1: जी अपना सवाल पूछें।
2: मेरा ये सवाल है कि विटामिन डी के साथ विटामिन K2 अपने शरीर के लिए लेना जरूरी है एक बार में कि अलग-अलग भी उसके लिए यूज कर सकते हैं।
0: देखिए, विटामिन डी आप किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, विटामिन K2, ये सब कुछ हो ना हो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और सिंपल विटामिन डी अगर सनलाइट एक्सपोजर से बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डाइटरी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, सी फूड खा रहे हैं, फ़िश वगैरह ले रहे हैं, तो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो सिंपल विटामिन डी सप्लीमेंट जो होता है वो आपको उतना भी काफ़ी है। आजकल क्या

0: हो रहा है बिकॉज सब कंपनीज को अपना अपना सामान बेचना है, तो वो कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर देते हैं, घटा देते हैं, जस्ट टू बी डिफरेंट, अपने आप को डिफरेंट प्रोडक्ट बना के. वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा है, और आप चाहे K2 के साथ लें या ना लें, उससे खास फ़र्क नहीं पड़ता.
1: सर, एक मैसेज आ रहा है, इफ़ यू कुड गिव द पब्लिक जस्ट 3 प्रैक्टिकल पीसेज ऑफ एडवाइस फॉर कीपिंग देयर बोन्स हेल्दी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, व्हाट वुड दे बी?
0: अच्छा, तो सबसे पहले देखिए, हम लोग ने ज़्यादातर इन सब चीज़ों का डिस्कशन कर ही लिया है कि आपको डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है. आपकी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, चाहे डाइट से हो, चाहे सनलाइट से हो, चाहे सप्लीमेंट से हो, और प्रोटीन्स, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आपका वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका शरीर का वज़न होगा, उतना ही आप की हड्डियों पे और जोड़ों पे लोडिंग होएगी, और वो कहीं ना कहीं आपको आगे तकलीफ़ देंगे. और तीसरा है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ऑर्थोपेडिक्स में, बोन्स जॉइंट्स की प्रॉब्लम में, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक आधे से ज़्यादा तकलीफ़ तो सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही ठीक हो जाती हैं. काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए डॉक्टर्स आपको एक्सरसाइज बताते हैं. पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं मेडिसिन खाने के पार्ट में, लेकिन अगर वो एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो देखेंगे कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म के लिए उनको एक्सरसाइजेस ज़्यादा हेल्प करेंगी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, ना कि मेडिसिन.
1: और सर, अब आखिरी सवाल ये है कि थायराइड और डायबिटीज़ या पेट संबंधी समस्याओं के मरीजों में हड्डियों की कमजोरी का खतरा ज़्यादा क्यों होता है?
0: थायराइड प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, चाहे थायराइड कम हो, ग्लैंड कम थायराइड स्किन हार्मोन बना रही है या ज़्यादा बना रही है, हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों में ही बोन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है. हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में वज़न भी बढ़ता है, वाटर रिटेंशन भी ज़्यादा होती है, मोटापा आ जाता है, वेट बढ़ जाता है, तो हड्डियों पे और जोड़ों पे भी फ़र्क पड़ता है. लोडिंग ज़्यादा होती है तो जोड़ जल्दी ख़राब होते हैं. अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन बनाए, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होगा, तो बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं. और डायबिटीज़ में तो ये फ़र्क पड़ता है कि अगर किसी को कोई भी थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो जाए हड्डी के आसपास, और अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो हड्डी में भी इन्फेक्शन हो सकता है. जिन लोगों के हड्डियाँ टूट जाती हैं उनमें भी अगर उस आदमी को डायबिटीज़ है तो वो जुड़ने में भी ज़्यादा समय ले लेती हैं. उनको नॉर्मल टाइम जो उस हड्डी को जुड़ने में लगता है उससे ज़्यादा समय लग जाता है अगर किसी को डायबिटीज़ है तो.
1: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने डॉक्टर राहुल खरे से जाना कि हमें अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत रखना है, यानी हड्डियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर राहुल खरे, आपका इस कार्यक्रम में आने और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद.
1: श्रोताओं, आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम से संबंधित किसी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा मेल एड्रेस है healthairdelhi@gmail.com। आज बस इतना ही। अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त काजल को दीजिए अनुमति। अपना और अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हर दिन दोपहर 3 बजे से जरूर सुनिए कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, 4 बज चुके हैं। पेश है इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों और व्यापार मंत्री जेवियर बेटेल से मुलाकात की। दिल्ली सरकार ने सत्यनिकेतन इलाके में रही इमारत के मामले में दिल्ली नगर निगम के कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने इमारत के मालिक को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ सत्यनिकेतन इलाके में रही इमारत स्थल का जायजा लिया। मलबे से 12 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई और 5 लोगों की हालत स्थिर है। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार ए मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची की 7 इमारतों में छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत सीआरपीएफ की 199वीं वाहिनी ने नक्सलियों द्वारा जंगल में छिपाकर रखे गए 14 नक्सली डंप बरामद किए गए। नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। इसरो ने उन खबरों और अटकलों का खंडन किया है जिनमें इसके निजीकरण या भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही थी। इसरो ने स्पष्ट किया कि न तो उसका निजीकरण किया जाएगा और न ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। दिग्गज सिनेमेटोग्राफर टी एन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय, अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। उधर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये थी अब तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर। और शुरू हो गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम अल्फा जैन। और आज यानी सोमवार के दिन अल्फा जैन में हम लेकर आते हैं यूथ स्पीक्स, यानी कि आप युवाओं में से मिलता है किसी एक को मौका यहाँ रेनबो के स्टूडियो में आने का और अपने अनुभवों के जरिए आपके साथ अपनी जिंदगी की दास्तां को शेयर करने का। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे युवा जिनकी पहचान सिर्फ एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं है। महज 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने कानून, सामाजिक सरोकार, खेल और रंगमंच, इन चारों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। हमारे साथ हैं तुषार पाठक, जो दिल्ली हाई कोर्ट और जिला अदालतों में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। तुषार ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कानून की राह चुनी और इसी के साथ वो सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। तुषार की बात करें तो वो एक बेहतरीन रनर भी रहे हैं और रनिंग में गोल्ड मेडल्स भी जीत चुके हैं। उन्हें थिएटर का भी शौक है और रंगमंच पर भी वो अपनी प्रतिभा बिखेर चुके हैं। तो कानून की समझ, समाज के प्रति जिम्मेदारी, खेल का जुनून और कला से जुड़ाव, इन सब का शानदार संगम है हमारे आज के अल्फा जैन गेस्ट तुषार पाठक। तुषार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में। तो तुषार, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर और आप किस टॉपिक पर युवाओं से बात करने वाले हैं?
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुषार पाठक है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मौका मिला है कि आज मैं आकाशवाणी के साथ जुड़ के अपने युवाओं से, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से कुछ बातें कर सकता हूँ। तो जो मैं हूँ, जो आप सब हैं, युवा, देश का युवा, आज हम अपने युवाओं के बारे में बात करेंगे, उनसे जुड़ी हर समस्या, हर खुशी, उसके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल तुषार, तो कहीं ना कहीं आप युवा होने के नाते जो हमारे युवा साथी हमें सुन रहे हैं उनके हर इमोशन से रूबरू होंगे। आप जानते होंगे कि किस तरीके से युवाओं में जुनून है, पैशन है और कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर वो घिर भी जाते हैं, चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। तो उनकी जो चुनौतियाँ हैं उन पर भी हम बात करेंगे और तुषार रहेंगे आपके साथ और कहीं ना कहीं आप उनके साथ एक स्पेशल कनेक्ट महसूस करने वाले हैं।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तुषार और आज हम बात करने वाले हैं उस ताकत के बारे में जो अगर सही दिशा में मुड़ जाए तो इतिहास रच देती है। जी हां, हमारी युवा शक्ति। हम अक्सर सुनते हैं कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन सच तो ये है कि युवा सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि हमारा वर्तमान भी है। इस दौर में आपके पास असीमित ऊर्जा, नई सोच, जोखिम उठाने का गजब साहस होता है। जब भी दुनिया में कोई बड़ा तकनीकी या सामाजिक बदलाव आया है, उसके केंद्र में युवाओं की यही ऊर्जा रही है। तो चलिए आज इस सफ़र की शुरुआत करते हैं।

तो दोस्तों, जैसा कि हम सब ने सुना है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जीवन में बड़े सपने देखना सबसे पहला कदम है। जो सपने देखने की हिम्मत ही नहीं करता, वो इतिहास क्या बनाएगा। लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और अनुशासन चाहिए। और अगर इस रास्ते में हार मिले तो हमें डरना नहीं है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों प्रयोग किए थे। गिरकर उठना और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही असली युवा की पहचान है।

0: बिल्कुल दोस्तों, छोटी सी आशा ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हम अपनी जान लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्यों तुषार? बिल्कुल तुषार, और ये भी है कि कहीं ना कहीं जब हम अपनी राह पर आगे बढ़ते हैं तो साथ ही साथ कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर बात करूँ युवाओं की, तो युवाओं के सामने आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
1: सबसे बड़ी चुनौती जो आज हम युवाओं के सामने है वो है कंपैरिजन, यानी तुलना करना। हम सोशल मीडिया खोलते हैं, दूसरों की स्टोरीज देखते हैं और खुद निराश होने लग जाते हैं कि कोई कितना खुश है, कोई कहाँ घूम रहा है। लेकिन हम सबकी एक अपनी क्षमता है, सबकी सोचने की एक ताकत है और हमारी राह हमारी क्षमता और ताकत के अनुसार ही होनी चाहिए।
0: बिल्कुल तुषार, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के दौर में जब सब चीज़ें हमें ऑनलाइन दिखने लगती हैं तो दूसरों की ज़िंदगी को देखकर कुछ लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा इन्फीरियर फील करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, लेकिन मुझे लगता है ना, वी शुड बी आर सेल्फ। हमें अपने आप से प्यार करना सबसे पहले सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं ना तो अपनी खूबियों को अपनी कमियों को पहचानते हैं, अपनी खूबियों से प्यार करते हैं और उनको अपनी दुनिया के सामने रखते हैं और अपनी कमियों से जूझते हुए उनसे बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं।
1: दूसरों की देखा देखी तो हमें कभी करनी ही नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: दूसरों की देखा देखी या समाज के दबाव में आकर अपने करियर का, अपनी खुशियों का हमें फैसला नहीं लेना चाहिए। हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए जो हमारे दिल को भाए और जिसमें हमारा जुनून हो, क्योंकि जब आप जुनून का पीछा करेंगे तो सफलता का कुछ स्वाद ही अलग होगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार, जुनून के साथ, पैशन के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसका मज़ा बहुत ही बढ़िया होगा। और इसी के साथ हमारी इन बातों का सिलसिला चलता रहेगा आपके अपने शो अल्फा जेन में, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स।

तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो अल्फा जेन, और अल्फा जेन में बात हो रही है युवाओं की, उन युवाओं की जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कई चुनौतियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तुषार पाठक।

0: इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनके जीवन में होती है, तो आपको क्या लगता है वो क्या है?
1: तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो धन है, सबसे अमूल्य चीज़ है, वो है उनका समय। एक युवा अपने समय को किस तरह प्रयोग करता है, किस तरह समय के साथ आगे चलता है, नई नई स्किल्स अपग्रेड करता है, उस पर कैसे ध्यान देता है
0: जी।
1: क्योंकि आजकल के बदलते ज़माने में सिर्फ कॉलेज की डिग्रियां, डिप्लोमा ही काफ़ी नहीं है।
0: बिल्कुल सही।
1: अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो समय के साथ चलते रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, ताकि कोई रुकावट आए तो भी आप उसको पार कर लें। समय आपका साथी बने, आप समय के साथी बने और आगे बढ़ते रहें।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार, क्योंकि कभी ना कभी अगर आपको किसी चुनौती का सामना करना भी पड़ता है और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों हो रही है, ये आपदा मेरे जीवन में ही क्यों आई है, लेकिन आपको सोचना है कि क्या पता वो आपदा आपके जीवन में कोई अवसर लेकर आई हो, कि कहीं ना कहीं आपके लिए उस आपदा के बाद भी कुछ ऐसे रास्ते खुल रहे हों जिनसे आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। क्यों, सही कह रही हूं ना तुषार?
1: बिल्कुल, जैसे कि कोविड आया
0: जी,
1: हम सब परेशान हो गए, सबके परिवार परेशान हो गए, लेकिन उसी आपदा में एक अवसर निकल के आया, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्रेनिंग।
0: बिल्कुल।
1: और अगर मैं अपने प्रोफेशन की भी बात करूं तो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमने कितने मैटर्स करे। ऑनलाइन हो जाने से हमारे जीवन में इतनी सरलताएं आ गई। वही बात है कि समय के साथ, अगर हम समय के साथ ऑनलाइन नहीं सीखते तो हम पीछे रह जाते।
0: बिल्कुल, बहुत सारे काम रुक जाते, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उस आपदा में भी एक रास्ता निकाला, उस चुनौती का भी हमने समाधान निकाला और कई चीज़ें ऑनलाइन होने लगी और उससे कहीं ना कहीं तुषार आने जाने का समय भी बचा ही है।
1: जी जी।
0: तो चलिए, हमारी इन बातों का सिलसिला चलता रहेगा और आप इंजॉय कीजिए ये गाना, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।
2: जिद है मेरी दर्द।

0: लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर जीवन में सूरमा बनना है तो क्या कुछ इम्पोर्टेंट है युवाओं के लिए, बल्कि हम सभी के लिए?
1: जैसा कि आज का दौर चल रहा है डिजिटल एज, आज के युग में इंटरनेट एक ऐसा खजाना है जो पहले कभी नहीं था। अब आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी सीख सकते हैं, अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: जैसा कि हमने कोविड में देखा, कितने युवा इन्फ्लुएंसर्स निखर के बाहर आए। आज आप अपनी आवाज़ करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ध्यान ये भी रखना है कि इस पावर के साथ आती है जिम्मेदारी।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार।
1: इंटरनेट का सही इस्तेमाल हमेशा खुद को मजबूत बनाने और ज्ञान बढ़ाने के लिए करें, ना कि सिर्फ रील्स पे टाइम पास करके अपना स्क्रॉलिंग में टाइम खराब करें।
0: बिल्कुल सही, क्योंकि हम में से कई लोग यही कर रहे हैं, बस स्क्रॉल कर रहे हैं स्क्रॉल कर रहे हैं, और बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जो इन द एंड ऑफ द डे आपको समझ में आता है कि वेस्ट हो गया। जब आप अपना स्क्रीन टाइम अगर आप अपना देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि अगर आपने 1-2 घंटे सिर्फ एक ऐप पर
1: स्क्रॉलिंग में बिता दिया।
0: स्क्रॉल करते हुए वेस्ट कर दिए, तो वाकई में आपको दुख होता है कि यार इतना सारा टाइम तो वेस्ट ही हो गया। तो कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट करते रहने की ज़रूरत है कि आप कुछ इंटरनेट से अच्छा सीखें, अच्छा करें, और उसका इस्तेमाल किया जाए किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए।
1: तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज आपका ध्यान कहां है, वही आपका कल तय करेगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार, और इसी के साथ हमारी इन बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashwani. Phir aaya entertainment ka revolution, jab kone kone pahuncha Doordarshan. Kahani nahi badli, style gaya hai badal. जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: कोयल सी तेरी बोली,
7: आय हाय,
6: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
8: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
9: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: उड़ने के लिए दृढ़ निश्चय जरूरी होता है, साथ ही साथ जरूरी होती है कड़ी मेहनत, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ सफलता के लिए बेहद ही जरूरी है। तुषार, आपको क्या लगता है कि आजकल के युवाओं के सामने बहुत सारी चुनौतियां तो हैं, लेकिन अगर वो सफलता पाना चाहते हैं तो उनको किन चीजों को अपनाना होगा? क्या है आपके लिए सफलता का मूल मंत्र?
1: अगर आप मुझसे पूछे कि सफलता के मूल मंत्र क्या हैं, तो मैं कहूँगा सफलता के तीन बड़े मूल मंत्र हैं, अनुशासन, निरंतरता और धैर्य। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। डिसिप्लिन आपको तब भी मदद करता है, वो आपको तब भी प्रोत्साहन देता है कि आपको काम करना है जब आपका मन नहीं होता। कंसिस्टेंसी, धीरे धीरे किए गए छोटे छोटे प्रयास जो हमें सफलता की ओर लेके जाते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, पेशेंस।
0: बिल्कुल,
1: पेशेंस, समय और संयम बड़े प्रयासों के सफल रिजल्ट के लिए सबसे जरूरी है, समय और संयम। तो संयम बनाए रखें, अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलते रहें और कंसिस्टेंट रहें अपने पड़ाव में।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार, बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में डिसिप्लिन को अपनाना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एक लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें उसके लिए कड़ी मेहनत तो करनी ही होती है, लेकिन मन के लिए, मन के साथ बह जाने की ज़रूरत नहीं होती, मन को बांध कर रखने की ज़रूरत होती है। जो करना चाहिए, यानी कि अगर आपको किसी समय में काम करना है तो अपने काम के प्रति ईमानदार होते हुए उस काम पर फोकस करने की ज़रूरत होती है, और उसी के साथ आगे बढ़ने के लिए साथ ही साथ पेशेंस भी रखना होता है। मन चाहे कितना ही विचलित क्यों ना हो, लेकिन उसको कंट्रोल में करना होता है, और धैर्य के साथ, निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना होता है, मेहनत करने की ज़रूरत होती है, तभी हम अपने जीवन में एक लंबी छलांग ले पाते हैं।

0: Team building for resilience, innovation, cooperation and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Akashvani आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: या दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम अल्फा जैन, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी, और हमारे साथ हैं स्टूडियो में तुषार पाठक। तुषार, हम बात कर रहे हैं युवाओं की, उनकी चुनौतियों की। तो क्या कभी आपके जीवन में ऐसा पल आया है जब आपको लगे कि मैं हार गया, अब क्या करूं, आपका विश्वास कमज़ोर पड़ने लगा हो, और आपने तब किसका हाथ थामा, किसका दामन थामा, और कब आपने ऐसे, आपने कैसे उस मुश्किल दौर को पार किया?
3: तो मैं अगर बात करूं पिछले ही साल की, तो कुछ ऐसे हादसे हुए थे कि मुझे भी लगा कि मैं हार गया हूं, अब सब ख़त्म ही हो गया है। तो अच्छा। मैंने अध्यात्म को चुना।
2: अच्छा।
3: मैंने शिव को चुना। मैंने उनसे मांगा कि बाबा सब ठीक कर दो। तो मुझे पूरे मन से ठानने के बाद, शिव को मानने के बाद, उनसे मांगने के बाद, पूर्ण समर्पण मैंने कर दिया शिव को, और उसका परिणाम ये रहा कि मुझे 25 साल की उम्र में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के भव्य दर्शन हुए। मेरा जीवन सुधरा, शिव ने मेरा हाथ थामा, मैंने उनको माना, उन्होंने मुझे अपनाया, और मेरे इसी विश्वास ने मुझे आज पहले से बहुत मजबूत, बहुत ही धैर्य और शांत बनाया।
2: बिल्कुल, जब आप किसी शक्ति में विश्वास करते हैं तो उसमें विश्वास करने के साथ साथ जब आप आगे बढ़ते हैं अपनी कड़ी मेहनत के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप और मजबूत स्थिति में आ गए हैं और आप सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं, आपके कदम और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और आप उन ऊँचाइयों को पाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं। तो चलिए, आपके लिए पेश है ये बहुत ही खूबसूरत गीत, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा।

0: दोस्तों, समय हो गया है 4:54, और इसी के साथ हमारा जो आज का ये सफ़र है वो समाप्ति की ओर है। तो हम हमारे गेस्ट तुषार से बस यही जानना चाहेंगे कि तुषार, जाते जाते आप क्या संदेश हमारे युवा साथियों को देना चाहेंगे?
1: मैं ये कहूँगा कि हम युवा, हम सबको ये याद रखना है कि युवा होना सिर्फ एक उम्र की सीमा नहीं है, बल्कि यह एक सोच है कुछ नया करने की, समाज की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने की और एक बेहतरीन समाज बनाने की। हम सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास की रीढ़ हैं। जब देश का युवा सही रास्ते पर एक कदम बढ़ाता है तो पूरा राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ता है। जब हमारे इरादे नेक होंगे और हम मेहनत में ईमानदारी से काम करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हमें साथ रहना है, साथ चलना है और देश का विकास करना है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार, कहीं ना कहीं अपने साथ साथ देश के बारे में भी सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश हमसे है और हम देश से हैं। इसीलिए कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ आगे तो बढ़ना है, लेकिन अपने राष्ट्र के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हमारा देश तरक्की तभी करेगा जब हम तरक्की करेंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और कहना चाहिए कि चाहे हमारी सफलता के रास्ते में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए तुषार, लेकिन अपने अंदर के आत्मविश्वास को बरकरार रखना है, दृढ़ निश्चय को बनाकर रखना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आप मेहनत से कभी भी आगे बढ़ेंगे ना तो सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा जी।
1: अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन से नहीं हारना है, ठान लीजिए और चल पड़िए अपनी जीत की राह पर।
0: बहुत खूब, तो इसी के साथ मैं आपकी दोस्त आरजे शालिनी और तुषार आपको कहेंगे बाय, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया। यह समारोह तालेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री विदेश मामलों और व्यापार मंत्री जेवियर बेटेल से मुलाकात की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्यनिकेतन में हुए भवन हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए हैं। दिल्ली सरकार ने सत्यनिकेतन इलाके में ढही इमारत के मामले में दिल्ली नगर निगम के कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने इमारत के मालिक को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ सत्यनिकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मलबे से 12 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लोगों की हालत स्थिर है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज रांची, कोलकाता, दिल्ली समेत 7 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत सीआरपीएफ की 199वीं वाहिनी ने नक्सलियों द्वारा जंगल में छिपाकर रखे गए 14 नक्सली डंप बरामद किए हैं। नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है, अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। उधर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। तो आकाशवाणी एफएम रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आज शहर में कहाँ है रौनक, कहाँ है कोई खास इवेंट और किन रास्तों पर मिल सकता है ट्रैफिक का ट्विस्ट। हर जरूरी खबर मिलेगी बिल्कुल शॉर्ट और स्मार्ट अंदाज में, तो सीट बेल्ट बांधिए, हेलमेट लगाइए और दिल्ली की शाम के साथ अपडेट रहिए, क्योंकि दिल्ली में शाम ढलती नहीं, हर शाम अपने साथ एक नई कहानी लेकर चलती है। लाइट्स ऑन, दिल की धड़कने ऑन और मूड हो जाए बिल्कुल मैजिकल, क्योंकि शहर की इन चमकते गलियों से लेकर आपके दिल के कोने तक, आपके दिल के कोने तक ये सफर होने वाला है कुछ खास। वेलकम टू सिटी लाइट्स विद आरजी सीमा, यानी एंटरटेनमेंट का बीमा, ओनली ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

दिल पर जी, कुछ इस तरह के गाने होते हैं जिन्हें गुनगुनाने का दिल चाहता है, गुनगुनाए भी क्यों ना अगर खुशी होती है। बहरहाल समय है, वेदर अब ठीक ठाक। लास्ट वीक से शुरू हुई इस बारिश डे वीकेंड तक जैसे कि शहर की धूल ही नहीं दिलों की थकान को भी धो दिया है। हाँ, आप बता दें, आज दिल्ली एनसीआर की फिजाओं में बादल की हल्की चादर है, हवा में नमी है, मौसम के मिजाज में एक खूबसूरत सी नरमी। कहीं धूप बादलों से आंख में चोली खड़ती नजर आएगी तो कहीं बूंदे फिर से जमीन को छूने का बहाना ढूंढ सकती हैं। तो अगर आज आप भी अपने घर से निकल रहे हैं तो छाता साथ में रखिए, जरूरत पड़ भी सकती है और थोड़ा सा वक्त भी, क्योंकि दिल्ली का मौसम कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, चलिए बता दें दिल की बात। जरा ठहर कर चलो, जरा ठहर कर चलो, हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, कुछ रास्ते मौसम का एहसास लेने के लिए भी होते हैं। तो इस मौसम को फील कीजिए इस स्पेशल ट्रैक के साथ। सुन रहे हैं सिटी लाइट्स विद रेडियो सिनसिनी सीमा। और रात को सुनकर बहुत मजा आने वाला है।

My Dil Goes, वो भी क्यों रहा इतना प्यारा गाना सुना। मूड आपकी, मस्ती मेरी, और आज की फ्रिक्वेंसी सीधे आपके दिल की। इतनी सीधी कि रास्ते में ट्रैफिक में बोले पहले सीमा को सुनो फिर आगे बढ़ना, तो फिर वॉल्यूम बढ़ाइए और ट्रैफिक अपडेट सुनिए। वैसे एक बात और कहने को दिल चाह रहा है, सोचा कह ही दूँ। बिना ट्रैफिक अपडेट्स के सिटी लाइट्स बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना चटनी के समोसा। आ गया ना मुँह में पानी, मेरे तो आ गया है। तो फिर मौका है भी है, मौसम भी है, और याद हमने दिला ही दिया। तो बारी अब ट्रैफिक अपडेट की। तो आज ऑफिस से घर लौटने वालों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि शाम की यात्रा को सामान्य सोमवार जैसा न माने। यानी कि आज का सोमवार को दिल्ली में ट्रैफिक सामान्य सोमवार से कुछ ज़्यादा प्रभावित रहने की संभावना है। ब्रिक्स की तैयारियों और भारत मंडपम में चल रहे आयोजनों के कारण यहाँ का जो खासकर सेंट्रल दिल्ली और प्रगति मैदान के आसपास का अचानक ट्रैफिक रेगुलेशन या डाइवर्जन हो सकता है। तो अब आपको करना ये है कि अगर आपको अपने ऑफिस से सेंट्रल दिल्ली प्रगति मैदान आईटीओ लोधी रोड के आसपास है या फिर, तो फिर आपको ऑफिस आवर्स ख़त्म होते ही निकले, बहुत देर रुकने की कोशिश ना करें। साथ ही आप कर सकते हैं सेंट्रल दिल्ली या न्यू दिल्ली के इलाकों में अतिरिक्त समय लेकर निकले। इंडिया गेट, प्रगति मैदान, भारत मंडपम के आसपास के मुख्य कॉरिडोर भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए समय से पहले निकलें।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और एनसीआर में। इसी फ्रिक्वेंसी पर हम आपके साथ और आप हमारे साथ लगातार कनेक्ट हैं। इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर अलग अलग माध्यम से ये साथ लगातार बना हुआ है। मोबाइल ऐप के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर लेंगे टिनी विनी सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। बहुत जल्दी जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ अगर आप करना चाहते हैं स्पेशल फील।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: Nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: आज मैं बहुत खुश हूँ, जानना चाहेंगे क्यों? जी बेवजह, जी हाँ, कभी कभी बेवजह खुश होना सीख लीजिए। यकीन मानिए कि आपको खुश होने के लिए बहानों की ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि खुश रहना, अपने दिल को स्वस्थ रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे साथ ही आपको बता दूं दोस्तों कि आज की तारीख है 7 सितंबर, आप सभी जानते होंगे। और आज सिर्फ ये एक दिन ही नहीं है बल्कि जागरूक होने और अपनी सेहत का ख्याल रखने का भी दिन है। वैसे तो हर दिन अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आज है वर्ल्ड ड्यूशन अवेयरनेस डे, एक ऐसा दिन जो हमें ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रति जागरूक होने और इससे जूझ रहे बच्चों व परिवारों के साथ खड़े होने का संदेश देता है। और साथ ही साथ भारत में आज नेशनल न्यूट्रिशन वीक का भी आखिरी दिन है। तो आज का छोटा सा हेल्थ मंत्र क्या है वो? पेट भरना जरूरी है, लेकिन सही पोषण पाना उससे भी जरूरी है। अपनी प्लेट में रंग भरिए, सेहत को समय दीजिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि जनाब जिंदगी की रफ्तार कितनी भी तेज हो, सेहत का अपडेट हमेशा ऑन रहना चाहिए। मैं हूँ सीमा और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, जहाँ हर दिन की बात है खास और पहुँचती है सीधी आपके दिल के पास। और मुझे ये पूरा यकीन है कि ये जो मैं गाने आपको सुनवा रही हूँ एक के बाद एक, आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे और आपको ज़रूर लग रहा होगा कि आपके दिल के हैं बेहद करीब। सुनते रहिए स्पेशल फील करने के लिए आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक विद रेडियो सनसनी सीमा।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: शाम ढल रही है, ऑफिस से निकलने का टाइम भी हो रहा है और दिल्ली की सड़कों पर अब शुरू होने वाला है घर पहुंचने का मिशन। लेकिन रुकिए जनाब, घर की तरफ रफ्तार बढ़ाने से पहले सुन लीजिए दिल्ली के इस शाम में क्या होने वाला है खास। अगर आपकी दिलचस्पी दवाइयों, मेडिकल टेक्नोलॉजी और नई नई मशीनों में है तो भारत मंडपम में आज से शुरू हुआ है फार्मा मैकटेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026। नाम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन काम है बेहद दिलचस्प। इसमें होंगी फार्मा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक मशीनें, लैब इक्विपमेंट, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी और दवाइयों के निर्माण से जुड़ी नई तकनीक। देश विदेश से फार्मा कंपनियां, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स इस एक्सपो में हिस्सा ले रहे हैं। तो 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में। दिल्ली वालों के लिए आज की शाम सिर्फ ट्रैफिक और ऑफिस की थकान के नाम नहीं, क्योंकि राजधानी में चल रहा है एक ऐसा एक्सपो जहां मिल रही है हेल्थ, फार्मा और टेक्नोलॉजी की दुनिया की खास बात। आईफेक्स 2026 के भारत मंडपम में आयोजित इंटरनेशनल फार्मा एक्सपो, जहां देश दुनिया की फार्मास्यूटिकल कंपनियां, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और नई टेक्नोलॉजी एक मंच पर साथ देखने को मिल रहे हैं।
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।
1: चलिए तो जल्दी चलते स्टूडियो की घड़ी में, वक्त हुआ है 5:53 और 34 सेकंड। चलते चलते कुछ याद कर लेते हैं, पुरानी बातें, पुरानी यादें, कुछ इस तरह के गीत जो कहीं ना कहीं हमारी पुरानी यादों को तरोताजा कर देते हैं और हमें स्फूर्ति से लबरेज। तो ये सफर होने वाला है और भी मनमोहक, और इसे बनाने के लिए सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर।

बात हूँ और यादों के साथ साइनिंग ऑफ विदार जी सीमा, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए एहसास और ढेर सारी मोहब्बत के साथ। तब तक सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए अपने पसंदीदा गीत सुनकर, और साथ ही दीजिए इजाजत सीमा चौधरी को। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चाचा बाय।

यह प्रस्तुत है अब तक के एफएम रेन में मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया। ये सम्मान गोवा पुलिस की समर्पित सेवा, अनुशासन और राज्य के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों और व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से मुलाकात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी में वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में हुए भवन हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत के मामले में दिल्ली नगर निगम के कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने इमारत के मालिक को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मलबे से 12 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई और 5 लोगों की हालत स्थिर है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़े मामले में

प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज रांची, कोलकाता, दिल्ली समेत 7 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत सीआरपीएफ की 199वीं जैन वाहिनी ने नक्सलवादियों द्वारा जंगल में छिपाकर रखे गए 14 नक्सली डंप बरामद किए गए। नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। उधर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। तो ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। इंतजार कीजिए अगले प्रोग्राम का।

नमस्कार, हेलो आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का, जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। और आज ट्रिपल एम यानी कि मैसेज मसाला मिक्स के साथ स्टूडियो में उपस्थित है आपका दोस्त होस्ट प्रवीण शर्मा।

दोस्तों, क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको आज तक याद है जिससे आपकी मुलाकात किसी सफर के दौरान हुई हो? अगर हाँ तो उसमें ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से आप उसे नहीं भूले? अगर आपके साथ ऐसा भी कोई वाक्या ऐसा कोई वाक्या हुआ हो या ऐसी घटना घटी हो तो आप उसे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट करें, 9868107070। जी हाँ, 9868107070। आपके उत्तर का हम कर रहे हैं बेसब्री के साथ इंतजार। तो सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर अपना मनपसंद प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम म्यूजिक, जी हाँ, मैं सिंह मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेडियो पर और मस्ती भरे गीतों का साथ आपके साथ है। कहीं मत जाइए क्योंकि हम हाजिर हो रहे छोटे से ब्रेक के बाद।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों ब्रेक के बाद आपको पुनः एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैस मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। देखते हैं कौन कौन से श्रोता आपसे जुड़ गए अब तक। ये हैं हितेंद्र दास आसाम से। स्वागत है आपका हितेंद्र जी। विजेंद्र जुड़ गए हैं घटौल अकोला महाराष्ट्र से। आपका भी हार्दिक स्वागत है।

यशवंत आठमुटे धाराशिव महाराष्ट्र जुड़ गए हमारे साथ। यशवंत जी कह रहे हैं, हम एक बार गोवा गए थे, उस वक्त एक आदमी से हमारी बातचीत हुई और हम मित्र बन गए, आज भी हमारी मैत्री है। क्या बात है, बहुत गुड। वही ऐसा होता है कभी कभी, कुछ साथी, कुछ ऐसे हम सफ़र, कुछ राही हमें मिल जाते हैं जो शुरू में तो अजनबी होते हैं लेकिन जब बातचीत होती है तो बहुत ही आत्मीयता के साथ मिलते हैं और उनकी जो उनका व्यवहार जो है, उनके जो भेंट जो हम उनसे करते हैं, शिष्टाचार से मतलब एकदम मित्र, यानी ऐसे मित्र होते हैं जो लगता है हमें कि इनसे शायद हमारे पुराने संबंध है, तो फिर हमें उन कभी भूलते ही नहीं है। जैसे कि आपने बताया, आपने एक आदमी से मुलाकात हुई आपकी जब आप गोवा गए थे और उसके बाद आप उन्हें कभी नहीं भूले, आज भी आपकी और उनकी बातचीत होती है। बहुत खूब।

किशन वजनानी, नीलम स्वाति और किशन रेलवे कॉलोनी आनंद विहार जुड़ गए हमारे साथ। ये कह रहे हैं हम प्रोग्राम आपका सुन रहे हैं, बस यूं ही सुनते रहिए हमारा और आपका प्रोग्राम जो कि आपके लिए है विशेष रूप से।

अगला संदेश हमें मिला है, ये है आरिफ रबानी, जिला हापुड़ से। आरिफ साहब कह रहे हैं कि मुझे भी एक घटना याद है, जब मैं बुलंदशहर से हापुड़ आ रहा था, मुझे बस में एक लेडी मिली और उस लेडी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। मैंने वो मेरी बाजू वाली सीट पर बैठी थी, मैंने उसे पानी दिया और बस रुकवा कर उसे दवाई भी दिलवाई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसकी तबीयत बाद में ठीक हो गई और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उसकी मदद की उस वक्त। और ये आगे कह रहे हैं कि आपको भी कभी कोई ऐसा इंसान मिले जो ज़रूरतमंद हो, जो जो किसी तकलीफ में हो, तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। आरिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना खूबसूरत मैसेज भेजने के लिए। आपने जिनकी मदद की वो आपको कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा हमारा यकीन है, ऐसा हमारा विश्वास है। कुछ लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, कोई वो कह रहे हैं कि भाई आज का आपका सवाल क्या है, आप क्या पूछें, आज आपने क्या पूछा है। तो भाई आज हमारा सवाल बहुत सिंपल है कि अगर आप कहीं गए हो किसी यात्रा के दौरान, कभी किसी से आपकी मुलाकात हुई हो और आप कोई ऐसी बात हुई हो, कोई ऐसी कोई किस्सा हुआ हो जिससे कि आप उस शख्स के को कभी ना भूले हों, या उसकी बात याद है आपको याद हो, या फिर कोई ऐसा वाक्य हुआ हो सफ़र के दौरान जो आप ना भूले हों, उसे हमारा शेयर करें। हमारा नंबर आप जानते हैं 9868107070। कहीं में जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से गीत के बाद।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप इस वक्त मैसेज मसाला मिक्स के खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं म्यूजिक लियर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। बात 2017 की है, मैं दिल्ली से बैंगलोर जा रहा था। ट्रेन में सफर के दौरान करीब 6 साल का लड़का मुझसे इतना घुल मिल गया जैसे कोई मेरा अपना हो। मैं उसे आज भी याद करता हूं। ये कह रहे हैं देहरादून से आलोक पवार और मिनी। आलोक जी और मिनी जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत मैसेज मसाला मिक्स में। आपने देहरादून से हमें संदेश भेजा, इतना खूबसूरत संदेश। भाई वैसे भी कहते हैं बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं, बहुत फूल की तरह कोमल होते हैं और वो हमारा दिल जो है जीत लेते हैं। आज वो लड़का आपको याद है, उम्मीद करते हैं ऐसी घटनाएं हमारे में से कईयों के साथ ऐसी घटनाएं घटती होंगी। धन्यवाद खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि प्रवीण जी नमस्कार, आपको भी नमस्ते। कह रहे हैं कि मेरी सफ़र में मुलाकात मेरे ज़िले के इंसान से हुई थी और हम दोनों अमरावती में पुणे का सफ़र कर रहे थे और वो पुणे में जॉब करते थे और मैं जॉब की तलाश में जा रहा था। उन्होंने मुझे कहा जॉब मिल सकती है इसकी जानकारी दी थी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था। उस वक्त किसी भी जगह वैकेंसी खाली नहीं थी इसलिए मुझे जॉब नहीं मिली, लेकिन उन्होंने एक दो जगह मेरे नाम की पेशकश की। क्या बात है। तो यही तो होते हैं, ऐसे इंसान होते हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बाकी ऊपर

वाला बाकी मुकद्दर के हाथ में होता है, और हमारी कोशिश के ऊपर सारा दारमोदार होता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी उसमें सफल होते हैं। लेकिन एक ना एक दिन होते ज़रूर हैं अगर हम लगातार मुसलसल कोशिश करते रहें। अगला संदेश हमें भेजा है जिला मुरादाबाद, ग्राम दोलापुर, उत्तर प्रदेश से। यह है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। ये कह रहे हैं कि कैसे हैं आप, हम भी एकदम अच्छे हैं। रोज हम हमारा परिवार आपका प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद भी, गाने भी अच्छे लगते हैं और प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद आपका संदेश भेजने के लिए। और अगर कोई ऐसा वाक्य आपके साथ गुजरा हो, पेश आया हो, तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अनिल शर्मा जी सरता बिहार से जुड़ गए हमारे साथ। अनिल जी आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये कह रहे हैं कि बात पुरानी है, जब मैं रेल में सफर कर रहा था तो सफर के दौरान उस वक्त खिड़की वाली सीट मैंने किसी व्यक्ति से मांगी और उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे खिड़की वाली सीट दे दी और मेरी सीट पर जाकर बैठ गए। उनका ये बड़ापन, उनकी ये बात आज भी मुझे याद है। क्या बात है अनिल जी, आपने बहुत ही खूबसूरत संदेश में भेजा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे भी किसने क्या खूब कहा है, आपसे झुक के जो मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा। इसी तरह का एक संदेश और हमें मिला है, ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांतिनगर सोनीपत से। ये कह रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये कह रहे हैं जिंदगी के सफर में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमेशा के लिए अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जिंदगी में ऐसे लोग हमें मिलते रहते हैं, हम उन्हें कभी नहीं भूल पाते क्योंकि उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है। लोग अक्सर सुंदर चेहरे भूल जाते हैं पर सुंदर बोल कभी नहीं भूलते। आपको शुभ संध्या, आपका जीवन बहुत शुभ और सुखद हो, आपका भी बहुत जीवन सुखद हो, शुभ हो, हम यही कामना करते हैं। और बहुत अच्छा संदेश आपने भेजा है सुदर्शन जी, अनिता जी और सिमरन जी, आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हो जाए एक प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर लेंगे आपके संदेश।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों आपके संदेश हमें मिलते चले जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हमारे बहुत सारे श्रोता इस बात को लेकर चिंतित है कि उनका संदेश क्यों नहीं शामिल हो रहा। भाई आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका संदेश हम शामिल करेंगे, ज़रूर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप कोई भी संदेश ना छूटे। अगर समय कमी रह जाती तो बात और है। बहरहाल ये संदेश हमें मिला है मेरठ यूपी से, अंशी शर्मा का, हस्तिनापुर मेरठ यूपी से। अंशी शर्मा जी कह रही हैं कि गुड इवनिंग पंचू सर, कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं, आप कैसी हैं? अंशी जी ये कह रही है कि आज के टॉपिक पर मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार मैं नोएडा एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ मुझे मेरी एक दोस्त मिली दीपाली, और खुशी जो उनके साथ मुझे मिली मिलकर मैं बयान नहीं कर सकती, और आज मेरी वो दोस्त हैं और हम दोनों दोस्त बन गए और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे दीपाली मिली। क्या बात है, बहुत खुशी हुई आपका ये संदेश पढ़कर। और एक आप ये कह रही थी कि आपने संदेश हमारा शामिल क्यों नहीं किया। भाई आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, जैसे संदेश हमें मिलेगा हम जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अंशी जी संदेश भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली शुक्रिया धन्यवाद कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बात 1985 की है, मैं गुन्नौर से अलीगढ़ जा रहा था और प्रोग्राम चल रहा था रेडियो पर, और उस वक्त जो गाना प्ले हो रहा था वो था कटी पतंग फिल्म का, और सामने वाली सीट पर कोई गाने को सुनकर रो रहा था, उनके आंखों में आंसू आ रहे थे। उस लम्हे को याद करके, उस जो सीन है उसको याद करके मैं आज भी, मुझे वो भूला नहीं है सीन, मैं उसमें खो जाता हूँ। आदिल जी, आपका संदेश बहुत ही अच्छा लगा सुनकर कि आपने उस वाक्य को आप भूले नहीं हैं। होता है कभी ज़िंदगी में कभी ऐसे कोई वाक्य घटते हैं, जिंदगी सफ़र के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसे हम कभी नहीं भूलते, और कुछ घटनाएं बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी मतलब जिसे कहते हैं हम कभी कभी हंसी आती है और सोच के हम डूब जाते हैं उन यादों में कि कितनी खूबसूरत घटनाएँ हमारे साथ हुई थी सफ़र के दौरान।

अगला संदेश हमें मिला है छवि राम सिंह राजपूत का, जिला फरुखाबाद यूपी से। कह रहे कि मैं आपका निमिष होता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और इन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। भाई आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो आपके साथ है, और आप संदेश जरूर भेजिएगा कि अगर सफर के दौरान आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जिसे आप आज तक ना बोले हों तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अगला संदेश हमें मिला है कृष्ण कुमार मिश्र का। कृष्ण कुमार मिश्र जी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूं और आज मैं आपने जो बात पूछी है उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि 2019 में मैं अपनी फैमिली के साथ प्रयागराज गया हुआ था कुंभ मेले में। वहां पर हमें एक आंटी मिली थी जो थोड़ी परेशान थी, हमने उनकी मदद की और अब उन्हें हम बुआ जी बुलाते हैं और वो मुंबई में रहती हैं। क्या बात है कृष्ण कुमार जी, बड़ा खूबसूरत संदेश आपने भेजा है। आपने किसी ज़रूरतमंद की मदद की और वो आज तक आपको याद करते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद भाई। इसी तरह से अगर हम जिंदगी में किसी न किसी की मदद करते रहें ना तो यकीनन एक तो हमें दुआ ज़रूर मिलती है और दूसरा वो शख्स हमें कभी नहीं भूलता, हमें हमेशा याद करता है। कहीं मत जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से गीत के बाद।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: मंगल भवन मंगलहारी
5: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अपन आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। अगला संदेश में मिला है नया पारा भिराई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर का। बसंत कुमार जी कह रहे हैं कि एक बार 1985 में हमारे यहाँ कुछ लोग आए हुए थे, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। वो कोलकाता के रहने वाले हैं और आज भी हमारी दोस्ती जारी है। क्या बात है, बहुत खूब बसंत जी।

मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हरदशना बाजार अररिया बिहार से लिख रहे हैं, कुछ पंक्तियां उन्होंने लिखकर भेजेंगे। बरसात की बूंदों में कोई राज तो है, भीगी हुई रातों में तेरा ख्वाब तो है, तन्हाई भी मुस्कुराती है बारिश के

ये है भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली से। भुवनेश जी कह रहे हैं कि आज के टॉपिक पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार एक फ़नी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मैं किसी हिल स्टेशन पर गया हुआ था और वहाँ पे मैं खूबसूरत नज़ारों का को देख रहा था, पहाड़ियाँ, पहाड़ की चोटियाँ। अचानक तभी कुछ लड़के मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, भाई आप मेरे दोस्त सचिन हैं। तो मेरी माँ ने कहा, नहीं भाई ये सचिन नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। और उनको यानी ऐसा लगा कि शायद उनका दोस्त सचिन यहाँ खड़ा है। तो भाई कह रहे हैं कि वो इंसिडेंट को मैं याद करके आज भी बड़ा खुश हो जाता हूँ, मुझे चेहरे पे मेरे मुस्कान आ जाती है। भाई ऐसा होता है कभी कभी हम गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब हमें मालूम चलता है कि उसी शक्ल का कोई दूसरा इंसान हमें मिला है तो यकीनन हम जो हैं वो हैरान हो जाते हैं, है ना, और शायद माफ़ी भी मांगते हैं।

0: बात 2023 की है। मुझे जॉब के सिलसिले में भाई के साथ 2-3 बार चेन्नई ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ा। एक दो बार ऐसा हुआ कि मेरे पास वेटिंग लिस्ट का टिकट था, पर लोग बहुत कोऑपरेटिव मिले और हमें इतने लंबे सफ़र में भी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे हमें बहुत अच्छा लगा। ये है निधि फ्रॉम प्रयागराज। तो निधि जी, आपने इतना अच्छा संदेश हमें प्रयागराज से भेजा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और इतना क्या कहते हैं, अपने आपने शेयर की अपने सफ़र के दौरान की याद। यकीनन कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमारी मदद करते हैं और उनके जो उनका जो उनकी मदद होती है, जिसकी वजह से हम परेशानी का सामना बड़ी आसानी से कर पाते हैं और उस परेशानी से निकल पाते हैं, तो हमें वो शख्स कभी नहीं भूलते, वो हमारे दिल में रच बस जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद निधि जी संदेश भेजने के लिए। ये सुनील आयुष आर्यन कुशवाहा बेहटा भवानी उन्नाव से ही कह रहे हैं, इस वक्त मैं पुणे से आपको सुन रहा हूं। और ये कह रहे हैं कि दिल्ली में मैं जॉब करता था, उसके बाद लाल किले पर मेरे एक मुझे एक लड़का मिला, बातों बातों में जान पहचान हुई और उसने मेरे को मुझे कहा कि कोई कभी कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे से संपर्क करना। वो पुणे का था। फिर मेरी जॉब दिल्ली से छूट गई तो उसने मुझे पुणे बुलाया और अच्छी जॉब पर लगाया। क्या बात है भाई, ऐसे लोग मिलते हैं ना यकीनन, जो हमें कहीं ना कहीं हमारी मदद करते हैं। और अगर हमारे हमारी जॉब में मदद करें, हमारे हमारे कैरियर में मदद करते हैं, तो यकीनन हम हमें कभी भूल नहीं सकते, हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। कहीं में जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से गीत के बाद।
1: प्राण प्रिय

दोस्तों आपको मेरा प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप हमें सुझाव शिकायत हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी ईमेल आईडी नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedbackfmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedbackfmrainbow@gmail.com। और सुनना न भूलें हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल चल रहा है प्रोग्राम मैसी मसाला मिक्स आकाशवाणी FM रेनबो पर।

अगला संदेश में मिला है, ये है प्रेमचंद प्रेमी जैतरा धामपुर से। प्रेमचंद जी कह रहे हैं, रेडियो से ये पल सुहाने मिले हैं, खुशियों के दिल को तराने मिले हैं, जरा पास आओ नाचो जी गाओ, गाने के लाखों बहाने मिले हैं। क्या बात है भाई, गाने के बहाने मिले हैं, नाचने के बहाने भी मिलेंगे आपको जरूर। यानी अलग प्रोग्राम जब हम मिलेंगे एक साथ, प्रोग्राम होगा म्यूजिक मस्ती, रात 8 बजे इसमें हम आप और हम करेंगे मिलकर डांस इस डांसिंग फ्लोर पर। ईश्वर चंद्र प्रजापति दिल्ली बवाना से जुड़ गए हमारे साथ। ईश्वर चंद्र कह रहे हैं कि राधे राधे जी, आपको भी राधे राधे। कह रहे हैं कि मैं आज अपनी भाभी सीमा जी और राधा के साथ में आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं, अच्छा लग रहा है। धन्यवाद आपका ईश्वर चंद जी, शुक्रिया सुनने के लिए। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, कार्यक्रम काफी अच्छा लग रहा है, गीत अच्छे लग रहे हैं और हम, हमारा नाम जो है शामिल नहीं हो रहा, बिल्कुल हम ज़रूर आपका नाम शामिल करेंगे। और हम चाहते हैं कि अगर आपने कोई संदेश भी भेजा हो या भेजना चाहते हो तो ज़रूर भेजिएगा, समय थोड़ा कम रह गया है, लेकिन कोशिश करिएगा भेजने के लिए कोई ऐसा संदेश जो सफ़र के दौरान आपके साथ कोई घटना घटी हो, कोई ऐसी याद हो तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। रवि जोशी मेरठ से जुड़ गए हैं। रवि जी कह रहे हैं कि नमस्कार, मेरे दोस्त की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मैं बिना कहे उसकी मदद कर दिया करता था, आज वो अपनी मेहनत से एक सरकारी नौकरी कर रहा है और खुशहाल जिंदगी जी रहा है, मैंने अपनी दोस्ती निभाई। बिल्कुल सही कहा आपने रवि जी, आपने अपनी दोस्ती निभाई, यकीनन वो आपको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि कभी जब हम इंसान की मदद करते हैं, जब जरूरत में होता है, तो एक ना एक दिन ऐसा आता है जब अगर कभी हम जरूरतमंद हों या हम कभी किसी जरूरत में हों तो वो हमें जरूर हमारी मदद करेगा, ऐसा हमारा यकीन विश्वास है। बहरहाल आपने उसके दिल में अपनी जगह बनाई, आप इसके हकदार थे और आपने अपनी दोस्ती निभाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी संदेश भेजने के लिए।

ये कह रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मिक्स एंजॉय कर रहे हैं, ये है विजेंद्र घटोल अकोला मारा से, ये कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, धन्यवाद, आपका संदेश हमने शामिल कर लिया था, शायद आपने सुना नहीं था। ये कह रहे हैं कि हम एक बार बस में सफ़र कर रहे थे, वहाँ हमारी किसी अजनबी से मुलाकात हो गई और आज तक उनकी बातें हमें याद हैं। क्या बात है भाई, ऐसा होता है कि सफ़र के दौरान कभी कभी ऐसी खट्टी पट्टी यादें हमारे साथ हो जाती हैं जिसे हम कभी नहीं भूलते, जो हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं। देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ गए हैं हमारे साथ रोशन रतूड़ी जी। ये हैं कि ये कह रहे हैं कि बिना मतलब के ज़रूरतमंद की मदद करें, आज का इंसान कहते हैं बहुत मतलबी है। भाई जी ये कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं कहीं भी रहते हों वो हमेशा किसी न किसी की मदद ज़रूर करें, और हम जो हैं हमेशा जब भी वक्त मिलता है, जब भी हमें मौका मिलता है, हम किसी न किसी की मदद करते रहते हैं। भाई देखिए कहते हैं पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन आप अपनी कोशिश में कमी मत छोड़िए, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो इंसान सामने वाला भी आपको हमेशा याद करेगा अगर आपने उसकी मदद की होगी सच्चे मन से। पूरी फैमिली हमें सुन रही है, ये कह रहे हैं मेरठ से, ये हैं कस्बा गनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। काट से मोहम्मद फुरकान जुड़ गए हैं, कह रहे हैं प्रवीण जी गुड इवनिंग, आपको गुड इवनिंग, आपका शो थोड़ा देर से मैंने लेट सुनना शुरू किया, कोई बात नहीं, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। वो कह रहे हैं आज का टॉपिक रिपीट कर दीजिए भाई, समय हमारे पास बहुत कम रह गया है, पाँच मिनट के आसपास रह गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं। देखिए आज का टॉपिक ये है कि अगर सफ़र के दौरान आपके आपकी किसी शख्स से मुलाकात हुई हो जिसे आप आज तक ना भूले हों और कोई ऐसी घटना घटी हो तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। प्रोग्राम सुनते रहिए मैसी मसाला मिक्स

निधि फ्रॉम पंचकुला, निधि जी कह रही हैं, जिंदगी यूं ही मुस्कुराने, खुशियां बांटने और हर पल को खूबसूरत बनाने का नाम है, और हमें हमारे प्यारे आरजी को दिल से थैंक यू अपनी खूबसूरत आवाज़, बेहतरीन संगीत और पॉजिटिव एनर्जी से हर दिन को खास बनाने के लिए, यूं ही सुरों और मुस्कुराहटों से हमारी शामें सजाने के लिए, सजाते रहिए। निधि जी, आपने पंचकुला से हमें ये खूबसूरत संदेश भेजा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आपके हम शुक्रगुजार हैं। अगले प्रोग्राम में हमारे साथ जरूर डांस कीजिएगा, हम सभी श्रोताओं को कह रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है म्यूजिक मस्ती, जो रात 8 बजे शुरू होगा। ये कहने कि मैंने 2 मैसेज भेज दिए, एक भी हमने शामिल नहीं किया, अभी ऐसा नहीं है। आपने बसंत कुमार ठाकुर जी, आपने छत्तीसगढ़ से हमें संदेश भेजा था और ये हमने शामिल ज़रूर किया था। आप, मुझे लगता है आप कहीं और बिजी थे, शायद सुन नहीं पाए। आपने कहा था कि 1985 में कुछ लोग आए थे आपके घर के पास और कोई काम करने के लिए, और वो कोलकाता के रहने वाले हैं और आपकी उनसे दोस्ती हो गई, जो आज भी जारी है कि नहीं? कार्यक्रम पेश करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये हैं रघुनाथपुरा जिला, श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। तो लालगिरी जी, आपका धन्यवाद संदेश भेजने के लिए, कहने प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, गाने अच्छे लगे, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल समय और आपसे बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन आपसे इतने कहेंगे कि आप रात 8 बजे फिर जुड़िएगा मेरे साथ, करेंगे मिलकर डांस। फिलहाल प्रवीण शर्मा लेता है आपसे अगली मुलाकात तक इजाज़त। नमस्कार, टेक केयर।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: You're with us on FM Rainbow 102.6 MHz. You're with us on Country Carnival. And here's some country wisdom for you. Know when to hold them, know when to fold them, and most importantly, know when to let the music play. Here's Kenny Rogers and The Gambler. Next one coming up for you.
7: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us, and he began to speak.

0: Thank you. Thank you.
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो।

0: साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू इज अमेज बालून स्टार ऑन FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज ऑन

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: That's poem for My Little Lady by one of my favorites, Kenny Rogers.

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

प्रस्तुत अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया। ये सम्मान गोवा पुलिस की समर्पित सेवा, अनुशासन और राज्य के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों और व्यापार मंत्री जेवियर बटेल से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से मुलाकात की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदू कॉलेज समेत दिल्ली विश्वविद्यालय के 6 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से संवाद किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी में वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्यनिकेतन में हुए भवन हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए हैं। दिल्ली सरकार ने सत्यनिकेतन इलाके में ढही इमारत के मामले में दिल्ली नगर निगम के कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने इमारत के मालिक को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ सत्यनिकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मलबे से 12 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई और 5 लोगों की हालत स्थिर है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज रांची, कोलकाता, दिल्ली समेत 7 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत CRPF की 199वीं वाहिनी ने नक्सलियों द्वारा जंगल में छिपाकर रखे गए 14 नक्सली डंप बरामद किए। नेपाल तिब्बत में आए भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। उधर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार। इंतजार कीजिए अगले प्रोग्राम का।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एवं आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर मुख्तलिफ जगहों पर सुन रहे हैं। और वक्त हो गया आपके अपने मस्ती भरे प्रोग्राम का, जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती, जिसमें आज आपके साथ है आपका दोस्त रोज प्रवीण शर्मा।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय

0: कथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना मस्ती भरा प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती, कहीं में जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं इस छोटे से अंतराल के बाद, सुनते रहिए म्यूजिक मस्ती, अपना मन पसंद प्रोग्राम आकाशवाणी FM रेनबो पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त

0: मुक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप हैं इस वक्त म्यूजिक मस्ती की खुशखबर महफिल में दोस्त प्रवीण के साथ और कर रहे हैं हमारे साथ डांस। तो एक बार फिर करते हैं मिलकर डांस इस डांसिंग फ्लोर पर।

0: begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों ब्रेक के बाद पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप हैं इस वक्त म्यूजिक मस्ती के खुश नवाज, यहाँ खुशगवार है महफिल में दोस्त प्रवीण के साथ, और कर रहे हैं डांस। एक बार फिर करते हैं मिलकर डांस इस डांसिंग फ्लोर पर।

और दोस्तों फिलहाल प्रवीण शर्मा आपसे लेता है म्यूजिक मस्ती से इजाजत, लेकिन आप कहीं में जाइए क्योंकि अगले प्रोग्राम यानी आपकी याद आती रहे के साथ स्टूडियो में मौजूद है रेखा चौधरी। तो आप कीजिएगा उनका स्वागत और फिलहाल प्रवीण को दीजिएगा इजाजत, अगली मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, टेक केयर।

नमस्कार, फिलहाल वक्त हुआ है रेनबो इंडिया पर इस घंटे के मुख्य समाचारों का। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्यनिकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज राष्ट्रीय राजधानी में भवन सुरक्षा छात्र आवास और पीजी नियमों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। निर्वाचन चुनाव आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट और पुदुचेरी में एक सीट पर भी उपचुनाव। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी में वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नौसेना के प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी के स्पेन के बार्सिलोना के यात्रा कल पूरी की। यह यात्रा जारी लोकायान 26 अभियान के अंतर्गत की गई। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता से दोनों पक्षों के कारोबार के लिए नए अवसर सृजित होंगे। नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,355 हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया है और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी के पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। भारत का पदक पक्का है। तो ये थे रेनबो इंडिया पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो बताइए कैसा रहा आपका इंतजार, कैसे कटे इंतजार की घड़ियां। अपनी बात कहूं तो मॉर्निंग में आंख खुलते ही घड़ी की सुइयों को ताड़ना शुरू कर दिया था मैंने, और बार बार वक्त देख खुद ही बोलती थी कि बस अब इतना ही वक्त बचा है, बस इतने ही घंटे बचे हैं अपने लिसनर से मिलने के लिए। जी हाँ, प्रोग्राम शुरू हो चुका है आपकी याद आती रही, और आपकी याद आती रही के सफर में मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त एंड होस्ट

जी हाँ दोस्तों, आपके मैसेजेस मेरे पास लगातार लगातार आ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो मैसेज आया वही पढ़ूंगी, लेकिन किंतु परंतु एक और सॉन्ग सुनवाने के बाद और अपनी बात कहने के बाद, यादों का सफ़र सुकून से किया जाए तो बहुत बहुत बहुत अच्छा है दोस्तों। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या किसी की हद से ज़्यादा किचकिच इन यादों के सफ़र में खलल पैदा कर देती हैं, है ना? यानी यादों के सफर में डिस्टरबेंस, अशांति, बाधा या विघ्न डालती हैं। इसलिए अपने सफर को आप जब भी शुरू करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वहां पे थोड़ी सी शांति हो, या बीच में कोई भी आ जाए तो कह दीजिए कि अभी तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, आज बात नहीं हो पाएगी, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, भाई इतना बिजी हूँ या इतनी बिजी हूँ कि बस फुर्सत ही नहीं है सांस लेने की भी।

0: ने तो बहुत प्यारी प्यारी बहुत प्यारी प्यारी लिखना चाहिए था, प्यारी प्यारी लिख दिया, कोई बात नहीं, प्यारे प्यारे गाने लगवा दिए, मन खुश हो गया। मेरठ से बीरू बख्शी, बहुत बहुत धन्यवाद लिखते हैं। एक और मैसेज, आपकी याद आती रही, आपको प्यार भरा नमस्कार, आदाब अर्ज है, गुण और आदिल कवर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, शुक्रिया धन्यवाद लिखते हैं। एक और मैसेज ले लेते हैं, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, गुड इवनिंग आरजे रेखा मैडम जी, वेलकम बैक टू शो। मैडम जी आपकी याद आती रही, बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं आप आरजे मैडम जी, और गीत बहुत बहुत पसंद आ रहे हैं। एक और मैसेज ले लेते हैं, तो ये आया है तुलसीपुर नेपाल से, यादों के सफर में हाजिर हूँ नेपाल से, स्वीकार स्वीकार लिखना चाह रहे हैं, स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार, लाइव सुन रहा हूँ ऐप के जरिए, तो बहुत अच्छी बात है। दिनेश कुमार भंडारी लिखते हैं नेपाल से, तो थैंक यू सो मच। चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर बहुत जल्द लौटते हैं आपके साथ आपके पास।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
5: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल,
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी हाँ दोस्तों, यादों का सफ़र जितना खूबसूरत, जितना प्यारा हो उतना ही अच्छा है ना। और आपके मैसेजेस बता रहे हैं कि आप प्रोग्राम को कितना एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल यही कहूँगी कि जो यादों का सफ़र है ना, इसको आप जितना एंजॉय करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए ना, यूं तो दुनिया में गम बहुत बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्तों खुशियों की भी कोई कंगाली नहीं छाई है, कोई अकाल नहीं पड़ा है। ये आपका आपका सोचना है, आपका समझना है कि आप किस चीज़ को सबसे पहले लेते हैं, खुशियों को या गम को, क्योंकि दोनों ही चीज़ें भरमार हैं जिंदगी में। अब किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, ये आपको तय करना है। और वैसे भी कभी कभी सफ़र में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं कि एक ही पल में अपनापन लगने लगता है, और एक ही मुलाकात में ऐसा लगता है कि बार बार बार बार मिले, और अगर ना मिले तो फिर उनकी याद सताती ही है। जी हाँ, और कभी कभी दिल कह उठता है कि

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी किसी से इस तरह से मुलाकात हो जाती है कि एक ही मुलाकात ऐसा लगता है बस ताउम्र की यादों के पन्नों में, जी हाँ, गोल्डन अक्षरों से दर्ज हो गई हैं। मेरे पास एक और मैसेज आया है, आपका ही वेट कर रही थी। नाइस सॉन्ग्स मीनाक्षी लिखती हैं गाजियाबाद से। और एक और मैसेज में सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं, वो भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और उनको सॉन्ग्स बहुत पसंद आ रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे, थैंक यू सो मच। एक और मैसेज मेरे पास आया राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं, गुड इवनिंग जी, आर सी आर जे वेलकम जी, गीत संगीत 90s एवरग्रीन सॉन्ग्स जी, कार्यक्रम आपकी बातचीत अद्भुत है जी, मज़ा आ जाएगा आज भी, हम दिल से याद करते हैं आपको जी, तो थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज आया, वो लिखते हैं, नमस्कार रेखा मैम, एनर्जेटिक मीनिंगफुल हार्ट टचिंग ब्यूटीफुल लव सॉन्ग्स प्रोग्राम, प्लीज़ कन्वे माय मैसेज टू आकाश, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आई एम हैप्पी ओनली फॉर यू। आकाश जी, आपको उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं, तो भाई अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और तुम्पा पॉल रेलवे कॉलोनी न्यू दिल्ली से यही कह रही हैं आपसे। एक और मैसेज, गुड इवनिंग मैम, आपका प्रोग्राम और आपकी आवाज़ दोनों दिल को छू जाती हैं, मुझे मेरी फ्रेंड बहुत याद आ रही है, नाम तनु है उसका, प्लीज़ रीड माय मैसेज, तो लीजिए, रणवीर फ्रॉम कौंडली से लिखते हैं। एक और मेरे पास मैसेज है कासगंज से मास्टर राधेश्याम जी का, उनको भी मेरा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। रेखा चौधरी जी, प्रोग्राम में सॉन्ग्स मस्त प्ले हो रहे हैं, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच, लिखते हैं। दोस्तों, बात तो किसी ने सच ही कही है कि चेहरे की खूबसूरती से ज़्यादा मायने रखता है दिल का रिश्ता। अब देखिए ना, ना आप मुझे चेहरे से जानते हैं और ना ही मैं आपको चेहरे से जानती हूँ, लेकिन जब भी मेरी आवाज़ ऑन एयर होती है तो आप झट से पहचान लेते हैं, या जैसे ही आपके मैसेजेस आते हैं तो कई बार मैं पहचान लेती हूँ कि किसका मैसेज हो सकता है, तो हुआ ना दिल का रिश्ता। इसीलिए कहते हैं दिल से दिल का रिश्ता बहुत मजबूत होना चाहिए, और ये रिश्ता हमारा है। इसी बात पर मुझे एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग याद आ रहा है, तो चलिए आपको सुनवाती हूँ ये प्यारा सा सॉन्ग।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी कुछ दोस्त इस तरह से ज़िंदगी में आते हैं कि जी हाँ, कि आपके दिल की किताब में वो हमेशा के लिए इस तरह से अपना खाता दर्ज कर लेते हैं कि आप भले ही उनसे मिले या ना मिले, लेकिन किंतु परंतु आपको हमेशा उनकी याद सताती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आपको फुर्सत नहीं मिलती है तो फिर आप उनको फ़ोन या फिर कोई मैसेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है दोस्तों कि अगर कोई हमें मैसेज या कॉल नहीं कर रहा है तो वो हमको भूल गया है या फिर हम उसे याद नहीं कर पाते। कभी-कभी कुछ यादें इस तरह से की जाती हैं, यानी कि यादों का सफ़र इस तरह से तय किया जाता है कि किसी को बताना बहुत बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है लफ्ज़ों के ज़रिए। लेकिन किंतु परंतु फ़िलहाल मैं यही कहूंगी कि जब भी आपकी यादों का सफर चल रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को साथ रखिए जिनको आप साथ में रखना चाहते हैं। और एक और प्यारा सा सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, तो चलिए आपको सुनवाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैसेज ले लेती हूँ। एक मेरे पास मैसेज आया है। मैडम जी नमस्कार, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लग रहा है, गीत भी अच्छे लग रहे हैं, आएगी तुझको हर पल मेरी याद, धन्यवाद धन्यवाद। तो इन्होंने तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच बार मैसेज कर दिया। तो दोस्त, मैं तो एक ही बार में मैसेज पढ़ देती हूँ। और दूसरा हमारा शर्मा जी का मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि शायद लंबी छुट्टी पर जा रही हूँ इसलिए जल्दी जल्दी आ रही हूँ तो भाई ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है दोस्त कि, लेकिन यही कहूंगी कि ठीक 11 बजे हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होने वाली है, तो इसमें टेंशन लेने की बात तो कोई है ही नहीं। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, आप सबकी नजर।

यहाँ दोस्तों टिक टिक करती घड़ी काफ़ी कुछ कह रही है। जी हाँ, सच कहूँ तो मेरा भी दिल ना ज़ोरों से धड़कने लगता है जब सोचती हूँ कि वक्त अभी बहुत कम बचा है आप

0: से अलग होने का, लेकिन फिर से जब याद आता है कि 11 बजे हम फिर से मिलने वाले हैं तो फिर मेरी टेंशन दूर हो जाती है। एक और मैसेज ले लेते हैं। हेलो जी, मेरठ से वीरू बख्शी, आज का प्रोग्राम एक्सीलेंट, वेरी गुड मैडम, बहुत बढ़िया, एक एक गाना चुन चुन के आपने हमारे हमारे कोई आपकी याद आती रही में शामिल किया है, तो थैंक यू सो मच। एक और मैसेज मेरे पास आया है। ओ माय गॉड, भाई मैं तो सबसे कहती हूँ कि इतना बड़ा मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। अमरावती महाराष्ट्र से पंकज जी ने बहुत लंबा मैसेज लिख दिया है, हर गाने की लाइन लिखी है, फिल्म लिखी है और गायक भी लिखे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्त। और कम शब्दों में अगर अपना मैसेज लिखा जाए तो बहुत बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन फिलहाल, किंतु परंतु, हम फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ आपके पास। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
0: वेलकम बैक दोस्तों। जी हाँ, आपके मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु टेंशन लेने की बात नहीं है। जिनके मैसेजेस नहीं ले पाई हूँ, ठीक 11 बजे मैं ले लूँगी। लेकिन बात यही कहूँगी कि हमेशा यादों का सफ़र प्यारी सी मुस्कान भरी यादों से शुरू करेंगे तो दिल और दिमाग दोनों ही खुश रहेंगे और खुशी महसूस भी करेंगे। जब ये दोनों खुश रहेंगे तो खुद ब खुद दिल की किताब के पन्नों को पलटने में ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, और हाथ में या नज़रों के सामने वही पन्ने आएंगे जो मुस्कुराहटों से भरे होंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ प्यारी प्यारी हसीन यादें। जानती हूँ आप भी यही चाहते हैं कि गीतों और बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहे और पूरी रात यूं ही गुजर जाए। पर दोस्तों, बात ये है कि मैं तो मान जाऊँ पर कमबख्त वक्त है ना, ये कहाँ किसी की सुनता है, ये तो बस चलता जाता है चलता जाता है। पर अभी तो हम यही कहेंगे कि 11 बजे फिर मुलाकात होगी, तो टेंशन छोड़िए, बिंदास रहिए और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग आपको सुनवाने वाली हूँ, उसको एंजॉय करिए। फिलहाल अपनी दोस्त RC यानी रेखा चौधरी को दीजिए इजाज़त। जी हाँ, आपसे ठीक 11 बजे फिर मुलाकात होगी।

जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQ

0: आर यानी सेल सिक्योर टीएमटी बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर टीएमटी बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: And that was, I thought I'd seen everything, and after so many years in music, Bryan Adams certainly has seen a lot. In fact, he recently released The Ballad of Terry Fox, telling the story of Canadian running legend Terry Fox and his famous Marathon of Hope. So yes, 4 decades into his career, Bryan is still creating new music. And before we leave Canada, one more Bryan Adams song. But before that, it's time for a short break. Stay tuned.
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल.
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है.
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो.
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है. आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है.
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर. इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा. जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा.
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है.
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है.
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं.
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं.
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या.
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए.
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए.
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए.
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है.
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए.
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं.

0: And that was Tonight We Have the Stars. So that's our Bryan Adams journey. Six songs from powerful rock to beautiful ballads. And now we are flying from Canada all the way to Sweden. Our next act is a duo that dominated radio in the late 80s and 90s. It's time for Roxette.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: Yeah, that was It Must Have Been Love by Roxette, one of my favorites. The song has crossed 1 billion streams on Spotify, making it part of the Spotify's billion club. Just think about that, you know. A song from decades ago is still being discovered and played by new generations. That's what we call timelessness. Indeed, the song is. We have more songs coming up for you by Roxette. Stay tuned. We'll be back right after this short break.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य

पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

और ज्ञान का विस्तार सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

नमस्कार, फिलहाल वक्त हुआ है रेनबो इंडिया पर इस घंटे के मुख्य समाचारों का। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित और दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने आज राष्ट्रीय राजधानी में भवन सुरक्षा, छात्र आवास और पीजी नियमों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और 2-2 विधानसभा सीट तथा पुडुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता से दोनों पक्षों के कारोबार के लिए नए अवसर सृजित होंगे। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हुई। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,355 हुई। पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया है। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। तो ये थे रेनबो इंडिया पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, हाजिर है आपकी दोस्त फिर आपका मन पसंदीदा, जी हाँ पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है रंगे महफिल। और रंगे महफिल के सफर में भी आप और हम साथ साथ। जी हाँ, जिन लोगों ने अभी अभी सुनना शुरू किया है उनको बता दूं कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है रंगे महफिल। और रंगे महफिल के इस सफर में मैं हूँ आपके साथ, आपकी वही पुरानी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो गजलें हैं, गीत हैं, खास दर्शक देते हैं। देखिए मेरी जुबान भी लड़खड़ाने लगी है अभी से, आपके इतने सारे मैसेजेस देख कर दिल को इतनी खुशी मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है कि जुबान के जरिए बयां कर पाना मेरे लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल है। खैर, अपने प्रोग्राम की शुरुआत अगर एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ की जाए तो कितना कितना कितना अच्छा होगा, है ना। तो चलिए, ये खूबसूरत आवाज़, भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये आवाज़ आज भी लोगों की दिल की धड़कन बनी हुई है। इनका कोई भी सॉन्ग हो, गीत हो या फिर गज़ल, लोगों को जी हाँ पसंद आता है। और कानों के जरिए जब दिल में उतरता है तो खास बात तो बनती ही है। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

जी हाँ दोस्तों, ख्याल कभी भी किसी का भी आ सकता है, रफ्तार कैसी भी हो, पर खुशी और उमंग के रंगों में कभी भी कमी ना आए, यही कोशिश करनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि खुशी और उमंग के रंगों में कभी कमी ना आए। जिंदगी हो या फिर कोई भी महफिल, हमेशा हमेशा खुशनुमा और खूबसूरत बनी रहे, इस बात का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल आपकी और मेरी दोस्ती की तरह। जी हाँ, जिस तरह से आपकी और हमारी दोस्ती एकदम बिंदास है, खुशनुमा है और प्यारी है और रंगों से भरी है, इसी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हर महफिल खुशनुमा हो, रंगीन हो और प्यारी हो। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

जी दोस्तों, मेरे पास जो सबसे पहले मैसेज आया है वो आया है त्रिची से, एम राजकुमार जी का। वो हमें ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं और उन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में उन्होंने वेलकम भी किया, तो थैंक यू सो मच। एक और मैसेज मेरे पास आया है, वो लिखते हैं, गुड इवनिंग रेखा जी, आप पहले एक क्वेश्चन पूछा करते थे कि ये गज़ल के सिंगर कौन है या कुछ भी म्यूज़िक से रिलेटेड, और ऐसा क्वेश्चन फिर कीजिए ना। वरुण लिखते हैं इंदौर से, तो चलिए इस बात पे गौर किया जाएगा वरुण जी। एक और मैसेज मेरे पास आया है राजकुमार के, संतानी अकोला महाराष्ट्र से, गुड इवनिंग रेखा जी, वेलकम टू द सेकंड शो, और मैं आपको सुन रहा हूँ कार्यक्रम गीत गज़ल, आपकी बातचीत भी पूरे कार्यक्रम में चार चांद लगा रही हैं, और मोहम्मद रफ़ी शाह साहब को शत शत नमन भी किया है इन्होंने, बेहतरीन गज़लें जगजीत सिंह जी की भी, तो थैंक यू सो मच। एक और मैसेज ले लेते हैं, गुड इवनिंग रेखा चौधरी जी, रंगे महफिल नहीं है दोस्त, लगता है आपको अभी नींद आने लगी है। रंगे महफिल कार्यक्रम हो चुका है और ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है रंगे, हाँ आपने पहले रंगे महफिल से पहले कुछ और लिखा है, लेकिन ये प्रोग्राम रंगे महफिल है, बाद में रंगे महफिल आपने शामिल किया है, तो जो पहले 9 बजे वाला प्रोग्राम था आपकी याद आती रही, वो तो हो चुका है, और ये सच में सेकंड टाइम में आपने ठीक लिखा है, रंगे महफिल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए, आपको बाद में ही सही याद तो आया, लेकिन दोस्त आपने अपना नाम नहीं लिखा है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो भी लिखते हैं, गुड इवनिंग रेखा चौधरी, रंगे महफिल कार्यक्रम लाजवाब है, प्रस्तुतिकरण उससे भी ज़्यादा शानदार है, गज़ल झुकी झुकी सी नज़र बहुत पसंद आ रही है, नाइस प्रेजेंटेशन। किशन वंजनी, नीलम स्वाति और ये लिखते हैं किशोर, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। एक और मैसेज ले लेते हैं, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, गुड इवनिंग आरजे रेखा जी, कार्यक्रम रंगे महफिल बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत आरजे मैडम जी, और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, झुकी झुकी सी नज़र, ये इनको बहुत पसंद आया है जगजीत सिंह जी की आवाज़ में। तो दोस्तों यही कहूँगी कि जो दिल को अच्छा लगे ना, वही वही आपको काम करना चाहिए और वही संगीत भी सुनना चाहिए, फिर चाहे वो गीत हो, गजलें हों, या कोई भी ऐसा म्यूजिक जो आपको पसंद आए, आपको सुकून दे। धड़कनों की रफ्तार जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगे ना दोस्तों, और दिल दिल सुकून की तलाश में बेचैन होने लगे, किसी को मिलने या पाने की ख्वाहिश इतनी ज्यादा बढ़ जाए, कि वो चाहत जुनून में बदल जाए, तो आप क्या समझेंगे या आपको क्या समझना चाहिए? और अगर अब भी समझाने की जरूरत है तो फिर चलिए समझा देती हूं, लेकिन किंतु परंतु इस प्यारी सी गजल के बाद।

0: यह दोस्तों, अभी इस गज़ल से पहले मैंने जो बात कही धड़कनों की रफ्तार की, दिल के सुकून की, ख्वाहिशों की या किसी से मिलने की ख्वाहिश जब जुनून बन जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? जी हाँ, जो लोग समझ चुके हैं तो भाई बहुत बहुत आप समझदार हैं, और जो नहीं समझे हैं ऐसा ऐसी बात नहीं है कि वो समझदार नहीं है। हाँ, वो भी समझदार हैं, लेकिन जो समझ चुके हैं उनसे थोड़ा सा कम। जी हाँ, चलिए मैं बता देती हूँ कि इस गज़ल से पहले मैंने जो बात कही उसका एक ही मतलब है दोस्तों, कि जब जब ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शामिल होने लगे या आपको ये लगने लगे कि आप कुछ इस तरह से हो गए हैं कि आपको दिल के सुकून की ज़रूरत है, या आपकी धड़कनें जो हैं वो तेज़ होने लगी हैं, किसी की मिलने की ललक बढ़ने लगी है, आपकी ख्वाहिश ख्वाहिश होती है कि उस शख्स से बात कीजिए किया जाए, या मिला जाए, या फ़ोन पे ही सही उससे बात की जाए, वो आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा सा बन जाता है। जब तक आप उससे ना मिले तो फिर आप बेचैन से रहते हैं। तो इसका मतलब है कि बस समझ लीजिए कि ये वही दौर शुरू हो चुका है, वो ट्रैक शुरू हो चुका है इश्क का, मोहब्बत का, प्यार का। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। आपको बता दूं कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है रंगे महफिल, और रंगे महफिल के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त रेखा चौधरी। 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दिल्ली और एनसीआर में, और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर। और हाँ, अब तो ऐप के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ आपके पास।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: न जाने क्यों बेचैनी में भी सुकून मिलता है, न जाने क्यों भाग दौड़ में भी थकान महसूस नहीं होती, न जाने क्यों रात को नींद न आने पर भी एक अजीब सा एहसास होता है, न जाने क्यों किसी मिलने की इच्छा बार बार होती है, न जाने क्यों जब कोई बात ना करे तो थोड़ा बुरा सा लगता है, न जाने क्यों। ऐसे ही न जाने कितने सारे सवाल हमारे दिल में आते हैं और

0: सवालों के जवाब भी हमारे पास ही होते हैं, लेकिन अगर इन सवालों के जवाबों को कोई और दे तो दिल को बहुत बहुत अच्छा लगता है।
1: हुजूर आपका भी

जी हाँ दोस्तों, अल्फाजों से जुड़े हम अधूरे से थे, अल्फाजों से जुड़े हम अधूरे से थे, दिल के तार जुड़े तो एहसास से मोहब्बत लगने लगा।

इस गीत के सिंगर्स का नाम बताना है वरुण, जो आपने ख्वाहिश की थी। चलिए उसको पूरा कर देते हैं। जितने भी हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं, अगर ये सिंगर्स के नाम आपको पता है तो फिर आप मैसेजेस के ज़रिए बता सकते हैं, लेकिन हाँ, चीटिंग नहीं करनी है।

0: जी हाँ दोस्तों, आपके मैसेजेस आने लगे हैं और कुछ हमारे लिसनर्स हैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ, उन्होंने कहा नॉट कन्फर्म, लेकिन मैं बात करती हूँ इस एक छोटे से ब्रेक के बाद और आपको बताऊँगी कि जो आवाज़ सुनी आपने वो आवाज़ किसकी थी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: जी हाँ दोस्तों, मेरे पास जो सबसे पहले मैसेज आया है वो आया है पंकज जी का, अमरावती महाराष्ट्र से। उन्होंने लिखा है नॉट कन्फर्म मैडम जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए इन्होंने कितनी ईमानदारी के साथ अपना जो जवाब था वो दिया। और एक और मेरे पास मैसेज आया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का शांतिनगर सोनीपत से, वो लिखते हैं रिस्पेक्टेड टू रेखा चौधरी जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी मंडे, गुड इवनिंग, गुड नाइट, वी आर लिसनिंग योर प्रोग्राम। तो उन्होंने जो जवाब दिया है, उन्होंने प्रेजेंटेशन की भी काफ़ी तारीफ की और उनको गज़लें पसंद आ रही हैं। गॉड ब्लेस यू भी लिखा है उन्होंने, लिखा है जो सिंगर्स का नाम, वो लिखा है लता और तलत अजीज़, यानी कि लता मंगेशकर और तलत अजीज़, ये बिल्कुल सही जवाब है। और वरुण जी, आपका जवाब तो अभी तक आया ही नहीं, और पॉसिबल हो तो नेक्स्ट का जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और इस प्रोग्राम के आगे बढ़ते बढ़ते यही बात कहूँगी कि जब भी दिल में किसी के कोई भी बात आती है तो फिर उसे साफ साफ शब्दों में किसी से शेयर किया जाता है। एक दो शब्द समझ में नहीं आते हैं कई बार। एक मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने कुछ कुछ शब्दों में भेजा है मैसेज, ना तो अपना नाम लिखा है और ना ही लिखा है किस जगह से उन्होंने अपना नाम, मतलब अपना मैसेज भेजा है। तो चलिए कोशिश कीजिए अपने जो मैसेज हैं वो अपने नाम और जगह के नाम के साथ भेजें। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल, प्रोग्राम चल रहा है जी हाँ रंगे महफिल, और रंगे महफिल के सफ़र में आप और हम साथ साथ हैं।

यहाँ जब महफिल की बात चलती है तो दिल में जहन में एक ख्याल आता है कि पिछली बार अगली बार या कब हम मिली थी या मिलेंगे अपने यारों से दोस्तों से। मेरे पास एक मैसेज आया दोस्तों, वो आया है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। उन्होंने ये आवाज़ बिल्कुल सही पहचानी है। जी हाँ, ये आवाज़ भूपेंद्र जी की ही थी। एक और मैसेज मेरे पास आया है, जी हाँ, शर्मा जी का। शर्मा जी, आपने क्या मैसेज लिखा है, अधूरा सा, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और एक मैसेज और आया है, गुड इवनिंग आरजे जी, नेम हितेंद्र दास, और ये आसाम से मेरे पास आया, और फिर उन्होंने गुड नाइट भी लिखा है। एक और मैसेज ले लेते हैं। जी हाँ, किसी ने क्या खूब कहा है बहुत लंबा मैसेज है, ये तो मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप अपना मैसेज भेजें तो कम शब्दों में भेजें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक और मेरे पास मैसेज है, उन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है और ना ही किस जगह से भेजा है, ये भी नहीं मेंशन किया है। तो भाई, ऐसे मैसेजेस अब मैं लेना बंद करूंगी, तभी आप सब अपने नाम के साथ और जिस जगह से भेज रहे हैं उस जगह के साथ नाम लिखकर भेजा करेंगे। अदरवाइज आप तो मानने वाले हैं नहीं, थोड़ा सा मुझे ही आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से मैसेज करना है और कितना करना है। तो चलिए, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जी हाँ, उनमें से बहुत सारे लिसनर्स प्रॉपर प्रॉपर अपना जो मैसेज है वो भेज रहे हैं, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। और जो नहीं प्रॉपर भेज पा रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी, हमारे पास दोस्तों वक्त तो बहुत होता है, और आपको कितना मैसेज करना होता है, सिर्फ 2, 4, 5 लाइनें करनी होती हैं, तो आराम से मैसेज करिए, पूरा करिए, अपने नाम के साथ करिए। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल, और सुनवाने जा रही हूँ आपको बहुत ही खूबसूरत एक और गीत कह लीजिए, और ये आवाज आपको पहचाननी है, और या फिर कह लीजिए गजल। जी हाँ, ये आवाज भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत आवाज है।

यहाँ छोड़ी जा रही हूँ एक खूबसूरत गजल के साथ। आप सभी को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से रेनबो इंडिया सुनते रहिए। अपनी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।

रात्रि के 12 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सिंधु ने राष्ट्रीय राजधानी में भवन सुरक्षा, छात्र आवास और

पीजी नियमों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट, पुदुचेरी में एक सीट पर भी उपचुनाव। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जवेरिया बेटेल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता से दोनों पक्षों के कारोबार के लिए नए अवसर सृजित होंगे। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हुई। पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने आज और कल देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी में पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। भारत का पदक पक्का हुआ। ये थी अब तक की FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:03 और 8 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आर शो।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: पौराणिक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

रात्रि का 1 बजा है। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषद विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। निर्वाचन आयोग ने असम की नांगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। नई दिल्ली में सत्यनिकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। लक्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। कहा कि भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी भूमिका मिलनी चाहिए। श्री बेटेल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत।

नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हुई। पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने आज और कल देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। भारत का पदक पक्का। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:03 और 18 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सगरे गाँव की गोरिया
1: जिया जिया
0: कुछ कुछ
1: मैं छोड़ रहा।

0: इसीलिए तो कहता हूं
1: यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो
0: बाकी

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: सात बार में हमला कर दिया, किले की दीवारें टूट रही।
1: दारान शाह समान
2: वजीर बहर, दुश्मनों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दो।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषद विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। कहा कि भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी भूमिका मिलनी चाहिए। श्री बेटेल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,355 हुई। पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने आज और कल देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। भारत का पदक पक्का। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:03 और 15 सेकंड हुए हैं, शुरू करते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: बदल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स। Taking the chance to make you dance. You will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
3: No!
4: No!
2: Samba?
4: No!
3: No!
2: Rumba?
3: No!
2: Samba?
3: No!
2: Tequila?
3: No!
2: Tango?
3: No!
2: Charleston?
3: No!
2: Polka?
3: No!
2: No?
3: No!

गुड़ी गुड़ी गुड़ी गुड़ी गुड़ी गुड़ी।

हाथ का जवाब भात से, बात का जवाब बात से, प्रीत का जवाब प्रीत से, और गीत का जवाब गीत से।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुडुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। कहा कि भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी भूमिका मिलनी चाहिए। श्री बेटेल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,355 हुई। पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने आज और कल देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। भारत का पदक पक्का। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:03:05। और लीजिए श्रोताओं, अब आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ खूबसूरत से गीत नॉन स्टॉप म्यूजिक में। तो लीजिए आइए सुनते हैं ये गीत मेरे यानी अलमास रजा के साथ। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर 9:00 बजे।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 4 पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं। कल उपराष्ट्रपति ने शिलांग में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुडुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉ साइमन हैक से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल आज से 11 सितंबर तक मेघालय के उमियम में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। 21 राज्यों और 51 कृषि संस्थानों से 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। कल उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,355 हुई। पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने आज और कल देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। भारत का पदक पक्का। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, समय हो रहा है सुबह के 4:03:30। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा। कार्यक्रम में आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

लीजिए पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 4 पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं। कल उपराष्ट्रपति ने शिलांग में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुडुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल आज से 11 सितंबर तक मेघालय के उमियम में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। 21 राज्यों और 51 कृषि संस्थानों से 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। कल उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,355 हुई। पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी देश में सबसे अधिक बारिश वाले 5 जिलों में शामिल रहे। मौसम विभाग ने आज और कल देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। भारत का पदक पक्का। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, समय हो रहा है सुबह के 5:03:38 और लीजिए अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अलमास रसक का नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन।
2: जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।